खाली दिल किसको दूं या उसको दूं।

0: कोई पा गया
1: सासों में।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। शुक्रवार 11 सितंबर के सुबह प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मोशन रोगियों को बिना बड़े ऑपरेशन के आधुनिक इलाज उपलब्ध कराने की पहल इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एडवर्ड लाम शांगलिंग ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। वे बिना कोई फीस लिए मॉरिशस में रेडियोलॉजी और कैंसर के इलाज को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। विशेष इलाज के लिए 12 मरीजों को चुना गया है। छात्रों की भूमिका में दुनिया भर में गिरावट दर्ज की गई है। OECD की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में विज्ञान में औसतन 3 अंक, मैथमेटिक्स में 9 और पढ़ने में 14 अंक की कमी आई है। संगठन ने जेनरेटिव AI के बढ़ते उपयोग से इसके संभावित संबंध की ओर संकेत किया है। विपो के महानिदेशक दहांग तांग पहली आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस में है। विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ उनकी मुलाकात में नई खोज AI और बौद्धिक संपदा के जरिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। विपो पैरेलल इंपोर्ट्स के लिए कानून बनाने में भी सरकार की मदद करेगा। मालागासी कारोबारी मामी गावातु मांग की जमानत की मांग पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। बेल एंड रिमांड कोर्ट में 12 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। हल्की वर्षा के बाद भी जलाशयों की स्थिति में बड़ा सुधार नहीं आया है। मऊवाकुआ फिलहाल लगभग 39% भरा है, इसलिए पानी की आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे। अमरीका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए इन हमलों में करीब 3,000 लोगों की जानी गई थी। अवैध रूप से कचरा फेंकने के खिलाफ देश भर में जागरूकता अभियान शुरू। इस अपराध पर जुर्माना 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। कचरा उठाने के लिए मोगी फैसिलिटीज को 6 नए वाहन दिए गए हैं। और अब चलिए बढ़ते हैं आज की मौसम की जानकारियों की ओर। मॉरिशस में ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी आज सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। पूर्वानुमान आज सुबह आसमान में बादल छाए रहेंगे। पूर्वी, दक्षिणी और ऊंचे इलाकों में कभी कभी बादल बने रहेंगे और हल्की वर्षा होगी। दोपहर बाद मौसम अधिकतर साफ रहेगा, हालांकि ऊंचे इलाकों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस और तटीय इलाकों में 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात में बादल छाए रहेंगे। मुख्य रूप से पूर्वी, दक्षिणी और ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और तटीय इलाकों में 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। कुछ स्थानों पर हवा के झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। शाम से हवा धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। खुले समुद्र में स्थिति बहुत खराब रहेगी। करीब 4 ऊंची लहरें उठेंगी। मछुआरों, नाव चलाने वालों और आम लोगों को समुद्र में नहीं जाने की कड़ी सलाह दी गई है। सूर्योदय सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त शाम 6:03 पर होगा।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

प्रणाम सुप्रभात श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए। इस समय सुबह के 6:05 हो चुके हैं। 11 सितंबर 2026 को साथ नभा रही है पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल स्वयं से कीजिए, किसी और से नहीं।

0: आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधा वृष्टि से। इसे सुनते हैं हिंदू महासभा की ओर से।
1: हिंदू महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।
2: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। सभी श्रोताओं को सादर नमन करते हुए मैं बाबा जी गिरीश शर्मा हिंदू महासभा की ओर से आप सभी का आज फ्राइडे 11 सितंबर के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आगामी रविवार 13 सितंबर को, संडे 13 सितंबर को और मंडे 14 सितंबर को हम लोग श्रद्धा भक्ति के साथ हर तालिका व्रत एवं श्री गणेश जयंती के पावन पर्व मनाएंगे। ये दोनों पर्व हमें भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के प्रति भक्ति के साथ साथ हमारे पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण संस्कारों का भी संदेश देते हैं। हरितालिका व्रत, इसको हरतालिका तीज भी कहा जाता है, जो संडे 13 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन कुंवारी लड़कियां और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर भगवान की पूजा करती है। मान्यता है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और व्रत किया। इसी श्रद्धा के आधार पर विवाहित महिलाएं अपनी अखंड सौभाग्य की कामना से और अविवाहित कन्याएं मनोअनुकूल वर की प्राप्ति के लिए हर तालिका व्रत रखती है। हर तालिका इस नाम से संबंधित एक बड़ी प्रचलित कथा प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती के पिता हिमवान उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, जबकि माता पार्वती भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तब उनकी सखियां माता पार्वती को अपने साथ वन में ले गई और वहां इन्हें छिपा के रखा। संस्कृत में हरण का अर्थ होता है किसी को अपने साथ ले जाना और आलिका का अर्थ होता है सखी या फिर सहेली। इसी के चलते जहां माँ पार्वती के सखियां द्वारा इनका हरण किया गया तो नाम पड़ गया इस व्रत का हर तालिका। इस व्रत में माता पार्वती के तप, दृढ़ संकल्प और भगवान शिव के प्रति उनकी अतूत श्रद्धा का स्मरण किया जाता है। यह पर्व हमें शिक्षा देता है कि सच्ची भक्ति में श्रद्धा, संयम, धैर्य और दृढ़ संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। श्रोताओं, हर तालिका व्रत के अवसर पर गौरी शंकर की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। पूजा के लिए वेदी पर भगवान गौरी शंकर की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित किया जाता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धापूर्वक अपने पूजा का संकल्प लिया जाता है। फिर भगवान गौरी शंकर को पान, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिष्ठान आदि अर्पित किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां माता पार्वती को सौभाग्य की सामग्री, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री अर्पण करती है। हर तालिका व्रत की कथा सुनी या पढ़ी जाती है और अंत में माता पार्वती तथा भगवान शिव की आरती किया जाता है। पूजन के पश्चात यथाशक्ति सुहागन स्त्रियां जो हैं एक दूसरे से सौभाग्यवती सामग्री जिसको हम लोग कोंछा कहते हैं, मिष्ठान आदि एक दूसरे में बांट देते हैं। श्रोताओं, हमारे सनातन धर्म में गौरी शंकर की पूजा के साथ गणेश जी का भी विशेष संबंध है। प्रत्येक शुभ कार्य में भगवान गणेश का स्मरण और पूजन सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश विघ्न विनायक हैं, अर्थात वे हमारे मार्ग में आने वाले विघ्नों को दूर करने वाले देवता है। इसी क्रम में हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी अथवा गणेश जयंती जैसे कहें, यह पावन पर्व मनाए जाते हैं। इस साल मंडे 14 सितंबर को गणेश जयंती पड़ रहे हैं। गणेश चतुर्थी को गणेश जन्मोत्सव भी कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के मध्यान्ह काल में भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ है। वैसे तो प्रत्येक मास की चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित मानी जाते हैं और भक्त गणेश जी का व्रत एवं पूजन करते हैं, परंतु जो भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी है इसकी विशेष महत्व है। भगवान गणेश बुद्धि विवेक शुभारंभ के देवता माने जाते हैं। उनका वाहन मूषक है। उनके प्रिय भोगों में मोदक का विशेष स्थान है। सनातन परंपरा में गणेश जी को रिद्धि सिद्धि से भी जोड़ा जाता है। श्रोताओं, हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य भगवान गणेश की पूजा के बिना प्रारंभ नहीं किया जाता। विवाह हो, यज्ञ हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी धर्म अनुष्ठान हो अथवा कोई भी मंगल कार्य हो, सबसे पहले श्री गणेश का स्मरण किया जाता है, जिससे हमारा कार्य निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो जाए। भगवान गणेश के प्रकट होने की कथा में एक बड़ी सुंदर कथा बताते हैं कि एक बार भगवान शिव कैलाश से बाहर गए और उस समय माता पार्वती स्नान करके करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उद्वतन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण स्थापित करके उसको अपना पुत्र बनाया। माता पार्वती ने उस बालक को गणेश के नाम से संबोधित किया और उनसे कहा कि जब तक वह स्नान कर रही है तब तक द्वार पर पहरा दे, किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने दे। कुछ समय बाद भगवान शिव वापस आते और भीतर जाना चाहते हैं, परंतु गणेश जी ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव को भी रोक दिया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। अंततः भगवान शिव ने गणेश जी का मस्तक उनके धर से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की अनुग्रह किया। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने

0: गणेश जी के धर पर हाथी का मस्तक स्थापित करके उन्हें पुनः जीवित कर दिया। इसी प्रकार भगवान गणेश जी गजानन के रूप में प्रतिष्ठित हुए और भगवान शिव ने उन्हें देवताओं में अग्रपूज्य होने का वरदान दिया। तभी से कोई भी शुभ कार्य हम लोग करें उससे पहले गणेश जी की पूजा की परंपरा है। गणेश जी में उनकी विशेष पूजा में ध्रुवा चराना बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव की पूजा तुलसी और भगवान महादेव की पूजा बेलपत्र के बिना नहीं होता, उसी प्रकार गणपति पूजा में दुर्वा अर्पण करना अत्यंत शुभ माने जाते हैं। लाल पुष्प, विशेष रूप से गुलहर, दुर्वा, हल्दी, सुपारी, धूप, दीप, मोदक आदि से भगवान गणेश की पूजा किया जाता है। और परंपरा मान यह है कि गणेश जी को जो भी चढ़ाया जाता है वह 21 के नंबर में होता है, यानी 21 में होता है। 21 दुर्वा, 21 मोदक, 21 घी आदि आदि हम लोग गणेश जी को अर्पण करते हैं। गणेश जी के नाम स्मरण करते हुए अंत में इनकी आरती करके भगवान गणेश के चरणों में अपना भक्ति समर्पित करें। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी के साथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन ना करने की पुराणों में वर्णन है। भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम यो ज्ञातो अज्ञातो अपीवा अभिशापी भवेत चंद्र दर्शनम दुख भाग। अर्थात जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जानबूझकर अथवा अनजाने में चंद्रमा का दर्शन करता है उनके ऊपर मिथ्या आरोप अथवा कलंक आने की मान्यता है। इसी से भगवान श्री कृष्ण पर शामतक मणि का प्रसंग भी जोड़ा जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन यानी मंडे 14 सितंबर को चंद्र दर्शन से बचने का हमारे यहाँ कहा गया है। यदि किसी कारणवश चंद्रमा के दर्शन हो गया तो बाद में गणेश जी के नाम स्मरण, गणेश जी के मंत्र जाप, श्यामतक मणि की कथा आदि श्रवण करके इसका विधान दिया गया है। श्रोताओं, इन सभी धार्मिक पर्वों का उद्देश्य केवल व्रत, पूजा और कर्मकांड तक सीमित नहीं है। हमारे पर्व हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। माता पार्वती हमें दृढ़ संकल्प की और तपस्या की शिक्षा देती है। भगवान शिव हमें त्याग, करुणा और सम्मत हमको प्रदान करते हैं। भगवान गणेश हमें बुद्धि, विवेक और विनम्रता का मार्ग दिखाते हैं। सो चलिए हम सब मिलकर के भगवान गणेश और माँ पार्वती की पूजन करें। आज के इस आधुनिक जीवन में जब मनुष्य हर प्रकार के चिंताओं और तनाव से घिरा हुआ है, तब हमारे ये सभी धार्मिक पर्व जो है कुछ समय के लिए अपने भीतर झांकने, परिवार के साथ जुड़ने और ईश्वर के प्रति अपना श्रद्धा को मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान गौरी शंकर हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी के जीवन में भगवान गणेश सभी बाधाएं दूर करें। हमारे सभी परिवारों में सुख, शांति और समृद्धि बने रहें। हम भगवान गणेश से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर हो जाएं और हमारे मन में समृद्धि और विवेक का प्रकाश हो। हिंदू महासभा की ओर से एवं अपनी ओर से आप सबों को गणेश जयंती एवं हरतालिका व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। चलिए इस साल की गणेश चतुर्थी की पूजा करते हुए हम सब की मंगल कामना करें। आज की इस कार्यक्रम को मैं यही विराम देता हूँ। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वरिष्ठी।
2: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। जारी मरम्मत कार्यों की वजह से पिछितिविया के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर खुद ख्याल के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता

0: है कि शुक्रवार 11 सितंबर 2026 को सुपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर है सी डब्ल्यू ए वालांचिना, वाल्डेवी इवेंट गार्डन, मोंसेलमों लुनवा, पिचितकॉन रेजिडेंस ट्रियानो, मोंसेलमों रिवर एज के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर सोफिया ब्रांच रोड और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 11 सितंबर 2026 को दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: शुक्रवार 11 सितंबर की सुबह 6:30 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस में रेडियोलॉजी और कैंसर के आधुनिक इलाज को आगे बढ़ाने की पहल। प्रोफेसर एडवर्ड लामशांगलिंग ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। उनके प्रवास के दौरान 12 रोगियों को विशेष इलाज मिलेगा। दुनिया भर में छात्रों का औसत परिणाम अब तक के सबसे निचले स्तर पर। OECD की पीसा रिपोर्ट में विज्ञान, मैथमेटिक्स और पढ़ने की क्षमता में गिरावट दर्ज। AI के बढ़ते प्रयोग पर भी प्रश्न। विपो के महानिदेशक डायन टांग पहली आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस में। नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बौद्धिक संपदा के सहारे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर जोर। मामी गावातुमांगा की जमानत की मांग पर बहस पूरी। बेल एंड रिमांड कोर्ट में 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों में करीब 3,000 लोगों की जानी गई थी। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। ग्रेड 11 की दूसरी अवधि की मॉक परीक्षाओं में करीब 20 सरकारी कॉलेजों का परिणाम 50% से नीचे रहा था। छात्रों की भूमिका को लेकर तभी से चिंता बनी हुई है। अब OECD की नई रिपोर्ट ने भी इस गिरावट की पुष्टि की है। ये स्थिति केवल मॉरिशस में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में देखी जा रही है। संगठन का कहना है कि छात्रों का औसत परिणाम अब तक का सबसे के निचले स्तर पर पहुंच गया है। पीसा परीक्षा में 91 देशों के 15 वर्ष की आयु के 7,60,000 छात्रों ने भाग लिया। पिछले 3 वर्षों में विज्ञान में औसतन 3 अंक, मैथमेटिक्स में 9 और पढ़ने में 14 अंक की गिरावट आई है। नई खोज और रचनाओं से जुड़े अधिकारों के सहारे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। सरकार और वाइपो इसी दिशा में काम करना चाहते हैं। महानिदेशक डायंग टांग इस समय मॉरिशस की सरकारी यात्रा पर है। ये पहली बार है जब इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई प्रमुख सरकारी दौरे पर देश आया है। कल उन्होंने विदेश मंत्री रितेश रामफोल से मुलाकात की। विदेश मंत्री का कहना है कि आने वाले समय में नई खोज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाएंगे। डायंग टांग के अनुसार बौद्धिक संपदा से जुड़े अधिकार इस काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। रजनी बीकर,
1: वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डायंग टांग ने इंटरनेशनल प्रॉपर्टी से संबंधित मजबूतीकरण पर एक कार्य सत्र में भाग लिया। इसका मकसद रहा नवाचार, रचनाओं और कलात्मक रचनाओं को सुरक्षित रखने वाले इन अधिकारों को आर्थिक जरिया बनाना और रचनाकारों के लिए आय का स्रोत बनाना। डायंग टांग ने कहा, हमारे विचार से मॉरिशस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर मजबूत नींव है। मॉरिशस के लिए अगले अध्याय के अंतर्गत ये देखना है कि मॉरिशस किस तरह

0: पदार्थ या सेवा बन सकता है। नौकरी पैदा करना, निवेश आकर्षित करना, ठेकेदारों का समर्थन करना, ये भी कि किस तरह फाइनेंसिंग प्राप्त करने के लिए हिस्सेदार बन सकता है बैंक गारंटी को लेकर। इस कोशिश को ज़्यादा आगे जाने के लिए मॉरिशस ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी कई परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के समर्थन की मांग की है, जैसे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन के माध्यम से स्थानीय पदार्थों का मूल्य बढ़ाना। रम, शक्कर और रोड्रिक्स के नींबू पहले से ही इस लेवल से फायदा उठा रहे हैं। मंत्री रितेश रामफल ने कहा, इससे इन पदार्थों के लिए पहचान मिलती है। जब मंडी में ये सामान बेचे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब पदार्थों को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है। निर्यात किए गए पदार्थ हैं, स्थानीय स्तर पर जो सामान तैयार किए जाते हैं, इन पदार्थों को रजिस्टर करने की संभावना है GI इंडेक्स के अंतर्गत। इसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े कमर्शलाइजेशन और फाइनेंसिंग पर भी बातचीत चली। इन परियोजनाओं को अमल में लाने की दिशा में मदद पहुंचाने के वास्ते मॉरिशस में एक विशेषज्ञ भेजे जाने वाले हैं, जो कानूनी ढांचे की तैयारी और वाहनों के कलपुर्जों तथा दवाइयों के लिए पैरेलल आयात को अमल में लाने की दिशा में कार्य करने में सहायता पहुंचाएंगे।
1: मोशन मरीजों के लिए अधिकाधुनिक इलाज जिसमें बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर और कैंसर के इलाज के विशेषज्ञ एडवर्ड लामचाइनिन इसी दिशा में देश की मदद करना चाहते हैं। कल उन्होंने पोर्टलुई के ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। प्रोफेसर एडवर्ड लामचाइनिन बिना कोई फीस लिए अपना अनुभव और चिकित्सा ज्ञान मॉरिशस के साथ बांटना चाहते हैं। उनका उद्देश्य देश में रेडियोलॉजी और कैंसर के इलाज की आधुनिक सेवाओं को आगे बढ़ाना है। उनकी यात्रा के दौरान विशेष इलाज के लिए 12 मरीजों को चुना गया है। सुमेरा अकबर अली।
0: प्रोफेसर एडवर्ड लामचाइनिन मॉरिशन डायस्पोरा के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त खोजकर्ता एवं डॉक्टर है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और मिनिमली इन्वेसिव ऑन्कोलॉजी के एक वैश्विक पायनियर भी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ मुलाकात के दौरान मुख्य रूप से मॉरिशन डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए सहयोग पर बातचीत की गई। साथ में 12 से अधिक मरीजों की जांच और कैंसर से पीड़ित मरीजों पर संभावित मिनी इन्वेसिव ऑपरेशनों पर भी। प्रोफेसर एडवर्ड लामचाइनिन ने कहा,
2: इस पहल से उम्मीद है कि हम कैंसर के इलाज में काबिलियतों को बढ़ा सकें। मैं जो सर्जरियां करता हूं, मुख्य फायदों में से ये हैं कि वो कम दर्द करते हैं, रिकवरी तेजी से होती है, जटिलताएं कम हैं और वो कम महंगी भी हैं। मॉरिशस की स्वास्थ्य सेवा को बेशक फायदा होगा।
0: मॉरिशस में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और मिनिमली इन्वेजिव ऑन्कोलॉजी के क्षेत्रों में डॉक्टरों और क्वालिफाइड स्पेशलिस्टों की कमी है। प्रोफेसर एडवर्ड लामचाइनिन इन क्षेत्रों में मॉरिशन डॉक्टरों के प्रशिक्षण में मदद पहुंचाने का भी इरादा रखते हैं। वे नैनो नाइफ की मदद से एब्लेशन और रेडियो फ्रिक्वेंसी के प्रयोग करने में माहिर है। प्रोफेसर एडवर्ड लामचाइनिन ने हेपेटिक ट्यूमर से पीड़ित मरीजों में कई ऑपरेशंस भी किए हैं और साथ में यूनाइटेड किंगडम में कई प्रकार के कैंसर को लेकर भी, जिनकी बदौलत इन मरीजों की जिंदगी बढ़ पाई है।
1: हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि मालागासी कारोबारी ममी गावातुमांग की जमानत की मांग पर बहस कल बेल एंड रिमांड कोर्ट में पूरी हो गई। मैजिस्ट्रेट अल्फाज फारूक नाथिया 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाने वाले हैं। सुमेरा अकबर अली।
3: दोनों पक्षों के वकीलों ने लिखित तौर पर अपनी अपनी बहस पेश की। वकील कुशल लुबिन सुजियत ग्रुप के CEO की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने 300 से ज्यादा दिनों तक नाइंसाफी से अपने मुवक्किल का कैद में रहे जाने पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि अब तक इस मामले में कोई विकास नहीं हुआ है। वकील त्रिशूल नागा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के वकील हैं। उन्होंने इस बहस पर आपत्ति जताई क्योंकि मलागासी उद्योगपति के फरार होने, उनका गवाहों के साथ बात करने और सबूतों में हेराफेरी करने के खतरे हैं। 24 अक्टूबर 2025 को FCC की तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार मामी गावातुमांग मेलगोज कैदखानी में हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश रचने के अस्थायी इल्जाम दर्ज हैं।
1: रूनियन से मॉरिशस के बीच गांजे की कथित तस्करी के मामले में नया घटनाक्रम। गुलशन गोविंद के वकील रूबेन

कंगापी ले ने बुधवार को आरोप लगाया था कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने उनके मुवक्किल और सांसद वेरोनिक लेगोविन से वकील बदलने को कहा था। आजसू का कहना है कि उसे इस आरोप की जानकारी है, उसने वेरोनिक लेगोविन को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को कहा है, लेकिन रूबेन मुंगापिले के अनुसार गुलशन गोविन ने भी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी मगर पुलिस ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। ग्यारह सितंबर 2001 के हमलों ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी कमजोरी सामने ला दी है। जहां आज से ठीक 25 साल पहले 11 सितंबर 2001 की उस सुबह ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, कुछ ही मिनटों में दो विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर से टकराए। अमेरिका की आर्थिक ताकत का प्रतीक माने जाने वाले दोनों टावर्स पूरी दुनिया की आंखों के सामने रह गए। एक चौथाई सदी बाद भी इस बड़े आतंकवादी हमले को लेकर कई प्रश्न बने हुए हैं। हमले में करीब 3,000 लोगों की जाने गई थी। इसकी जिम्मेदारी ओसामा बिन लादेन ने के नेतृत्व वाले अलकायदा ने ली थी। तो CIA और FBI के पास अलकायदा और ओसामा बिन लादेन से जुड़ी जानकारियां तो थी, लेकिन समय रहते उसे आपस में नहीं जोड़ा गया। ये जानकारी BBC ने साझा की है। इन हमलों में 2,977 लोगों की जानी गई। इसके बाद अमेरिका और उसके साथी देशों ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच जानकारी बांटने की व्यवस्था मजबूत की और आतंकवाद से निपटने के लिए नए केंद्र बनाए। फिर भी इराक युद्ध जैसे मामलों में जानकारी को समझने और सही फैसले लेने में बड़ी चूक होती रही। और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मॉरिशस में ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी आज सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। पूर्वानुमान आज सुबह आसमान में कुछ बादल छाए रहेंगे। पूर्वी दक्षिणी और ऊंचे इलाकों में कभी कभी बादल बढ़ेंगे और हल्की वर्षा होगी। दोपहर बाद मौसम अधिकतर साफ रहेगा, हालांकि ऊंचे इलाकों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस और तटीय इलाकों में 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात में बादल छाए रहेंगे, मुख्य रूप से पूर्वी दक्षिणी और ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और तटवर्ती इलाकों में 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। कुछ स्थानों में हवा के झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। शाम से हवा धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। खुले समुद्र में स्थिति बहुत खराब रहेगी, करीब 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। मछुआरों, नाव चलाने वालों और आम लोगों को समुद्र में नहीं जाने की कड़ी सलाह दी गई है। दिन के दौरान समुद्री लहरों की ऊंचाई धीरे धीरे कम हो जाएगी। सूर्योदय सुबह 6:10 पर, शाम 6:03 पर सूर्यास्त।

0: देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। 29 आहगी स्ट्रीट बुबा सेमी 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की हलीमा करीमन इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज सुबह के 10:30 उन्हीं के मकान बुबा सेम से निकाल कर नमाज जनाजे के लिए डॉक्टर गैद और मस्जिद और सैमोते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM। रॉयल रोड पेटी बिलिया मेबर्ग में 77 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सीता बिमल की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम झुमन, लोग उन्हें सोबा के नाम से अधिक जानते

थी उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के मकान में बग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। काना अवेन्यू काटकोको में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड की इंद्रानी देवी सिरतन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम शोभनाथ, लोग उन्हें देविका के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर दो बजे उनके बेटे शैलेंद्र सिंह सिरतन के मकान काटकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। ब्रांच रोड न्यू खोव में 72 साल के श्री भीर सोना महादाऊ की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें बाईसों के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर तीन बजे उनके बेटे अभिषेक महादाऊ के मकान न्यूकोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिरानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टू डी 3 PM। गिरधारी स्ट्रीट कात्सोमे 56 साल की 56 ईयर्स ओल्ड की सती सावित्री रामचंद की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम किस्तु, लोग उन्हें बबीता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज शाम के साढ़े तीन बजे उनके पति इष्णु रामचंद के मकान कात्सोया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। कौन जानेत रामासोमी लेन शमेंग्रोनी में 82 ईयर्स ओल्ड की मिसिज कल्यामा चेती रेंगन चेती की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद दो बजे उन्हीं के मकान शमेंग्रोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दिगाली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मातारोड कंटोरेल में 88 ईयर्स ओल्ड की 88 साल की मिसिज जयलक तामी रघुदयाल की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुंजल, लोग उन्हें बुल्की के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे आतिश रघुदयाल के मकान कौतुगेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौतुगेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रोवा अवेन्यू सेकोस्टांस सेंट पियामे 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड के राजू रामसामी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राज के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर तीन बजे उन्हीं के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। नंबर 13 रू डेनी पापिन विलियर सैंट पॉल फ्रांस में 82 साल के 42 ईयर्स ओल्ड के जिमी उदित की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी फ्रांस के समयानुसार शाम के 4:30 PM उठाई जाएगी। खुद बासें कटोबोन में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के देवनानन मुदु की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे उनकी पत्नी आरती बुधु के मकान कटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोमा मैल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। अवेन्यू कौसामी मोकामे 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्णादत्त सिबरन की मृत्यु हो गई है। वे पहले रॉयल कॉलेज क्यूपिप में अध्यापक की हैसियत से काम करते थे। उनके अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उन्हीं के मकान मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। न्यू रोड रोशनो में 89 ईयर्स ओल्ड की प्रभावती महेश की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे उनकी बेटी रानी हीरा के मकान खुशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणतिलास्को की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। बुलाकी लेन गुडलैंड्स में
67 साल की 67 years old की मिसेस चंद्रिका सेलिन की मृत्यु हो गई है। मिसेस चंद्रिका सेलिन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम नैपाल, लोग उन्हें गीता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन की 11 बजे उनकी माँ सबिता नैपाल के मकान मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि

0: Lejajagi permission to the at 11 AM. Xavier Root Cascavelmi, Xavier Root Cascavelmi, 36 years old, Kevin Soruhai. केविन सोरोहाय की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें कुनाल की के नाम से ज़्यादा जानते थे. उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके पिता मनोज के मकान कस्कावेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुसोंच की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टू दी एट 2 PM. मामसल जान गुडलैंड्स में 85 साल की 85 years old की यशुमती लखू की मृत्यु हो गई है. यशुमती लखू की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम रामेसर. लोग उन्हें दादी भानी के नाम से अधिक जानते थे. उनकी अर्थी आज सुबह के 10 बजे उनकी बेटी संजीव लखू के मकान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टू डी एट 10 AM. रॉयल रोड पेथी राफ्रे में 89 years old की मित्रावती सिबा की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम सुन्यासी. उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के मकान पर चिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 1 PM. कोऑपरेटिव रोड लफलोगा में 91 साल के 91 years old के केशवर दत्त दुर्बीजा की मृत्यु हो गई है. केशवर दत्त दुर्बीजा की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें चनन क्वाफियर के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी बेटी राज दुर्बीजा के मकान लफलोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टू डी एट 11 AM. रॉयल रोड गांव बी में 68 साल की 68 years old की सकीला स्वाम्बो की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम लक्ष्मण. लोग उन्हें सकीला के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज शाम के 4 बजे उनके पति रामेश स्वाम्बो के मकान खॉम्बे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए श्रमय वैंपिय खॉम्बे की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 4 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार. स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है. यूईएफए चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की धुआंधार वापसी. सालों बाद चैंपियंस लीग में आकर 4-0 की जीत, वो भी अपने ओल्ड ट्रैफर्ड में. हाँ, ये बात अलग है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने एक ऐसी टीम थी जो 4 क्वालिफाइंग राउंड पार करके पहली बार चैंपियंस लीग के लीग स्टेज में खेल रही थी. अज़रबैजान से सबा टीम को मौके मिले, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड कई प्रकार से, कई लेवल से बेहतर था. फर्स्ट हाफ में माचुस कुन्हा, ब्रूनो फर्नांडेज और सिस्को स्कोर कर पाए. फिर मार्टिनेज का गोल सेकंड हाफ में. 2020 से चैंपियंस लीग में ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की सबसे बड़ी जीत है स्कोर के हिसाब से. अन्य मैचों में बायर्न म्यूनिख 5-0 से बोडो ग्लिंट को पछाड़ पाया. फिर इसमें ओलिजे का डबल, डेविस, केन और मुसियाला भी स्कोर कर पाए. कोमो 4, आरबी लाइप्ज़िग 1. पहली बार के लिए कोमो की टीम चैंपियंस लीग में खेल रही है और 4-1 की जीत. फेनेरबाचे एएस रोमा के बीच मैच ड्रॉ 1-1. यही स्कोर रहा पीएसवी आइंडोवन और शक्ता दुनियस्क के बीच 1-1, जबकि लॉन्स ने एवे जाकर स्लाविया प्राग को हराया. इंग्लैंड के लीग वन में स्टेविनेज 2-1. आज के फिक्स्चर्स इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में वेस्ट हैम यूनाइटेड रेक्साम, स्पेन के ला लीगा में एफसी सेविला वेलेंसिया, जर्मनी के बुंडेसलीगा में यूनियन बर्लिन शाल्के 04, इटली के सीरी आ में वेनेजिया फ्लोरेंटिना और फ्रांस के लीग अ में मार्सेई एवे होगा रेन के मैदान में. प्रीमियर लीग के चौथे सप्ताह के मैच वीकेंड फिक्स्चर्स, कल एस्टन विला नॉटिंघम फॉरेस्ट, बोर्नमुथ ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी हल सिटी, क्रिस्टल पैलेस, इप्सविच, लिवरपूल फुलहम, ये सभी मैच 6 बजे. फिर 8:30 किक ऑफ टोटनहम हॉटस्पर एवर्टन और रात्रि के 11 बजे लेट नाइट किक ऑफ आर्सेनल एवे होगा सन्डरलैंड के मैदान में. संडे मैच कोवेंट्री ब्राइटन और द मैनचेस्टर डर्बी, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, ये ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा 7:30 PM. टेनिस, US ओपन के फाइनल में पहुंची अरीना सबालेंका. सेमीफाइनल में सबालेंका ने जेसिका पेगुला को हराया. अभी दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है कोको गोफ और रिबाकिना.

के बीच 1-1 सेट जीतकर डिसाइसिव सेट खेला जा रहा है। लड़कों के सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर वेरेव खेलेगा काचानोव के खिलाफ, चियाफोए शेल्टन दोनों यूएसए से हैं। वुमेन्स एशिया कप के फाइनल में पहुंची महिला शक्ति भारतीय टीम, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कल सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच रही शिफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा 3 विकेट ले पाई। आज दूसरा सेमीफाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच, भारतीय टीम फाइनल में इंतजार कर रही है। उधर इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की टीम 268 रनों से आगे है। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स चल रही है, केवल 52 रन 2 विकेट खोकर 52-42। इंग्लैंड इनिंग्स जीत की तलाश में है। इधर बुक्स फ्रांसेज में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा हमवतन ग्रिगोरी टोमासो 2 मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ है। रीजनल फुटबॉल में रोशनोय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में इस संडे को रिवेज रॉम्पा की ब्लू एंजल्स टीम का मुकाबला बेजिटोंबो एफसी से होगा। और क्रिकेट में आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा का ग्रैंड फाइनल इस संडे को 10 बजे मापू के एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में। एमबीसी की RM2 टीम वहां रहेगी मैच डिटेल्स देने के लिए, और इस पर जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे, और बहुत सारे गेम्स भी होंगे वहां पर। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सफल कमबैक, 4-0 की जीत, अब तैयारी है मैनचेस्टर डर्बी इस संडे को, देखते हैं क्या होगा। नमस्कार, आप सभी लोगों का अभी की ओर से शुभ दिन।

0: 7:01 हो चुके हैं। सभी को प्रणाम, नमस्ते। सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियां के बावजूद भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो परिस्थितियां आपका कल लिखेगी। इसीलिए अगर जीवन में सुधार लाना है तो आपको ही अपने आप को और अपने जीवन को बदलना है, कोई और नहीं बदलेगा। चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं चिंतन से। आइए इसे सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी जमन जी की प्रस्तुति में।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: चित्त का एक स्थान में ही बंधन कर देना, एक स्थान में ही मन का लगाना धारणा कहलाती है, और उस परम ज्योति में तल्लीन हो जाना ध्यान कहलाता है।

इंडियन सिनेमा के वो दौर जहां पर इंडियन सिनेमा रंगों के मोहताज नहीं थे। कुछ ऐसे गीत, कुछ ऐसे लिरिक्स और कुछ ऐसे गायक भी आए थे उस समय, जिनके गीत आज भी सुनहरे हैं, आज भी लोकप्रिय हैं। जब भी हम सुनते हैं, जब भी हम गुनगुनाते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। सुबह सुबह की शुरुआत अगर इन गीतों के साथ किया जाए तो ऐसा लगता है कि हम उस पुराने दौर में, जहां किसी की याद, किसी की बचपन या किसी की जवानी या कुछ पल ऐसे बीते हो जो याद आ जाता है। यूं ही हम नए कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। यही गीत आज भी लोग सुनना भी पसंद करते हैं और उसका आनंद भी उठाते हैं, और ये गीत अपने आप में ही इतने अनमोल हैं कि सुनते ही हमारे जीवन में एक आस आ जाती है और हम बदल भी जाते हैं। अगर रूठ भी गए हो तो हम मान भी जाते हैं, है ना? आशा जी और मोहम्मद रफी जी दोनों मिलकर काला पानी फिल्म से बहुत ही सुंदर सा गीत आप सभी के नाम, जो इस वक्त हमारे साथ रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का दिल से स्वागत है सुबह का नजराना कार्यक्रम में। कुछ पुराने दौर के गीत आप सभी के नाम, और जो अभी घर पर साथ निभा रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, और जो काम के लिए निकले हैं कहेंगे बुंकुआज और चलते रहिए, क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं, चलने का नाम है। जब तक आप चलेंगे तब तक आपको कामयाबी मिलता ही रहेगा। कहते हैं जो गिर कर संभलता है उसी को तो सिकंदर कहते हैं। ये पैसा, गाड़ी, घर, ये सब कुछ तो एक दिन मिट ही जाना है, पर हौसला

को आप मत मिटने दीजिए, क्योंकि ये हौसला ही आपको अपने जीवन में सुधार लाएगा। जिंदगी को खुश रहकर जिया कीजिए, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। इसीलिए दूसरों को माफ कीजिए और आगे बढ़िए। अगर कोई रूठ भी गया है तो मना भी लीजिए।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो

कहते हैं ना, प्यार ही जीने की एक सूरत है। जब भी हम प्यार से जीते हैं, इंसान को इंसान ही समझते हैं और इंसानियत बनने की कोशिश भी करते हैं, तब भी आपके कर्म अच्छे होते हैं और लोग भी आपको पसंद करते हैं। सफल लोग कहीं और से नहीं आते, वे हमारे बीच से ही आते हैं और कड़ी मेहनत के साथ कुछ अलग करने की कोशिश भी करते हैं। फिदा जी न्यू ग्रोव से हैं और साथ में हैं गीता जी पोंफिया से। इतने प्यार से साथ निभा रही हैं। कहते हैं कि ये पुराने गीत पुराने ही होते हैं।

और इसमें जो बात है वो कहीं और नहीं, ये सच है। तो चलिए फिदा जी जो अभी काम के लिए निकले हैं उनको कहेंगे बों कुगार, और यूं ही हमारा साथ देते रहिए क्योंकि रेडियो मॉरिशस आप सुन रहे हैं। यहाँ पर पुराने दौर के गीत ही चलते हैं, साथ ही साथ आप लोगों का साथ और अपनापन, इसीलिए तो हम चले आते हैं साथ निभाने के लिए, आपके ही मनोरंजन के लिए।

साथ में है जयवंती दयाल, सूरज शर्मा सदाजा दी है, साथ में है गायत्री जी नुवेल फ्रांसे, अंगिरा दुबा दुबलाल जी हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं।

श्रोताओं कहते हैं कि समय से बड़ा और कुछ नहीं। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। समय ही बताता है कि आप में कितना हिम्मत है, आप क्या हैं, और आपकी मेहनत ही लोगों के बीच में वो सम्मान दिलाता है। इसीलिए जो भी

होता है जीवन में उसे सीरियसली मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए आप, क्योंकि ये जिंदगी ही तो है, आज नहीं तो कल बदल ही जाएगा। इसलिए सादगी के साथ चलते रहिए। अब आ गए हैं हमारे बीच देवानंद जी, वो उस समय के हीरो। जब भी आते थे ऑन स्क्रीन पर तो लोग उनकी नकल के साथ साथ उनकी अदाएं के भी फिदा थे। एक्टर ही ऐसे कुछ थे। और अभी किशोर दा जी की आवाज में टैलेंट के पावर हाउस।

आशा जानू जी कोटेज से हैं और उनके नेफ्यू ऋषभ पक के जन्मदिन के अवसर पर उनको ढेर सारा शुभकामनाएं उनकी मामा कुमारी और साथ में हैं आरती जी और पापा राज सभी जानू परिवार और किस्ता

हमारा परिवार की ओर से उनको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। साथ में है शोभा जी वाकवा से, लीला जी हैं बौशेरी से, उषा जी हैं हाईलैंड से और शांता सुकारी जी हैं गायत्री जी हैं नुवेल फ्रांस से। तो चलिए एक और गीत आप सभी के नाम।

0: हम हसी
1: झलकियां
2: झलकियां तो चलिए आज दिन है शुक्रवार 11 सितंबर 2026 और एक नज़र डालते हैं आज के रेडियो कार्यक्रमों पर। अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम और 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे और 8:15 बजे आप गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम सुन पाएंगे। 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम लेकर आएगी हमारी प्यारी किरण जानकी जी, फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे फिर से समाचार आप सुन पाएंगे और 9:03 पर आज की चर्चा कार्यक्रम रत्ना द्वारा आप सुन पाएंगे। लीगल मैटर के बारे में आप इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे और आज की चर्चा कार्यक्रम के बाद आप फिर से समाचार सुन पाएंगे 10 बजे 10:03 पर भक्ति धारा कार्यक्रम वेदिता की ओर से और 11 बजे फिर से समाचार आप सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार 11:03 पर

0: में फरोजा कार्यक्रम सायदा के तरफ से, और 12 बजे आप तेलुगु भाषा में कृतिका द्वारा कार्यक्रम सुन पाएंगे। दिन के 1 बजे तमिल भाषा में आरसी की ओर से कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, और 2 बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे। 1:45 पर गुजराती भाषा में रत्ना जी द्वारा एक कार्यक्रम सुन पाएंगे, और चाइनीज कार्यक्रम के बाद आपकी पसंद कार्यक्रम 2:30 बजे, और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी रोशनी। सुपहर के 3 बजे समाचार होंगे, समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा, और सुपहर के 3:45 पर उर्दू कार्यक्रम अनवर की तरफ से, और ये कार्यक्रम शाम के 4:40 तक चलेगी, और साथ में शाम के 5 बजे गीत और गज़ल इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी रत्ना, और शाम के 6 बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार 6:20 पर चंद फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर, और रात के 7 बजे आप तमिल भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे। 7:50 पर मराठी भाषा में आप कार्यक्रम सुन पाएंगे गीत गंगा मराठी भाषा में बापूजी की ओर से, और साथ में है भजले प्रभु का नाम इस भक्ति कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी रोशनी। रात के 8:10 पर 8:40 पर महफिल शब इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी परवेजा, और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुरेखा जी द्वारा रात के 9 बजे। रात के 11 बजे आप कुछ पुराने दौर के गीत सुनहरे पल गिनिशा प्रस्तुत करेगी, जहां पर वो आपको ले जाएगी पुराने दौर के गीत की ओर, और रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक चंद प्यारे गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: रेडियो मॉरिशस, झलकियां।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से क्लेमौसिया के रहने वाले निवासियों को और को सूचित किया जाता है कि शनिवार 12 सितंबर 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है,
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
1: जिंदगी को जीतना है तो हार कर नहीं, हार कर अगर उठना है तो बाजीगर की तरह उठिए और जीवन को जीतने के लिए हिम्मत की आवश्यकता है और वो हिम्मत आपके अंदर ही है। ध्यान से देखें। सरिता जी हैं काथोबोन से, उनके पूरे परिवार के नाम। साथ में है नीता खेदनी जी, चित्रा जी हैं मदालबिया से, कमला दीनू जी हैं और प्यारी आरोही के लिए, ललिता कुशल जी,

डेजिना पोफिया फिनिक्स से उनके जन्मदिन के अवसर पर मोसी मिला और आनंद विलासा गिनू मानिश दीदी खुशवंती और सिसंका परिवार की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: कुछ गीत ऐसे होते हैं जो लोग पसंद भी करते हैं और भुला भी नहीं पाते। प्रीति रंजीत जी साथ निभा रही हैं, आपका भी

शैला जी हैं गांधव्या सुदेश से, अपने पूरे परिवार के साथ साथ निभा रही हैं। सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ये है आपका अपना रेडियो मॉरिशस।

भाई कहते हैं जब भी जन्मदिन आता है तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। वैसे ही केशव बलख रिव्याजपुर से हैं और अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार दे रहे हैं उनके पूरे परिवार और ख़ास तौर पर नया अंदाज गाँव के और एंटरटेनमेंट टीम की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। यूं ही हंसते रहे, खिलते रहे और खुशियां पाते रहे, बस यही आशा है। चलिए आपके नाम फिल्म आवारापन तेरा मेरा रिश्ता खास तौर पर सुबह का नजराना कार्यक्रम में

और अभी साथ निभा रही हैं काजल जी हालन से उनकी प्यारी बेटियां की ओर के लिए, और साथ में है उनके छोटे से बेटे के लिए। और जो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं उन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे एमबीसी टीम की ओर से।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: भाई कहते हैं ना कि जब प्रोग्राम के अंत तक हम आ ही जाते हैं तो दिल बैठ ही जाता है कि आपको छोड़कर जाना है, पर छोड़कर मैं नहीं आने जाने वाली क्योंकि मैं फिर से आऊंगी अभी गर्मा गर्म नाश्ता को लेकर। तैयार रहें कुछ दिमागी कसरत के लिए। तो क्यों ना एक और गीत आप सभी के नाम, जिस वक्त काम के लिए निकले हैं और कुछ पाना चाहते हैं, पाने के लिए जज्बे के साथ साथ प्यार भी होना आवश्यक है अपनी ओर। तो चलिए 7:08 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार फिर से आएंगे गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। आप सभी को शुभ दिन, शुभ शुक्रवार। हंसते रहिए, खिलते रहिए, गुनगुनाते रहिए अभिजीत जी की आवाज में चांद तारे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: फजर के ठीक 8 बजे तक सुना भोजपुरी में समाचार। नमस्ते। दुनिया भर में विद्यार्थी लोगन के पढ़ाई के स्तर में गिरावट आलबा। ओईसीडी के प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा रिपोर्ट में विज्ञान मैथमेटिक्स और ई पढ़े के क्षमता में कमी दर्ज भइल बा। ई परीक्षा में 91 देशन के 760,000 विद्यार्थी लोगन हिस्सा लेलन जा। ओईसीडी ई गिरावट के जनरेटिव एआई के बढ़त इस्तेमाल से भी जोड़ के देखता। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक दाहेन तांग सरकारी दौरा पर मॉरिशस आयल हवन। ई संगठन के कोनो प्रमुख के पहला सरकारी मॉरिशस यात्रा बा। विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ भइल बातचीत में नवा खोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई रचना से जुड़ल अधिकार के सहारे अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ावे पर जोर देवल गल। विपो पैरेलल इंपोर्ट्स खातिर कानून बढ़ावे में भी सरकार के मदद करी। मॉरिशस के मरीज लोगन के आधुनिक इलाज देवे की तैयारी होता, जिनमें बड़ा ऑपरेशन के जरूरत कम पड़ी। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एडवर्ड लामशानलिन ई काम में बिना फीस देश की मदद करे चाहत हवन। ऊ काल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से भेंट करलन। विशेष इलाज खातिर 12 मरीज के चुनल गलबा। मालागासी कारोबारी ममी गवातुमंगा के जमानत के मांग पर सुनवाई पूरा हो गल बा। बेल एंड रिमांड कोर्ट में दोनों पक्ष अपन बात रखलक। मैजिस्ट्रेट इल्फाज फारूक नाथिया 12 अक्टूबर के अपन फैसला सुनयन। रेनविन और मॉरिशस के बीच गांजा की कथित तस्करी के मामला में नवा बात सामने आल बा। वकील रूबेन मुहुंगा पीले आरोप लगैलन कि कुछ पुलिस अधिकारी गुरशन गोविंद और सांसद विगुनिक लुगोविन के वकील बदले के कहले रहलन जा। आज सु सांसद के शिकायत दर्ज करावे के कहले बा। बकीर वकील के अनुसार गुलशन गोविंद के शिकायत दर्ज करावे के अनुमति नहीं मिलल। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमला के आज 25 बरिस पूरा हो गल बा। 2001 में दुगो हवाई जहाज न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गल रहल। इन हमला में 2977 लोगन के जान गल। CIA और FBI के लगे अलकायदा से जुड़ल जानकारी रहल, बकिर सही समय पर ही एक दूसरा के नहीं देवल गल। एक बाद सुरक्षा एजेंसी लोग के बीच जानकारी के व्यवस्था मजबूत करल गल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के ब्रिक्स समिट खातिर नई दिल्ली पहुंचल हवन। बैठक में यूक्रेन मध्यपुर के युद्ध और आर्थिक चुनौती पर चर्चा हुई। पुतिन ईरान के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट करियन। 2019 के बाद ई शी जिनपिंग के पहला भारत यात्रा बा। तो ये रहल हमनी के भोजपुरी में समाचार। हमनी के सुन ला जा। धन्यवाद।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: सुना शोक समाचार। कोऑपरेटिव रोड लाफ्लोरामे 91 बरिस के 91 ओं के श्री केशवर दत्त दुर्बीजा। श्री केशवर दत्त दुर्बीजा गुजर गल हवन। उन कर्माटी आज दिन के 11 बजे उनका बेटा राज दुर्बीजा के घरे लाफलोगा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर खौबुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड पे थी गाफरी में 89 ईयर्स ओल्ड के मित्रावती सिबा गुजर गल हवन। पैदाइश नाम सुनिया सी। उन कर्माटी आज दिन के 1 बजे उन्हीं के घरे पे थी गाफरी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दाऊची के शमशान भूमि ले जावल जाए। मामजल जान गुडलैंड्स में 85 बरिस के 85 ओं के यशुमती लकू गुजर गल हवन। पैदाइश नाम रामेसर। उनकर माटी आज फजीरे के 10 बजे उनकर बेटा संजीव लकू के घरे गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। जावियर रोड कस्कावेल में 36 बरिस के 36 ओं केविन सोहराई गुजर

गढ़ा वन केविन सो गोहाय गुजर गढ़ा वन उनकर माटी आज दोपहर दो बजे उनकर पिता मनोज सोगोहाय के घरे कस्कावेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर वो सोच के शमशान भूमि ले जावल जाए। बुलाकी लेन मिडलैंड्स में 67 बरिस के सुसन सेतों की चंद्रिका सेलिन गुजर गढ़हवन पैदाइश नाम नायपाल उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माँ सविता नायपाल के घरे मिडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार करते मिडलैंड्स की शमशान भूमि ले जावल जाए। न्यू रोड घोषणा में 89 के 89 के प्रभावती महेश गुजर गढ़हवन उनकर माटी आज दिन के 10:30 उनकर बेटी रानी हीरा के घरे होशनों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पॉइंट डिलास के शमशान भूमि ले जावल जाए। अवनी सामी मुकामी 85 बरिस के 85 के कृष्णादत्त सिबरन गुजर गढ़हवन उनकर माटी आज दिन के 12:30 उन्हीं के घरे मुका से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सेकोस्तों सैंपिय की शमशान भूमि ले जावल जाए। खुद बसें काटोबोन में 70 बरिस के 70 के देवनानन बुदू गुजर गढ़हवन उनकर माटी आज दिन के 10:30 उनकर पत्नी आरती बुदू के घरे काटोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थोमा मेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। विलिये सेंट पॉल फ्रांस में 82 बरिस के 42 के जिमी उदित गुजर गढ़हवन उनकर माटी फ्रांस में आज शाम के 4:30 उठावल जाए। रोवर एवेन्यू सेकोस्टेंट सेंट पियर में 66 बरिस के 66 के राजू रामसामी गुजर गढ़हवन उनकर माटी आज सपहर 3:00 उन्हीं के घरे सैंपिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सेकोस्टेंट सेंपिया की शमशान भूमि ले जावल जाए। माताहुआ रोड कंतुरिल में 88 बरिस के 88 के जयलक तामी रघुदयाल गुजर गढ़हवन पैदाइश नाम कुंजल उनकर माटी आज दिन के 1:00 उनकर बेटा आतिश रघुदयाल के मकान कौतुगल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कौतुगल के शमशान भूमि ले जावल जाए। कौशानत रमासोमी लेन शमेंग्रोनियमी 82 के कालियामा चेती रेंगेन चेती गुजर गढ़हवन उनकर माटी आज दिन के 2:00 उनके घरे शमेंगोनी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रिव्यादी गाली के शमशान भूमि ले जावल जाए। ग्रीधारी स्ट्रीट कत्स्य में 56 बरिस के 57 के सती सावित्री रामचंद गुजर गढ़हवन पैदाइश नाम किस्तो उनकर माटी आज शाम के 3:30 उनकर पति इष्णु रामचंद के मकान कत्स्य से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। ब्रांच रोड न्यू खोफ में 72 बरिस के 67 के भीर सोना महादाऊ गुजर गढ़हवन उनकर माटी आज सपहर 3:00 उनकर बेटा अभिषेक महादाऊ के मकान ब्रांच रोड न्यूकोव से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मारीजानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। काना एवेन्यू कथकोको में 66 बरिस के 67 के इंद्रानी देवी सिरतन गुजर गढ़हवन पैदाइश नाम शुभनाथ उनकर माटी आज दिन के 2:00 उनकर बेटा शैलेंद्र सिंह सिरतन के घरे कथकोको से उठाकर अंतिम संस्कार खातिर लावोचिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड पेटी बेलियम में 71 बरिस के 71 के सीता बिमल गुजर गढ़हवन पैदाइश नाम जुमन उनकर माटी आज दिन के 1:00 उन्हीं के घरे मेबर्ग से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पेटी बेलियम मेबर्ग के शमशान भूमि ले जावल जाए। 29 आरेगी स्ट्रीट बोबासामी 77 बरिस के 77 के हालिमा करगल हवन उनकर जनाजा आज दिन के 10:30 उन्हीं के घरे बोबासाय से उठा के सबसे आगे नमाज जनाजा खातिर डॉक्टर रिड स्ट्रीट मस्जिद ले जावल जाए और ये दफनाई खातिर सैमोते के कब्रिस्तान ले जावल जाए। रॉयल रोड ग्रांबी में 68 बरिस के

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से प्रेन विलियम और आसपास के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर मोका और कॉन्डुस, वाक्वा, फिनिक्स, क्यूपिप, फोरेसाइड, फ्लोरियाल, सैंपिया और मोका के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 11 सितंबर को बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और साथ में शुक्रवार 11 सितंबर को बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है,
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हैं पूजा। और जैसे आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको डायल करना है 4028085 पर 402-80-85, नहीं तो आप मैसेज भी भेज सकते हैं। आपको लाइन नहीं मिले तो आप इस नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं, कॉल नहीं, 5251700 पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं
1: गर्मा गर्म नाश्ता।
0: आज जी गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में पहले सवाल कुछ इस प्रकार हैं, ध्यान से सुने। ऐसी क्या चीज है जो खुद दवा खाकर मंडी में आती है? ऐसी क्या चीज है जो खुद दवा खाकर मंडी में आती है? क्या चीज है भाई? 4028085 पर।

0: अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम साला प्यार किस चिड़िया का नाम है।
1: लुक्खागिरी करके अपना टाइम पास होता है,
0: बीड़ी
1: पान चाय मिलता है, बस अपुन खुश।
2: ये प्यार मैं भी खुश, जब भी जवाब मिले तब भी मैं खुश।
1: फिर बोले तो एक दिन अपुन के मोहल्ले में हेमाई।
3: साला अपुन का खोपड़ी चक्कर खा गया, ट्रक के साथ दिल साला टक्कर खा गया।

0: भाई आंख नहीं मारना है, 4028085 पर कॉल करना है और मुझे बोलना है, जवाब देना है कि ऐसी क्या चीज है जो खुद दवा खाकर मंडी में आती है। लाइन पर दो श्रोता हैं, आइए उनको हम सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो,
1: नमस्ते पिताजी।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
1: चेतन, वाकवा से।
0: आपका स्वागत है चेतन जी। और चेतन जी, आपके पास क्या जवाब है?
1: मेरा शायद केला।
0: केला?
1: हाँ।
0: और केलों के साथ साथ क्या भी है जो दवा खाकर मंडी में आती है?
1: केला के साथ
0: बताइए तो। वैसे आपने सही जवाब ही दिया है, पर एक और चीज है। और भी है ना केलों के साथ जो दवा खाकर मंडी में आते हैं?
1: नारियल भी होता है।
0: नारियल भी होता है, तो मैं आपको दे ही देती हूँ। और सही जवाब तो सब्जियां हैं। सब्जियां और फल दोनों ही हैं जो दवा खाकर मंडी में आती हैं, है ना? तो आपको बधाई हो चेतन जी।
1: थैंक यू।
0: और गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभ दिन।
1: थैंक यू वेरी मच।

0: डालिए।
1: वो रात अपन 2 बजे तक पिया, वो रात
0: पीना नहीं है, नाश्ता गर्मा गर्म है, उसका आनंद लीजिए। अभी जो है और भी बाकी है पिक्चर, अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: सुन नहीं रोया
0: क्यों? नहीं
1: काय को रोएगा, साला अपन ही जेड़ा था ना।
0: हथियार इसे काट नहीं सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, वायु से सूक्ष्म भी नहीं कर सकती, वह क्या है?
1: क्या करेगा?
0: हथियार इसे काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, और वायु इसे सूक्ष्म नहीं कर सकती, क्या है वह? लाइन पर हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्ते बसंती जी।
2: जी
0: कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
0: हाँ बढ़िया। आपके पास क्या जवाब है?
2: शिक्षा।
0: शिक्षा? नहीं नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। कोई बात नहीं बसंती जी,
2: हम पढ़ते हैं, हमारा अकल नहीं।
0: नहीं अकल भी नहीं। एक और फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। हथियार इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सूक्ष्म नहीं कर सकती, क्या है वह?
2: जो जो हमारे पास कुछ है वो कोई छीन नहीं सकता हमारा, नहीं।
0: क्या है भाई, क्या है?
2: क्या है?
0: कोई बात नहीं बसंती जी, जी, जी। और आपको कहेंगे शुभ दिन। चलिए पर किसी ने सच्चा और अच्छा सटीक जवाब दे दी। हेलो।
3: हेलो पूजा जी,
0: नमस्कार जी, कैसी हैं आप?
3: जी मैं अच्छी हूँ, आप अच्छी हैं ना?
0: मैं भी अच्छी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका स्वागत हम कर रहे हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। और राधा जी आपके पास क्या जवाब?
3: जी मेरे पास जवाब है आत्मा।
0: क्या बात है भाई, बाबू
3: धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ दिन।
0: और शुभ दिन आपको भी
3: जी।

सोना चांदी नहीं, गर्मा गर्म नाश्ता यहाँ पर जारी है और आपको मुझे बताना है। तीसरे सवाल कुछ इस प्रकार है, घर का सबसे मजबूत दीवार और सुंदर उपहार का नाम बताइए। घर का सबसे मजबूत दीवार और सुंदर उपहार का नाम बताइए। 4028085 पर 5251700 पर आप केवल मैसेज भेज सकते हैं, फोन नहीं। फोन आप कर सकते हैं 4028085 पर।

0: खबर कौन सी आई है, किस से आई है, क्यों आई है? चलिए स्वागत करते हैं। अनीता जी आपका स्वागत है।
1: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, आपका स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में आप भाग ले रही हैं।
1: शुक्रिया।
0: आप कैसी हैं अनीता जी?
1: ठीक, और आप?
0: मैं भी ठीक हूँ। और अनीता जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: सैंपियर से। सैंपियर
0: सैंपियर से, तो आप तो हमारे करीब ही हैं, है ना?
1: हाँ
0: तो दिल
1: हाँ
0: के करीब है। चलिए अनीता जी के पास क्या जवाब है?
1: हमारे सुहाग, हमारे पति।
0: नहीं, एक और जवाब?
1: और जवाब मालूम नहीं।
0: कोई बात नहीं अनीता जी, आपको कहेंगे शुभ दिन।
1: हाँ शुक्रिया। तो अच्छा, तो हम रेडियो में सुनते हैं जवाब।
0: चलिए चलिए चलिए।
1: अच्छा तो
2: फिर वजह क्या हुई इंतजार की।
0: हेलो।
3: हेलो, नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार जी, आपका शुभ नाम?
3: मैं उमा हूँ।
0: उमा जी कहाँ से?
3: रोजबेल से।
0: रोजबेल से आपका स्वागत है उमा जी। और आपके पास क्या
3: धन्यवाद।
0: जवाब है?
3: मेरा जवाब है, हो सकता है हमारी माता पिता।
0: माता पिता, एक एक एक दोनों में से एक बोलो तो।
3: माँ, हमारी माँ,
0: माँ, और वो माँ क्या है?
3: वो है हमारी दीवार।
0: हाँ, नहीं, वो है क्या?
3: वो हमारा सब कुछ है, हमारी माँ।
0: माँ है, वो नारी है, वो उसे घर की
3: हाँ
0: दीवार भी कहते हैं। और आपको मैंने सही जवाब दे दिया, और आपको बधाई हो उमा जी,
3: धन्यवाद।
0: और आपको शुभ दिन, और भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हाँ जी, शुभ दिन आपको भी। बाय
0: धन्यवाद,
3: बाय।
0: बाय बाय।
3: धन्यवाद।

0: मेरी जिंदगी में।
1: और अभी अभी कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं बिस्वानी दिबवा जी, उनका बहुत बहुत जो है दिल से स्वागत हम करते हैं। उन्होंने भी जवाब दिया है, नारी आपको भी बधाई हो। और लाइन पर माला जी हैं, जवाब है माँ,

एक और सवाल, एक और प्रश्न आप सभी के नाम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में, और कुछ इस प्रकार हैं, ध्यान से सुने। मैं फिर से कहती हूँ कि 4028085 पर आप फ़ोन कीजिए, 402-80-85 पर आप फ़ोन कीजिए।

5251-7005 पर आप मैसेज भेज सकती हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। वह क्या चीज है जो टूट जाता है मगर गिरता नहीं। वह क्या चीज है जो टूट जाता है मगर गिरता नहीं। 4028085 पर आप सभी का इंतजार है।

0: चलिए कौन सजना आ गई हैं, चलिए उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते शोभा जी।
1: नमस्ते पूजा जी,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं पूजा जी?
0: मैं भी ठीक हूँ और आपका हार्दिक स्वागत हम कर रहे हैं अभी गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में।
1: शुक्रिया जी।
0: अच्छा बोलिए, आपके पास क्या जवाब है जी?
1: वो है कसम।
0: कसम?
1: जी हाँ।
0: नहीं, फिर से सुनिए सवाल। वह क्या चीज़ है जो टूट जाता है मगर गिरता नहीं? हमारे ही अंदर है ये। चलिए मैं आपको एक टिप्स दे देती हूँ, ये ओगान है, टूट जाता है, बिखर भी जाता है पर गिरता
1: आशु?
0: नहीं।
1: आशु?
0: नहीं
1: नहीं मालूम।
0: नहीं मालूम?
1: नहीं,
0: कोई
1: नहीं।
0: बात नहीं शोभा जी, भाग लिया यही काफी है।
1: शुक्रिया।
0: चलिए शुभ दिन।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्ते अली जी,
1: नमस्ते नमस्ते।
0: कैसे हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल महफूज हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ जी। अच्छा बताइए, आपके पास क्या जवाब? अच्छा,
1: लगता है मेरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, सही डील।
0: सही जवाब दिया है आपने और आपको कहेंगे बधाई हो अली जी।
1: बहुत शुक्रिया
0: शुक्रिया आपको भी और शुभ दिन।
1: जी।
0: ये सवाल तगड़ा है, चलिए देखती हूँ कौन ले जाता है आज सही जवाब। खंडाला नहीं, यहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ता जारी है भाई।
2: ए, क्या बोलती तू,

0: खंडाला नहीं, आपको गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में आना है।
1: और क्या?
0: 4028085 पर सवाल कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। वह क्या है जो झुक जाता है और अंत में अपना विजय दर्शाता है? वह क्या है जो झुक जाता है और अंत में अपना विजय दर्शाता है?
2: करो आंखें में खंडाला।
1: अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या?
0: और क्या है भाई, मजे ही मजे हैं यहाँ पर, दिमागी कसरत हो रही है। आपका स्वागत है महेंद्र जी, नमस्ते। हेलो महेंद्र जी, नमस्ते। हेलो, शायद लाइन में कुछ खराबी है, कोई बात नहीं।

0: एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो,
1: नमस्ते जी। पूजा जी
0: नमस्ते। जी आपका नाम, आपका
1: मैं नंदिनी नेपाल हूँ, मोंगू से।
0: आपका स्वागत है नंदिनी जी।
1: धन्यवाद बेटी, धन्यवाद।
0: चलिए बताइए नंदिनी जी, आपके पास क्या जवाब?
1: मैं बोल रही हूँ, पता नहीं है लेकिन सच्चाई,
0: सच्चाई
1: हाँ
0: नहीं,
1: ये एक और, नहीं झुकाती है।
0: नहीं, एक और जवाब।
1: ईमान?
0: नहीं
1: नहीं।
0: चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने कोशिश किया उसके लिए बहुत बहुत
1: धन्यवाद। शुभ दिन आपको,
0: शुभ दिन आपको भी। चलिए बाय,
1: धन्यवाद, बाय।

चलिए आपको बताना है वह क्या चीज है जो झुक जाता है और अंत में अपना विजय दर्शाता है। चलिए मैं आप सभी को एक टिप्स दे देती हूँ, वो प्रकृति में ही है, प्रकृति का ही एक अंश है, ये कोई फीलिंग नहीं है, प्रकृति का एक अंश है। वह क्या है जो झुक जाता है और अंत में अपना विजय दर्शाता है।

0: करेगी,
1: मुझे पछताना ना पड़े इसीलिए आप भी 402-808-0885 पर फोन कीजिए और मुझे बताइए वह क्या है जो झुक जाता है और अंत में अपना विजय दर्शाता है।

0: हेलो,
1: हेलो जी, नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी। आपका शुभ नाम?
1: जी देवानंद है,
0: देवानंद जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: रघुवीर जी पोस्ट।
0: रिव्यू जी पोस्ट से। अच्छा, देवानंद जी आपका स्वागत है। आप पहली बार भाग ले रहे हैं ना?
1: शुक्रिया।
0: और आपके पास क्या जवाब?
1: एक फल भरा हुआ एक डाली शायद।
0: नहीं, एक और, एक दिमाग लगाइए तो, एक और चीज।
1: मालूम नहीं।
0: कोई बात नहीं देवानंद जी, आपको कहेंगे शुभ
1: धन्यवाद
0: दिन।
1: आपको।
0: बाय।
1: ओके आपको।
2: हाउसफुल के होंठ पर तू मुस्कुराना,
0: कहा ना मैंने तगड़ा है ये।
2: पिया से पंगा लेना ना, कभी ना असलम भाई, आपके बिन सूनी होगी फिल्मी दुनिया। हाय

0: आपको मुझे बताना है कि वह क्या चीज है जो झुक जाता है और अंत में अपना विजय दर्शाता है, वह क्या है? 4028085 पर लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते पूजा जी। मैं
0: नमस्ते,
1: फिर से आ गई।
0: चलिए फिर से आपका स्वागत है
1: हाँ,
0: जी।
1: धन्यवाद, शुक्रिया।
0: अच्छा बताइए, आपके पास क्या जवाब है?
1: मैं ये कह रही हूँ कि गुरु जी है जो विद्या हमें देती है।
0: नहीं, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है,
1: आ
0: नेचर से जुड़ा।
1: प्रकृति से आ प्रकृति से तो वो तो सूर्य है, सूरज।
0: नहीं, एक और। नहीं,
1: सूरज नहीं, दिन है, दिन,
0: नहीं,
1: रात और दिन ढल जाते हैं ना।
0: नहीं, ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं,
1: हवा?
0: आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत
1: ओ,
0: बहुत
1: जो
0: धन्यवाद। आपको
1: हवा
0: कहेंगे शुभ
1: हवा
0: दिन।
1: नहीं है।
0: नहीं,
1: अच्छा, कोई बात नहीं,
0: चलिए बाय,
1: धन्यवाद, आपसे
0: नमस्ते।
1: बात करके अच्छी लगी।
0: धन्यवाद आपको भी,
1: धन्यवाद, आपको
0: धन्यवाद।
1: शुभ दिन।
0: चलिए, आपको मुझे बताना है कि गणपति जी का नाम लेकर आपको मिल ही जाएगा जवाब। वैसे हम सभी बप्पा को लेकर आए हैं,
2: तेरे बिना मैं
0: सभी पर उनकी कृपा बनी रहे वैसे ही आशा है। और एक कॉल मैं लूंगी, फिर देखते हैं कि कौन जीत कर जाता है आखिरी। वह क्या है जो झुक जाता है? मैंने गणपति जी का ये गीत डालकर आप लोगों को संकेत कर ही लिया है, उनसे ही जुड़ा है। वह क्या है जो झुक जाता है और अंत में अपना विजय दर्शाता है?

0: दिमाग लगाइए। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, मेरा जवाब है इंसान।
0: इंसान? नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं, आपको कहेंगे शक्ति ना। चलिए श्रोताओं, इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। मैं ही जवाब दे देती हूँ, वो है घास। वह झुक जाता है मगर अंत में अपना विजय दर्शाता है, फिर से उगता है।

0: चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर किरण जानकी जी की प्रस्तुति में। साथ निभाने के लिए सुबह के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गणपति पापा मोरया।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। काल हमने बतयात्रा लीजा मॉरिशस में कौन कौन रूप में हमने के धरोहर सुरक्षित बा, संरक्षित बा, और बोलत लीजा कि इमे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम मतलब कि परंपरागत ज्ञान और साथ में रीति रिवाज भी शामिल बा। तो चला आज एगो पुराना रीति या प्रथा पर बतियाब जा जेके नाम है सिरनी। आप बुजुर्ग लोग बहुत अच्छा से जाने लजा कि आगे के समय जुन रहल अक्सर लड़का लोग में माता निकलत रहल, माता भोजपुरी में लेकिन किरियोली में लाहुजल। और जैसे कि आप सबको

तुई मन में जा कि हमने की माता पिता दादा दादी आगे के समय में कोनो बीमारी या कोनो दर्द या फिर कोनो घाव लगी त घरेलू उपचार से काम लेवत रलन सा और उ सब घरेलू उपचार बहुत काम आवत रहल। आज के समय में जैसे बात बात पर हमने दवा दारू से काम ले ला जा डॉक्टर के हियाँ क्लिनिक या अस्पताल जायला सा छोटा से छोटा परेशानी खातिर त आगे ई सब नहीं रहल। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम मतलब पारंपरिक ज्ञान यूनेस्को के धरोहर के एगो मुख्य डोमेन है, एगो मुख्य विधा है। तो आगे जैसे लड़का लोग के देह में लाल लाल फुसरी बुतों लो की तो जे उ लरही दुखाए और खचवाए और फोक्का जैसन होय लगी तो एकर से माँ लोग जान जइन सा कि लड़का के माता निकलल बा। और सबसे पहला उ लोग लड़का के ओंच के पैसा से एगो कोना में रख दियन जा, लड़का के सोना के एगो कोनो भी जेवर पहनयन सा और तुरंत ही घर में उ लोग बिसाइन पकैला बंद कर दियन सा और नीम के पत्ता खोज के आनल जाए और लड़का के मतला के नीचे रखल जाए घर के द्वारी पर रखल जाए और ई नीम के पत्ता बुई करके लड़का के नहावल भी जाए और जहाँ जहाँ ओके घाव होल बा वहाँ पर घी लगावल जाए और जितना भी केमिकल प्रोडक्ट्स बा जैसे साबुन डेंटिफ्रिस खुशबू या फिर कोनो भी कॉस्मेटिक उस सब के फौरन इस्तेमाल करल बंद कर देवल जाए। या तो लड़का के चाहिए साफ सुथरा चदर पर नीम बिछा के सुते के और नहीं तो चटाई बिछा के नीम चारों बगल रख के सुते के घर द्वार चदर बिछौना सब धोवल जात रहल, सब सफा लगावल जात रहल, नीम हरदी होला पानी से लड़का के नहावल जात रहल, ओके ओछल जात रहल पैसा से और तीन दिन बाद उ पैसा से प्रसादी किन के सिरनी चढ़ावल जात रहल। और सिरनी खातिर जोन सामान चाही उ पैसा ओकर में लगा के खरीदल जात रहल। सिरनी खातिर अंगना के एगो साफ कोना में माटी के संगे गोबर लिप के हुआ पर बनान के पत्ता रख के पान के साथ गो पत्ता ओकर पर रख के फिर सात गो कपूर और फिर चना फुलावल और चाउर में चीनी मिला के चढ़ावल जात रहल। कपूर बार देबा त जोन छाक तैयार कर ले हवा लवंग और इलायची से उ गिरा के लड़का पर भी उ लगावल जात रहल और चाहे उ लड़का के भीरी बैठा के ओकर पर उ छाक अच्छा से लगावे के और जोन सिरनी जोन प्रसादी चढ़ावल गल बा उ बाँट के बहरा ही सब कोई खाए लड़का भी खाए और बोलल जला कि जैसे सिरनी चढ़ाइबा त ई जोन माता बा जोन घाव बा उ सूखे लगी। इस तरह से सदियों से दादी लोग के उपचार और जानकारी से लड़का लोग अच्छा हो लिया हवन सा। ई माता के दौरान पवित्र रहला से हरदी घी नीम और छाक जहाँ पर लायची और लवंग बा ई सब के इस्तेमाल से घर में एगो स्वच्छ वातावरण एगो अच्छा लवीगुनमा पैदा होवत रहल और सब सदस्य लोग एकर पालन करत रहलन जा। आज भी ई मानल जला कि जब माता होई तो सबसे आगे चाहला उ सब चीज खाल बंद कर देवे के जोन वेजिटेरियन नहीं है और डॉक्टर के दवा दारू के साथ साथ आज भी सिरनी के स्थान हमने के संस्कृति में उतना ही महत्वपूर्ण बा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: घड़ी मिलाते चलिए, इसमें सुबह के ठीक 9 बजे है।

भर में गिरावट। OECD के प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा में विज्ञान, मैथमेटिक्स और पढ़ने के परिणाम कमज़ोर हुए हैं। परीक्षा में 91 देशों के 7,60,000 छात्रों ने भाग लिया। OECD जनरेटिव AI के बढ़ते प्रयोग से इसके संभावित संबंध को भी देख रहा है। अन्य खबरों में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के महानिदेशक दहिनतांग पहली सरकारी यात्रा पर मॉरिशस आए हैं। विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ उनकी मुलाकात में नई खोज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बौद्धिक संपदा के जरिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। मॉरिशस में बिना बड़े ऑपरेशन के आधुनिक इलाज को आगे बढ़ाने की पहल, जहां इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर और कैंसर विशेषज्ञ एडवर्ड लामशांगलिंग ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से कल मुलाकात की। वे बिना किसी फीस लिए देश की मदद करना चाहते हैं। विशेष इलाज के लिए 12 रोगियों को चुना गया है। मालागासी कारोबारी ममी गवातुमांग की जमानत की मांग पर बहसें कल पूरी हो गई। बेल एंड रिमांड कोर्ट के मजिस्ट्रेट 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएंगे। रीयूनियन और मॉरिशस के बीच गांजे की कथित तस्करी के मामले में नया घटनाक्रम। वकील रूबेन मुरुंगा पिले का आरोप है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद और सांसद वेरोनिक लुगोविन से वकील बदलने को कहा था। आज सुने सांसद को शिकायत दर्ज कराने को कहा है, लेकिन वकील के अनुसार गुलशन गोविंद को इसकी अनुमति नहीं मिली। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों में 2,977 लोगों की जाने गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय ब्रिक्स समिट के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक में यूक्रेन, मध्य पूर्व के युद्ध और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा होगी। पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 2019 के बाद ये शी जिनपिंग की पहली भारत यात्रा है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। हमें आ गया दीजिए नमस्कार।

0: आज की चर्चा।
1: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम आज की चर्चा में आपका हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शुक्रवार को हम जो कानून से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके बारे में यहां पर उसके बारे में हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम यहाँ पर ले आए आपके लिए। तो आज भी हमारे साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में कपिल देव रघुनंदन जी हमारे इस कार्यक्रम में हमारे आज का जो विषय है उस पर बात करेंगे। कपिल देव जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: तो आज के हमने के जो विषय बा ऊह लापताज जीवोस के बाद, तो जब एगो शादी होवेला तो कोई जीवोस के बारे में नहीं सोचेला, जब शादी होवेला तो सब कोई शादी में जो दीपांस होवेला कौन डुगा पहनियन स के विदेओ बनाए के कौन मेनी बनी कौन चिखाई के होई ऐसे ऐसा चीज के बारे में सोचेलन स ओकर ले आगे घर किनेलन स लोन लेवेलन स बिजनेस करेलन स तब बाद में जब सदिया नहीं चलेला तो अब तू बिजनेस करला या तो फिर तू लोन लेना तो ऐसन जब समस्या खड़ा हो जाला तक कौन ची होला कैसे लापताज होवेला। कबो कबो ढेर कोई कानून के बारे में नहीं जानेला अपन अधिकार नहीं जानेलन जा। तो आज हमने चाहे उ पति हो चाहे उ पत्नी हो हमने ओ लोग के बतावब जा कि ओ लोग के धुआ कौन ची है।
2: हाँ जी हाँ हे विदिता जैसे बोल है इको मजे एक शब्द में तू सब चीज बोल देला। जब एगो जीवोस होला तो ओकर गजिलता का होला पति पत्नी में कैसे पताश होला। बस कौन कौन चीज में जाने ला एक बार आदमी शादी करेला अब सदियों देख सभी कब शादी करेला आदमी शादी करेला को ही भी है तो बड़ी खुशी रहेला। मॉरिशस में इसी रहले को जमाना कोई भी है बोले ना कौन कल के शादी कर ले तू तो बोले हम तो शादी करना ही कोई भी है। अब हाउ जो शादी कर ले बा सिपाहियों जी भी हैं तो वो बोले अरे तो देख ले पगली नहीं हुए सिपा पगला नहीं हुए सिपाहियों जी भी करते हुए तो तू कहीं तो कुछ नहीं मिली समझ बस
1: सिपाही
2: सोचे ऐसे में इस सब में हमने देख सर में हम तब हमेशा बोले हैं सबसे जरूरी शादी कवरे लाई वर्ल्ड में कमीन होते उस सिपाहियों जी भी अरे जैसे तरेला बोला शादी हो जीवो सो जाए अब ओके देत बा ओकर रजिस्ट्री बा ओके जोन जोन चीज में बा संगे रलन सन जहाँ सबके मिलेला जमीन उन्हें उन्हें किनले वन सन घर बनैले वन सन अब जीवो सावेला कैसे सब मेम की शादी कर ले बा कोई भी है कुछ नहीं मिलेला। तो सेपरेशन जीबियां अपन अपन जीबियां अभी देखो बोल रहा है सभी के लिए मैं ये देख ला ये छोटा छोटा कंसेई जैसे हमने है मैं आइला से ये कानून के है प्रोग्राम में ये हमने कितने का बाहर जो ज्वाइन करेला बोलेला इतने ना कुछ उन लोग के कुमार जल्दी खुलेला तो ही वो अभी कल ओके मन हुई शादी करेगी तो देखे

0: कहला अरे कौन सी है अभी तक एगो लामूद हो गल बा आदमी जाता शादी करे कोंतरा में
1: कोंतरा
0: कोंतरा हाँ कोंतरा एगो कोंतरा वो देखब स कैसे तीन गो काली अभी शादी देखब स कैसे वो कोंतरा जाके सिंह करेला गो नोते रिया सब चीज अरे से बुझो तुहार एगो लोते बा पति के जोन से भी शादी करब कुमार जे ओकरो एगो लोते बा तो हिया जाके सब पापिये में लिख देब लोते तोर लोतोर हमर ई हौ घर ई हई घर हमर सब एगो पापिये नोतेर के आगे ऐसन शादी है देख लो मॉरिशस में हमेशा हमनी कोई भी हैं से बगासियों हैं जी बिया के बात कर लें
1: नहीं तो जब हमनी मॉरिस में जब शादी करी ला जा अभी आजकल तो सब कोई किसी वजह लव मैरिज करता
0: हाँ
1: यानी कि खुशी होके शादी करत हो जा तब एक जना खुशी होके शादी करता तो खुशी खुशी शादी करी वो थोड़ी ना सोची कि काल अगर जिवोस हो जाए तब जिवोस हो जाए तो के कौन सी जाना करे के अभी जब सब कोई खुशी होवन जा तो संगे लोन लेवे लन जा ई काम करे लन सा शादी ले आगे देर कोई अब अथी मया सिविल कर लेवे लन सा
0: हां जी
1: अब मया सिविल हो गल बा अब लोन लियन जा इधर उधर करे के घर बनाए के तब बाद में पता चला कि शादी नहीं चला था शादी जोन बा करे ले आगे परेला तोड़ दे के
0: हाँ हाँ तो ही बोलेला एक बार आदमी बोलेला शादी करे के तो सोच के तू के चाहत ना ओके है शादी करे के बिना सोच ले आदे देहुई से दिख लिया तो के जीवो सोई कोई नहीं सकी बोले हई हमार एक्सपीरियंस कब शादी कर ले हो वो आदमिया से तोर एक दिन हुई जीवोस कोई नहीं सोचेला कि शादी करी आज तो उ एक दिन जाके जीवोस करी
1: वैसे आगे के जोन शादी रहल उकर में कहीं ना कहीं महिला लोग घर पर रहता घर के संभालत अलंजा तो वो लोग जब शादी करके तो बेटी पराया धन है ये सब कोई बोलेला यानी कि एगो छोकरी जब शादी करके अपन ससुराल में चल गल तो उकर आंख जब बंद होवेला तबे वो घरवास में से निकलेला
0: हाँ जी।
1: अभी के जोन महिला लोग हवन जा अभी तब बड़ा बड़ा पुस में शादी करत हवन जा तो जब शादी करत हवन जा तो वो लोग के नहीं सकबा अपन पैर के नीचे दबा के रखे उनकरा नहीं सकबा उकर जोन इच्छा बा उकर गला घोंटे यानी कि आज ओके पढ़ाई के मन बा तो आगे पढ़ी ओके कहूँ पर मान ला परदेश जाए के बा कोनो कू करे के बा कुछ करे के बा तो वो बोली ओके जाए के बा उछल जाए तो ढेर कोई सोचेला ढेर कैसे पति लोग की ईगो जोन बा तनिकुन कहीं ना कहीं उन लोग के तनिकुन लगेला कि हाँ इतना अपन मर्जी के करा था ऐसे करते करते कभी रिश्ता जोन बा खट्टा हो जाला तो ऐसन में जिवोस हो जाला लेकिन जब शादी कर ला इतना पैसा आज 1 मिलियन नहीं रही थे शादी नहीं सकबा करे
0: जरूर
1: जितना खर्च आवेला सब कोई जैसे शादी में अब कॉम्पिटिशन करता था हमार शादी के कौत ऐसे चाहना रहे के हमार लहंगा चाहना इतना महंगा के रहे के हाई अवधी के रहे के तो इतना सब कुछ हुआ था तो वो लोग नहीं सोचा था कि काल एगो समस्या सकी आई एगो प्रॉब्लम सकी आई जहाँ पर जीवोस हो लेकिन जब हमने तुलना करब सा आगे के शादी के और अभी के शादी के तो अभी के शादी में जस्ती जीवोस हुआ था
0: हाँ हाँ जरूर जरूर और जब के नोम दे जीवोस मॉरिशस में बहुत सा बढ़ गल बा
1: और आप तो जब जाल केस देखेला तो हर लागे तो कितना केस आवेला हम तोर से पूछे खोजत है इकर ले पहले कि हमनी लापताज के बारे में बतियाब जा हर जो जीवोस हुए था ज्यादातर तोहर लागे कौन वजह से ई जीवोस के केस आवेला
0: अरे पहला चीज हमने देखा सर जीवोस के बड़का कुमा जो समस्या है आज झिलते है आज के जमाना में कुमा जे एगो जाफे फासिल है पति हो या पत्नी हो एगो कोमेगाज हो के एक बान केस जो ना आवेला मेन रीजन जैसे हमने बोले सर देख बहिया अजिलते एगो को मेराज एक्ल से हो गल बा दूसरा से एक मजा खुशी हो गल बा इलो पति पत्नी में नहीं बनता
1: और ज्यादातर पत्नी वे जाके केस अवधि करेला
0: नहीं दुनो दुनो दुनो बस कि अभी को जमाना चल बा पति भी दूध करेला पत्नी से न बोले नहीं सकेला कर को मेराज हुई मिसल में जैसे आदमी जिएला तो कर कई ओकर से जान जाइब तू ही सिपाही ई का सोचता का होल अरे वो पोठी होगा था कहूँ एगो जाए के पतिया नहीं जाता तो देख पत्नियाँ वो तो अपन खूब आबिए उ करके बिना पूछ ले के ऊकर से साइड सकेला चल जाए अब जान के कहाँ गल बा ऊ भगवान जाने सब मैंने जब सा देता युवा में मैं अजिलते एगो कोमेगाज के लिए एगो सांसे ने थोड़ा हर इंसान के अभी के लिए मातालिते एगो शादी में अनमन बराबर नहीं बा पहले के जब खूब बोला माँ बाप तक मजे से तू माँ उ तो जाने कहाँ जाई उ घर वा छोड़ के न जाए दूसरों या एगो सदियों में जाए तो देख बा अपन परिवार संगे अभी का और आई मिशे वो लोग मिशो अच्छा दोनों के चाहे गो पत्नी के चाहे गो पति के तब न गो खूब होवेला ते गो को मैं गाजो में चाहे गो एगो माडाम एगो मिशे न तो नहीं मजे नहीं होला मैं इच्छा चाहे ना दोनों के ना मैं अभी ये एगो सबसे बड़का मेन रीजन जैसे हमने बोली सर ई है जब एगो दूसर

0: पति दूसर से मजे वो को मेगा जबा अभी यहाँ के पटनिया के
1: कुप नहीं ले जब एको कुप में एको थ्वाजे हम चल इंसान चला वेला
0: ही तब इस सब मजे नाश हो जाला
1: और दूसर एको एको एको एको वजह जिकर वजह से यहाँ जी वो सो वेला
0: तो यहाँ दूसर जी में देख बा दोनों है नहीं से केला जैसे हमने बोला टू गेट ऑन नहीं को मत एकर कागते उकर कागते एकर सोची सोच एकर सोर ईगो सब बा ईगो हा हो गांस एक बांचिज बा दूसर की तरह रिमार्क करी बोली तू तैसे हो वे कैसे तू आउसे बाप रे बा ई ईगो कुमार आर नागिंग लड़ाई घरवा में सब चीज के विषय में एक चीज जी छोटा छोटा चीज में देख बा लड़ाई हुई कब ड्राफ्टे कर बा उकर रिजोवा तो अंतिम कार जो आवेला किसवा लकुरवा में देख भाई या मिशी हुई या मैडम हुई तो मिशी हुआ आ एगो मिशी बोझ मिशी में क्या से हम से भैया तू तारे अरे कौन प्रॉब्लम है बोलो पश्चिम हम लिखे चाहे सप्लें तो हमें लिखे के काहे जीवो स्वा मांगे थे वह बोले कहाँ बोली भैया हम बोला बोले हमारे पत्नी एगो दूसर के खुशी बा अब देख रहा अब वो बगल भी कुमा जगह पत्नियाँ वो तहियाँ एगो केस करे तब मैं हुई बता हमारे मिशे तक को मेघास बा दूसर से अब हम के कोट नहीं लेवेला खाई के ना आने ला लड़का के नहीं दे सब खाली ते किशो मैं मेन रीजन इजे हमने बोल सा एगो को मेघास आ झुलते है कि को मजे रहे
1: डोमेस्टिक वायलेंस भी सकेला रहे धीर कोई मार पिटेला
0: डोमेस्टिक वायलेंस बा मैं नहीं देख बो क्योंकि मार पिटाई के हरे सदिया में बा मैं डोमेस्टिक वायलेंस उतना नहीं बा बा मिसलम कि कम का मारेला मैं कौन की देख बोला मारेला कब आई थोरिया तो कितने देख बो तो कुमार जगह ओजीने बा तो पूछ बा ना ले डोमेस्टिक वायलेंस आल बा तुअरा मारेला पापी बा कुनो दिन मरले रहल तुअरा से बोले पापी है उन्हें बा लात घुसा दे हुआ था कहाँ मिली होकर है कुमार जी है पा है ये गो पापी है कहीं या मिसलम ये भी हुए ला बताओ ला ये भी गो रीजन का मिसलम को अजीज दिखेला जीवोस्वा में ये मार पिटाई के विषय हुआ और हाउ के अचुलते में और शादी कर ले हुआ था ये गो आदमी से रही बना नहीं सक कुमार जी को मेगाज करे मैं डोमेस्टिक वायलेंस में आका उकर कौआ बड़ी सुलिक बाइगो डोमेस्टिक वायलेंस के केस बताई के कि ये मरले बा पतिया तभी से उमांगा था उजीवो स्वा तब जीजुआ सकेला डिसीडे करे मैं हर घर में तो ये देखो एगो कुमार जगो को मेगा जेगो डिस्कशन सब तो हुई भी करेला मैं जैसे बोलिया ना अभी के जमाना में सबसे बड़ा जीवोश के कारण और एक बार अजुलते आली आई ला सर
1: अब जान गए नहीं जा कि जब हमने की काहे जीवोस होवेला
0: हाँ जी
1: कौन उकर मेन रीजन है अब जब बात करब जा मान ला जीवोस हो के बा पति पत्नी अब अलग हो आता
0: हाँ जी
1: अब बा लापता आज के बाद
0: और दिखब स अप्रितार कौन कालिते शादी ज्यादा अच्छा बा ये एगो कुमाजिया लोकाजों भी मिली हमने की दिखब स बस की बान आदमी बोलेला सेपरेशन बिया जी बिया का हुई ई कोई बिया शादी करब स तो हमने सदियों भी दिखब स कौन कौन कालिते शादी बा तब हमने देखा सब पोतस हुआ आली हमने देखी ला सा कि जीवोस एंट्रेने करेला एगो पोतास एगो जीबियन देत पति पत्नी में कब जीवोस हो जाला तो देख बा पति पत्नी में एगो पोतास होल जाला एगो जीविजन होला देत कुमा जे होला मैं सेलम सब डिपेंड कौन कालिते के रेजिम मैट्रिमोनियल में उ शादी कर ले बा अली सी बुझू शादी कर लो कोतरा में कल तो प्रॉब्लम हुई तो सदिये के गाड़ी तक बोल दे बा ये घरवा तोहर वो घर घरवा हमारा तो सवे जे शादी के बाद जिसे वो पपी हुआ कोतरवा बनाई ले बा उसने करी अनसन तो हिया दिखी रहा सर कि एगो है एगो कब एगो आदमी शादी करेला तो के जाने ला कौन रेजिम मैट्रिमोनियल में ओके मन बा शादी करे के आज हम तो बोलती शादी करे के आगे कोनो जोन आदमी जोन भाई कुमार जगह लाजमे बा एक्सपीरियंस बा ओकर से पूछ कैसे कुमार जे तू सोच अच्छा हम जाते हैं शादी करे के एगो चीज में न हम समझी ला एगो आदमी कब खुशी हो जाला वो सब नहीं देखेला वो नहीं देखेला कौन रिलीज कौन में जा रिजिम में जाता शादी करे कौन काली को कोई बिया से पकाशन जी बिया नहीं हिया तो खुशी हो गल खुशी में पगला हो गल बा वो तम के मन बात सदिया करे के ये नहीं एगो और बोले ना सन एगो खुशी कुमार जे लव इज एगो आवेग ओके कोई के नहीं लव के हाँ खाली तो हिया देखेला आली मॉरिशस में हमने देख लिया सा पोतास जीबियाँ जोन हुएला और ओकर देत भी ई कुवे करेला हमने के कुछ सिविल मोशियाँ हमने के कुछ सिविल मोशियाँ ये वो पुस्तक मॉरिशस के कानून ओकर लीगल सिस्टम ओ में सब लिख दिलवा है हमने के है कानून कैसे गुवे एने हुएला कौन ची है तो सावी जे काल देखब एगो कुमा जे प्रॉब्लम

0: कोई सिबोजों शादी के विषय में एगो डिवोर्स के तो हमने के देखब को हमने के देखिए हमने के कुछ सिविल मोशन हमने के कुछ सिविल मोशन ओ कब आर हमने तभी लोकेशन तो हमने के नहीं आलबा सिस्टम कैसे हो रहा तो हमने के अपने बा दूसर पे ही के हमने नहीं स्वाजिरे कर लही सर हमने के कानून बा ई है कुछ सिविल मोशन जो अभी हो गल बा हाँ हमने के लाइ शुरू होल सिस्टम कोड लाम्बो नापोलियन से फ्रांसे से मैं अपनी आज बना दे नहीं सर खुद अपने एगो है कानून ई कुछ सिविल मोशन जैसे हमने बोल सर जो गुवेरने करेला सर हमने के कानून तो देखिला सर मॉरिशस में एगो आदमी अब ओके मन बा शादी करे के तो ओके एक गो सिस्टम रेजिम मैट्रिमोनियल कौन शादी करी कौन कालिते में तो देखब पहला तीन कार जो रेजिम दे कम्युनिटे दे बियाँ एक हमने बोली ला सा कोरे बियाँ तो तीन कार मोरिशिया कब शादी करेला उ शादी करेला कोरे बियाँ था एक एन एन हान देख सकें से दूसरा को बा शादी करेला तो रेजिम सेपारेशन जी बियाँ उकमा जे सेपारेशन जी बियाँ ओकरे ने मुँह तो बोल दे होता सेपारे तू तोहर जमीन उ जो उकमा जे है जो चीज तोहर रही और उ रखी जो ओकर मजे चीज बा सेपारे और तीसरा जैसे हम बोल रही तरेलवा बा एगो रेजिम कन्वेंशनल उ जैसे हमने बोलेला कॉन्ट्रैक्चुअल ई कॉन्ट्रैक्चुअल यही है तरेलवा बोली तोरा ना नुतिर के आगे जाके सब लिख दे बा कौन कालिते शादी करत हुआ और कुमा जे का करे के चाहेला कौन कौन चीज तोहर है बस ई चाहेला लिख दे के सब शादी कर तो देख लो हमने के मॉरिशस के कुछ सिविल मोशन बोलेला कब शादी करेला तो स्वाजगी करेला कौन रेजिम मैट्रिमोनियल शादी करत हुआ या शादी करत हुआ कोरे बियाँ या शादी करत हुआ सेपारेशन जी बियाँ या शादी करत हुआ कॉन्ट्रा में तो देख लो ये तीन गो जोन बा इमें चाहेला एक गो में शादी करे के नहीं तीनों में सब शादी करे नहीं सब मैं तुम्हारा स्वाजगी करे के चाहेला एगो वा एगो रेजिम जोन कुमार जे
1: इमें अभी अभी तीन गो हमने के बोल ला
0: हाँ
1: शुरू करी ला जा को ए बिया के साथ जब एगो शादी होला को ए बिया तो कौन ची बोला जला को ए बिया
0: हाँ आले एक बार आदमी है सोचेला कि को ए बिया तदमी ने आदमी बोलेला अरे हम का तो लेको से शादी करब कुमा जे ओकर शरीर से शादी ई करे कर को आर ओकर त बियाँ त सब चीज जो ओकर बा धन दौलत होई जमीन हम सब को जी बियाँ जैसे हमने बोलीला सर मे सेलमा हमने रेजिम कम्युनिटे दे बियाँ देखीला सर ई जब एगो पति पत्नी जाला शादी करे है कुमा जे लेता सिविल में ओ बोलेला कौन कालिते शादी करता मैं एगो चीज है हम तो गैली शादी करे तो हम तो सोच ले नहीं रही हम के वो आदमिया बोले कौन ओलोफिशियो मतलब बोले थे कौन साली काली ते शादी कर बे तू आ तोरा एगो छोटा सा पापिए देवेला स्वाजगी करे के कौन ई में आर सबके तनी तनी एगो कुमा जाए फो माशो बा कोई बियाँ का है सेपरेशन जी बियाँ का है वो शादी सिबोजों कॉन्ट्रा में करब कौन कौन सी है तो हियाँ कब जाला शादी करे एगो आदमी तो बोले कोनो तो बोला तू ही देख देख लिया अपने नहीं जाना था कौन सी शादी करे मिसल में एगो छोटा सन देवेला एगो मेमो उ लेता सिविल के ऑफिसे हुआ जाके तू स्वाजगे कर अरे पाँच मिनट में जब उ कुमा जे शादी करता को रेबियाँ कम्युनिटे दे बियाँ जब को रेजी मैट्रिमोनियल कम्युनिटे दे बियाँ कब शादी करेला तो वो देखब ओकर दिमाज में मशोने ही नहीं करेला कुलून देखब कुमा जे है राइट हैंड साइड में नहीं बोलेला कौन काल थी शादी कर ले बा जब नई मांसो ने करेला ऊ कौन शादी कर ले बा मैं सेपरेशन जिबिया में लिखेला है हिया को बियावा में नहीं लिखेला तो ऊ आदमिया शादी कर ले बा रेजिम कम्युनिटे दे बियाँ बस नहीं बा ओकर लाग दे मयाज में कौन काली थी शादी कर ले बा और ओ जोन जे कुमा जे जोन के नहीं लिखल बा ओ शादी कर ले बा सेपा है कोई बियाँ कब शादी करेला कोई बियाँ तो ओके चाहेला है के कब लाखुआ बनाई हो ऑफिशियो हुआ हुआ ओके बोला वो अरे शादी कर ले ना कोई बियाँ अरे कोई आज से तू शादी कर ले कोई बियाँ मैं नहीं मोशने करेला सर ई में कौन सी है
1: अब जब सेपरेशन जी बियाँ रहेला
0: हाँ
1: तो कल में कहीं ना कहीं लिखा रहेला कि सेपरेशन जी बियाँ
0: हाँ
1: पहले डाल दे वलन सा
0: हाँ हाँ पहले में दोन सा मैं भी हमने आए ला सा ये कोई बियाँ हुए में हाँ। रेजिम मैट्रिमोनियल में बड़ी खुशी की बात है शादी करेला के एगो आदमी जब एगो मजे हो गल बना
1: हाँ, हाँ,
0: हाँ। नहीं मैं एक बान आदमी सोचेला एगो मिले नहीं सकी शादी करे

0: Cosa di? E come sono le uova? Vuole dire tutta quella di cavi? Mi ne ha che come dire?
1: 16 anni, 17 anni.
0: Ah, ta, ok, bolla ta, hamni che canon li che la, li calba. E go mi ne ha giun che 18 anni ba, or 18 anni, poi, come dire, 16 anni, se 18 anni ta. Se vous en 17 anni ba. Hein? Ta, ou lei qua, ou lei, come dire, mi ne ha, sa chi sa di kare, résime communauté des biens. C'est moi ça régime oh, légal ha. Communauté des biens.
1: Agé, maaf kara, lekin aage 16 baris ke 17 baris ke ye sab shadi hota hal.
0: Ha, hot rahal mein ek ban admi u bakhatwa nahi jane ki abhi ko puche jo abhi dekh sab kaise hua la, hok maja shadi kaise karela, to tin kar tad me bole nahi to abhi to laaz nahi hulba, atan kariye, kab ho jaye to ke ko maja se bujon jis bhi ta, to mine maze ho gale.
1: Ye hum jana the hamar maa ke shadi 16 baris mein ho rahal.
0: Ha, hai ka, tu dekh le, seulement pehle ke shadi ko maja rahal, to civil nahi rahal. समझ ना कब मजे कब शादी करें सन 1981 से कब लालवा सांझे होल बोले हर है आदमी जो शादी कर ले बा कुमाजे है एगो शादी में खाली शादी के कुमाजे जो रिकोनेक्ट नहीं हुए उस सदिया से सकी अब कानून हो जाए वही सदिया अब से की करेगो मौया सिविल नियर समझ ले ना
1: आगे उतना मौया सिविल नहीं होता
0: नहीं नहीं बस के हमने के देखो बोलिए कि हे माँ बाप शादी कर ले रहल तो नहीं शादी कर ले रहल कुमा जे सिविल वो बकतवा में मौया सिविल नहीं रहल में का होल 1981 के बाद लेता सिविल के लालवा गवर्नमेंट पास कर ल कि मजे अब एगो आदमी शादी करी तो मौया सिविल करी और जे नहीं कर ले हो बकतुआ में कैसे बोले तो माता जी अब का तो वह एन के बाद सखी जाके कुमाजे लेता सिविल में जनाई कि अब ओके कुमाजे मन बा उ सदिया जो कर ले रखल अब ओके मौया सिविल
1: ओके एगो एगो पहचान दे वेलन जा ना एगो हाँ। एगो थप्पा ले गेला एगो पहचान दे वेलन जा और ऐसन में काल के पति के कुछ हो जाए या पत्नी के कुछ हो जाए तो जमीन के मिली जायदाद के मिली के ऐसे जरूरी है जाने की कि जिबियावा कहाँ जाता
0: हाँ, ना हाँ आली अब यहाँ देखा था ना ओके कुमा जे 18 ans बा या 18 ans से कम बा मैं 16 ans से 18 ans तक उपे यदवा में सकी शादी करे एगो रेजिम कम्युनिटी दे बियां में समझना जैसे कोई बिया बोलते हैं कोरे में एगो चीज है एगो बोले कि एगो छोकरवा जन शादी करता या छोकरिया बोले हम नहीं शादी करब कोई बिया हम के मन बात शादी करे सिपोजो एगो सेपरेशन जी बिया ओ मिने हुआ सकी शादी करे एगो लोट है में कुम जी को रेजिम कम्युनिटी दे बिया में नहीं नेसेसियर एगो दूसर में सिपोजो सेपरेशन जी बिया हाँ तब ले ओके जीज परमिशन वा नहीं दे वो मांग करता जीजुआ से तो जीजुआ हुआ देखी जीज एंसेम्ब हाँ वो डिसीडे करी दोनों के कब देखियो कर है में एस के ई चोकड़वा के जो या चोकड़िया जो उनके 18 ans है कुमार जैसे था जब है माजे नहीं बा 18 ans आर है से 16 ans तक बा हम डिसीडे करब ई सिपा जो मांगता वो शकल लाई दे नहीं ou décider la accepter oui ya zizwa boli en chambre hum nahi de ta dekh la hi ya kaise tin kar admi bhai log sochela are mar bitwa to ho gal batna la ki itna chukriya ke paache ba din raat hum ke bolata pa hum ke shaadi kara de ko se shaadi kara de tam to ke bolal miner hai aur hum to jana the miner ke dwa nahi ba nahi बा हमनी के कानून में
1: माँ बाप खड़ा होला
0: तो हुआ उसके तो उस शादी करी सर बस के ओकर बान माँ बाप हुआ खड़ा रही तो मांग करी एगो जीज एंसेम्ब के कि देख हमार बेटा के मन बात शादी करे के तो शादी करी तो के परमिशन भी मिली तो सदिया भी होई आर के मन नहीं हुई शादी करे मजे रेजिम मैट्रिमोनियल हो गई भी है सकी एगो दूसरा है मजे रेजिम में शादी करी
1: बहुत बढ़िया
0: देख ला आली अब हमने आई ला सा यही इम्पोर्टेंट चीजों में ये हमने जो बोली ला सा को रिबियन तेरे लोग हम क्यों क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं हमने बोला सा ये कैसे हुए ला कौन सी है आले तो हमने के रेजिम मैट्रिमोनियल जो बा को रिबियन ये कंपोजे हुए ला दे पैट्रिमोन में मतलब दो गो है में है डिविजन में सुबह दो भाग में एक मजे जस्ती ऐसा रही बोले के दो भाग में है एगो है जीबियन हो आ दूसरा है बियां कुमें ई खा तब न देख सकब जीवोस्वा करब स तब जानब स कैसे ई चीज हुआ बांटाला आली

0: जब उजी बिया भोबा तो के दिखिला सा ये का होएला हर जमीन हर जिबिया जोन एगो आदमी शादी करे के अगाड़ी ओकर रहल शादी करे के अगाड़ी ओकर रहल आली तो ऊ हमने बोलीला सा ऊ एगो जिबिया पेसोनेल है और एगो जिबिया भोप है। पेसोनेल मतलब शादी के आगे कोनो इंसान का तू हवा का हम है शादी करे के आगे अगर एगो बोली कि हम तो शादी के हई कोई बिया से हमारे पत्नी से मैं कर बाप दे दे रहे बड़का दो नाशों है सब एक देखब सा का दे रहा घर उ दे बा जमीन उ सब दे दे बा मैम कि हम शादी कर लें ओकर से कोई भी है हमके तक कोनो हक नहीं बा ओकर में बस कि उजीबियों ओकर है शादी के अगाड़ी वो लेक्सॉप दे ला तो हिया ओके कुमार जब वो है जीबियों ओकर हम कुछ नहीं सकब करे उजीबियों में न हमार पे अमीशियों बा मन बाओ के लेगो लिपोते कले सब देख सा मन हो गो लिपोते कले के मन हुई बेचे के मन हुई कोई दूसर के खड़ा हुई के गांचू में हम जेवो हैं मेम की हम शादी कर ले कहीं को बियाँ यही से तरह हम बोले रह लिए एक बार भाई सोचे ला अरे हम शादी कर ले हैं को बियाँ हम मम्मा ओकर तो घर बा कपमा बा लुटो बा सब हमरो ही तो मिलबे करी नहीं भैया ऐसन में कुमार जी कॉन्सेप्शन में जाई के नहीं चाहेला तो यहाँ देख ला जिबियाँ प्रोप जो पेसोनेल जो ओकर रहल शादी के बाद भी देख सब एक मिनट मैं यहाँ देखत हैं सर वो प्रोप्रिएटर रही शादी करे के आगे जानेला एक बार है माँ बाप बा कहा करेला बोले हमारे तो एगो बेटा बा एगो बेटी बा अरे काल शादी हुई पंगार ना हो ओकर पति माँ जी सब ले उले ओकरो तो मिलबे करी तो बोले नहीं शादी करे के अगाड़ी चलो पताज कर देला समर लड़का लोग के
1: हाँ यानी कि बेटी बात है बेटी के मान ला एक बीघा जमीन बेटी के दे देला घर इधर सब बेटा के दे देला शादी ले आगे दुनो के ओकर नाम में एकर जमीन बा ओकर घर बा तो ई सब होगल अब जब शादी होगल तो पति न सकी जमीन में घुसे और पत्नी न सकी घर में घुसे
0: अरे कर से जुड़ी आज खूब एक्सप्लेन कर देला तो आप देखिला एगो एग्जाम जैसे खूब बोलला माँ बाप बा एगो दोनाशो देवता
1: हाँ
0: मतलब एगो है दान देवता ओकर लैका के हाँ। दूसर के नहीं देखते हैं सर ओकर लैका के एगो दोनाशो देवता शादी के आगे जैसे अभी देख ली सर या शादी के कुमज कब शादी कर ले लो शादी के अगाड़ी बोले नहीं तो हमारे धन बा एगो चीज भी अच्छा है जब एगो माँ बाप दुनाशो करेला तो तोरा नहीं बाप पे करे के हई कापत कि हई एगो फे बाकमा अनरजिस्ट्रेमा सब में करे के उकमा जाए पे करे के नहीं कि काल के लिए सैंक पूछो जैसे हमार तू में से एगो जमीन हमारे से बेचत हो काल हमके कब किन ऊ जमीन हुआ तो हमके चाहना सैंक पूछो गुवेनमा के पे करे के ओकर वाले के मिया कब मऊआ बपुआ एगो लैका के देवता शादी करे के अगाड़ी या शादी के बाद दे बाऊ के ऊ जमीन हुआ ओकरे रहेला तो सभी जब शादी कर लको भी है मिशेवा के का मिलल सदियों के गाड़ी इस सदियों के बाद वो जिबियाँ वहाँ ओकरे रही
1: ओके दोनाशों बोले
0: ओकर दोनाशों ओके ये कब नुतेर के आगे कर ले बा तो नुतेर के आगे कब बोले ला बोला कौन काल थी कर ले वाला बेचत हुआ ये जमीन हुआ तो हर लड़का से एगो वंत जिसे हमने बोल सा या एगो दान दे हुआ था एगो दोनाशों
1: नहीं तो अभी एगो माँ बाप अपन लड़का के लापावताज करेला ना
0: हाँ
1: तो लापौताज अलग बा
0: हाँ?
1: बेचे के अलग बा
0: हाँ?
1: और दुनाशो अलग बा
0: हाँ?
1: या तीन गो चीज बतियाती सभी हमने
0: हाँ हाँ मिसलमत दुनाशो ई देवता को दान अपन लड़का के समझ हाँ? लिया कैसे ई माँ बाप को मजे जीते ही में
1: हाँ हाँ
0: तो जीते ही में
1: तो लापौताज नहीं होगा
0: नहीं नहीं लापौताज नहीं है
1: हाँ?
0: अभी ओके देवता बस वो तो अकेले बा भी
1: हाँ
0: अकेले बा ना अभी नहीं देखते समझी सा पताज कैसे होता नहीं सिपा को दिग्बान जीचे बा नहीं हम नहीं देखते हैं अभी एगो माँ एगो बाप एक के गो लैका हुआ बा जो सदिया के बतुआ में बोल रही से ना तो ओके का करी ओके देवत है एगो दोनाशो जब जाके शादी करे के गाड़ी उसी बुजुर्ग जमीन हुई एगो घर हुई बोले बेटी सिपा हेले हम तो के दे देवत अगर ये मरे के आगे हम जानते हैं खुशी रहती तो के दे दे

0: इला तो ऊ लैकुआ ओकर फोपिएते रही ऊ जिबेवा ओकर पेसोनेल रही शादी के अगाड़ी शादी के बाद मैम की शादी कर ले बा ओकर जमीन है मिशेवा के कुछ नहीं मिली नहीं तो दिखल को बिया शादी कर ले बा गजिम को मिलोते दे बिया अब हमने देखी ला सा ऊ जमीन हुआ अरे एगो सिक्सेशियों में भी कैसे एगो माँ बाप रहेला एगो जमीन रहेला अरे सिपोज ई में जैसे जे तू बोला सिपोज जे रिचे बा पताज करेला कब सिक्सेशियों होला कब माँ बाप कब गुजर जाला ना तो हुआ की मिलेला जोन जोन धन दौलत के मिला ऊ जमीन हुआ जो लोग सिक्सेशियों में मिलल बा ऊ जमीन हुआ ओकरे रहेला मैम की शादी कर ले बा शादी कर ले कोई बिया कुछ अभी तक तो कुछ नहीं मिली यहाँ तो शादी शादी कर ले कुछ नहीं मिला था एगो भोली के देख लो हिया बड़ी एपोत बा कब हम देखी ला सर एगो लड़का एगो सक्सेशियों में एगो दुनाशियों में जब ओकर माँ उ सब कर दे बा नहीं है ओ कैन पताज करे के पताज नहीं करके ओके मन नहीं होई मैडम वहाँ के या ओके मन बा बेचे के या कुछ करे के जैसे बोली सा तरेल हुआ ऊ जमीन हुआ ओकर हो जाला तो हिया देखे ल शादी करे के अगाड़ी माँ बाप जे दे दिले बा एगो जमीन माँ बाप दे मर गल बा ऊ जमीन छोड़ के चल गल बा ऊ लैकुआ सिक्सेशियों हमने बोली ला सर तो ऊ डेग बा ऊही रहेला फोपिएते याली ये तो जुली बा जमीन के देख ली सही एक बान चीज के अब एगो आदमी शादी कर ले बा सिपोजो हम अभी शादी कर ले हैं अरे एगो बड़का केस अनली जहाँ कुमा जे एगो आदमी का करलक हमके एगो चीज करलक अब हमके पूछिब कर ली लाकूर में
1: हाँ
0: हमके तो बड़का एगो दुमाज मिलल हमारे दुमाजवा कुमा जे अभी हमके यहाँ मिला था तो वो दुमाजवा जो मिले ला जैसे हमने बोले सा दुमाज कोपोगेल जो मिलल बा ऊ दुमाजवा ऊ पैसुआ
1: हाँ
0: दुमाज तो पैसा है तो वो हमारे रही
1: अच्छा
0: मिशेवा नहीं जकी मेम सा फैम मिशे मैडम का बोलिया था तो मजे दोनों के वाइस वैसा
1: यानी हम आज कोई के दुमाज दनी और ओकर बदले में मान लो हमके कितना एगो 5 लाख 1 मिलियन मिल गल तो वो जो 1 मिलियन बा वो हमर रही
0: तोहर रही
1: पति के नहीं मिली
0: नहीं कुछ नहीं मिली ई दुमाज मोगाल भी जी ओके आर एक बार चीज नहीं देखला बोली अरे बाप हमार कपार फाची गयो गल बा दो मास ओके तो यहाँ देखला एगो दो मास कोपो गए एगो दो मास मोगाल जब ओके मिलल तो ओ पैसुआ देखबा ओकर रही मिशुआ ओके कुछ नहीं मिली ये तो जोली बा दो मास के बाद बोलत हैं सर अब का होल बा एक बार आदमी सपोज हो ओकर चीज एगो बिजनेस करता
1: हाँ
0: कैसे तू हुआ आर है तुहर पति बा अब तू एगो कुमा जो काम करत हुआ वो में तुहरा चाहेला सब तुहर जुचि जो के चाहेला काम करे के ये तुहर हो
1: अच्छा
0: ये हमेशा एगो सुदे के सुबह एगो मशीन बा तो ओकर मशीन हुआ ओकर पत्नी को के नहीं मिली ओकरे रहेला बस की ओ कुमा जब बोले लन सर उची दे ट्रावाई हो अरे एगो प्रोफेशन करे के रहेला और से तो प्रोफेशन से पारे से पारे जे कर ले उनसन सब चीज ओ कुमा जे अपन अपन कुमा जे रहेला ये तो जोली चीज बा मैं एक बार आदमी अरे अभी हम काम करते हैं एगो बड़का फेम में हमके एगो फेम में काम कर लग पथुआ हमके बोली जाने ले अब हम तो के निकालब
1: हाँ
0: तो हम बोलिए फेयर डिसमिसल है पिता आप सत्य नहीं प्रोग्राम हमने के हई भाई को हई रलन टूरल वो करते ली में हई में मैं हमने तो आपसे पिता लालुआ जी का भाई अरे लालुआ जी का भाई में वो कब काम करता है हई हई सिबूसों पतिया बस याम मदम हुआ अब ओके देखबो कर पाथुओं के निकाल दिलक
1: हाँ
0: तो वो बोले नहीं तो के निकाले एंड फेयर डिसमिसल इकरे बोल जाला रीजन नहीं वैलिड बा तू हमके निकल ले एगो केस डाली लाकू इंडस्ट्रियल में अब वहाँ सिबोसो पुसुइव करलक ओकर एम्प्लॉई के ओकर एम्प्लॉई वा के बिला गल ओकर किसो है एम्प्लॉई वा तो हियाँ लाकू देखलब नहीं ओ मैडम वा जोन काम कर ले रहल वो अपन काम कोरे कर ले बा हियाँ पथुआ एगे करलक तो पथुआ के पेये करे के चाहेला पैसा एगो जब एगो पैसा दिलक सिपोज दे मिलियो
1: हाँ
0: कोनो के तो 10 मिलियन देखो कितना बरिस कर ले हुआ काम कैसे कैसे तुहर साले वो सब कितना मिले तो वो पैसुआ जोन मिलेला ओकर

0: कमुआ बगल से जोन ओके कुमा जे मिलल ओकरे रहेला जोन अदमिया के लकुरुआ में देवेला लकुरुआ में नहीं बोलेला मिशे मैडम के चाहेला बोके प्लेंटिफ जोन अदमिया के स्वाद दल्ले बा
1: ओके
0: चाहेला मिले के तो दिखला ही यहाँ ओकर काम करता तो ओकर लहरी में तो ओकर पैसा मिली शादी कर ले बा कोई भी है रेजिम मैट्रिमोनियल जैसे उन्हें बस कोई भी है तो कौन कोई भी है कि सिनेमा ओके तो कुछ नहीं मिला था यहाँ हई पतिया के ये तो जोली हो गल एक बहन आदमी मोरिशियन लोग काम करेला आप भी के लिए तो बोले जाने ली हम ही के एगो चीज कर बोले हम के मन पे एगो लाइसेंस लेके आई सेंस दे वी सिपाही गो कुमा जे हई लेके ओके एगो लाइसेंस ले वता कर काम में या कुछ में बस कब कमुआ में कब काम करे तो ऊ तो कोठरी भी कर ले बाला सिरंस हुआ के फिर मुआ से ना जब ऊ ला सिरंस हुआ मैच्योर हो गल से बोझन ले ले रहा ले गो 20 बरिस के बाद बेचारा रिटायर हो गल काम में से तो कर ला सिरंस हुआ तो मैच्योर हो गल ना तो चाहे लो के ला पर सी कोठरी भी कर ले गल बा तो ऊ ला सिरंस हुआ जो उनके कोठरी भी कर ले बा एगो पैसा है ला सिरंस के पैसा ऊ पे कर ले बा देख बहिया लाइसेंस कब दे तो जो नस में आसीरे रखल ओकरे तो पैसा दे तब ओकरे दे तो वही पोबी तेरा हई मिशेवा मेम की शादी कर ले बा कोई भी कुछ होके नहीं मिली
1: ये बात अलग बाकी पैसा लेके पत्नी वा पैसा दे दे लगता सके
0: ओके नहीं ओके दे ये हमने के नहीं देखी रहा
1: हक नहीं बा
0: ओकर में हक नहीं बा तो ये देखला एगो एगो एगो कैसे होएला अब एगो जोली चीज है अब सकेला ओकर एगो घर हुई एगो जमीन हुई शादी करे के अगाड़ी जैसे बोली माँ बपुआ ओके दे दे रहा एगो डोनेशन माँ बपुआ के बाद तो ओके तो एगो सक्सेशन मिलल घर भर मिलल या जमीन मिलल या कुछ मिलल तो ऊ ओके दे सीधे करलक बोले अब जाने ल बूढ़ा हो गल बूढ़ा में कहाँ जा मरे वो घर का हो इतना बड़ा महल नियर हम बेचब तो वो जमीन वहाँ बेचलक घरवा बेचलक ओकरे नहल ना पसी उजीबियावा ओकर रखल पेसोनेल रखल तो हिया देखब उजीबियावा कब बेचेला उ पैसवा ओकर मिशेवा के नहीं सके अब ओके मन हुई ओकर बेटी या बेटा के उठा के दे दे के मिशेवा कुछ नहीं सके बोले हाँ सकेला कुमा जा तनिया मेरदे होई बोले देखा का करता उतना दिन जीले है अब ओके सोचा था एक बार तो नहीं बाबू
1: ऐसे हुएला ना कि आगे जब सब कोई शादी करा था तो बोला था छोकरा चाहना देखिए कि घर बना देला हाँ तो बोले घर बना देला तो ऊ जन घर वा ऊ बने ले बा बोले से पहला काम करते हो पहला घर बना लो तो किन ले तब बेटी दो अब सब तो वो बेचारा जाके पर घर बना देलक लो तो किन लेलक सब कुछ कर लेलक तब गल शादी करे अब शादी कर लक अब बेटी नहीं सकता रहे जीवोस बा तो घर वा ना ओकर होई ना लो तो वा ओकर होई
0: हां लो तो वा तो होई और घर वा जो नदमिया किन ले रहा
1: ओकरे
0: ओकरे रही
1: काहे कि वो शादी के पहले किनने बा यानी शादी के पहले के जितना भी तोहर चीज किन ले हवा चाहे वो घर रही चाहे वो जमीन रही चाहे कुछ हो रही वो तोहरे
0: हा
1: मैम अपन बिजनेस शुरू कर ले हुआ
0: मैम की बिजनेस वो तोहरे रही
1: हाँ वो सब तोहरे रही
0: लो तो किन ले देखते हैं वो मर्सिडीज तो शादी के कुमार गाड़ी जो किन ले बा तो मर्सिडीज हुआ तोहरा हाँ प्रति ने से जो कि बोली बाप 2 million 3 million की किनता है तो ये वो चीज है ना ये वो सैप देखते हैं लुतु के तो देख वो तुहर वो नहीं सकी बोले हाँ सकी कौन जीरे करे तुहर परमिशन से मिसिल मन लुतुआ तो तुहर नाम में लुतुआ तो तुहर रजिस्ट्रे भी कर ले हो एंतिया में तुहर नाम में तो वो लुतु तुहरे रही वो काल तुहरा मन हुई बेच दे के हमर से बेच दिया है पस की हमरो लुतु इतना जोली नहीं बा तो देख वो एगो चीज है वो लुतुआ के पैसवा तुहर रही एगो चीज इम्पोर्टेंट है कभी वो आदमी शादी करेला तो कौन काली थे कि सोचेला आयो हम तो शादी कर रहे हैं पिता देखो सभी दे तू तो आई अभी नहीं आता नहीं सकब सो फिनी हुई जोली माँ बोले रही तेरे लुआ कि ये रेजिम सही कम्युनिटी दे बियाँ जिसे हमने सब कोई बियाँ ये दुख भाई केरल एगो हमने देख ले सा जी बियाँ प्रो देख ले रही सब अब बुत अबूत कैसे होल अब देख लिया से एगो जीबिया कुमें पति पत्नी के कोई से एगो जीबिया कुमें होला ये का है बियाँ कुमें जो हमें के पुस्तक मिल बा आले एगो रेजिम कम्युनिटी दे बियाँ में बा ओकर नाम ही है बियाँ कुमें ये दोनों के होला पति पत्नी के जब

0: पति पत्नी शादी में किनेला अभी तू शादी कर ले हो तो उपमा जैसे बुजुर्ग जमीन एगो घर जाके किनला तो ऊ जमीन हुआ एगो जमीन एगो बिया कोमे है मतलब ऊ घरुआ जमीन हुआ तुहर है और तुहर पत्नी के है बिया कोमे ई बिया प्रोप नहीं है बिया कोमे है तो साविज्य सब चीज जो किनले हुआ बिया कोमे जैसे हम बोलिए एगो घर किनले हुआ एगो जमीन भी बा दोनों किनले हुआ शादी में ई कुमा जे जी बिया हुआ ई आप अच्छे है जैसे हमने बोले सन एजिविजियो में मतलब तुहर और तुहर पति के भाग बा हक बा उ घरवा में यहाँ पता नहीं बा बस कि दोनों तो संगे किनले वंशन कब दोनों संगे किनले वंशन तो उ जमीन हुआ देख बा दोनों के भाग बा हाँ पता नहीं बा एक नाम एजिविज में हमने देख ले रही सर एजिविज में कैसे हुआ काम करे लंसन आलू तो हमने के देखे कि हर चीज जो किनले बा पति पत्नी संगे शादी में तो उ लोग दोनों के हक बा उ जमीनवा में आली तो हियाँ देख बा एगो कब मेम की एगो पति एगो जमीन किनले बा शादी के हई में पौधम हो याद जैसे हमने बोला सर शादी में वो अपन पैसा से किनले बा कोतवा में नहीं मासियों ने होल बा ओकर नाम पत्निया के एक बार जाला बोले जाए हम तो किन ले हम अपन नाम में डाल ले लें यहाँ शादी कर ले बा कोई भी है मेम के एगो पति या एगो पत्नी कब शादी कर ले बा कोई भी है में माफ करो बस वो जमीन हुआ मेम की वो अपन पैसा से किन ले हुई श्री भूषण जी से बोली ना पतिया अपन पैसा से किन ले बा ओकर नाम में नहीं दे ले बा वो पत्निया उत्तुमाचिक ओकर जमीनवा में ओकर भाग बा ओकर धोआ बा एगो प बा हुआ देख ला हिया मेम की पतिया हिया रोज बड़ बोली हम अपन लिस्टुमा में टापे करके छाती में जैसे हमने बोलिया सर तो बताइए का थोर जमीन है ये तो हमर हम किन ले हई मे भैया
1: कोई भी शादी कर ले हवा
0: शादी में किन ले हवा
1: तो कुछो करबा वो पति पत्नी दोनों के हो भले एगो लुत्तो किन ले हवा वो भी पति पत्नी दोनों के होवेला यानी शादी के बाद कुछो किन बा जब कोई भी शादी कर ले हवा तो पति और पत्नी दोनों के होवेला अब एगो जैसे अब बोल देला अभी फिर कोई कैसे करेला एगो शादी जब टूट जला दूसर शादी करे लंचा तो जब दूसर शादी करता तो पतिवा जोन बा ओकर घर पहले से बा ओकर सकेला लड़का भी होई अब जब एगो दूसर एगो दूसर जना शादी करके वो घरवा में जाता तब उ घरवा में पत्नीवा की ओकर जैसे अभी समझावत हुआ तब जो पत्नीवा शादी करके गल बा ओकर शादी ले आगे माना शादी ले आगे दीपांस कर ले बा सिपा मेप किन ले बा या घरवा में एगो और एगो लिताज दल ले बा यानी कि उ पत्नीवा जोन बा ओकर हक नहीं बा शादी ले आगे
0: शादी के आगे नहीं बा कुछ बस कि वो पतिया के हुई बस कि पतिया ना घर किन ले बा आजूते कर ले बा लिताज दे ले बा है उमे बस उ जमीन हुआ ओकर है ओकरे रही मैं सिलमा सदिया अब अगर
1: लड़का रही तक
0: हाँ तो ओकर लड़का उपमा पहला आवेला है माँ बाप में ना तब ना ट्रांसफेयर करे लंसन जो जी बी एम बा ओकर लड़का के है ओकर लड़का ओकर जिगीचे है तस्वीर तब लेक माँ बाप जीते बा वो कुछ करे उस जमीनवा से लड़का कुछ नहीं सके के बोले हाँ कब गुजर जाला माँ बाप तब लड़का लोग के तब
1: नहीं मान ले लड़का लोग अभी तनी छोटा बा पति दूसर शादी कर ले बा तो अभी जो जमीनवा बा जो घरवा बा ओकर में किकर धुआ आवेला लड़कवन लोग के पहला धुआ आवेला कि जो बाद में शादी कर ले बा बस की शादी जब जैसे बोलला कि एगो शादी जब करबा कोई ब्याह करत हुआ तो कोई ब्याह में जब ओकर शादी के बाद कुछ किनबा तब तो हर आवेला
0: अली लड़कवा जो दोनों बा अभी सदिया में पहला होला से तसी बुझो हुआ जीवो जीवो से कर दिल है के हो पत्निया के तो हियाँ उ लड़कवा लोग के हक बा कब जब बपुआ मर जाए तब
1: अच्छा
0: बपुआ तो ही है बा जीबियावा तो ओकर नाम में बा तो वो के मन हुई काल बेचे के तो लड़कवा के परमिशन तो नहीं खोजी ना
1: अच्छा
0: समझ ला ना
1: पसी पत्नीवा के कुछ मिले ला
0: नहीं हो जो पत्निया के है मैं हाँ जे शादी कर ले होई कुमा जे आर है पौधा सदिया में उकिनले बा
1: नहीं पौधा नहीं शादी करके वो सब हो गल बा अब हाँ।

0: पत्नी जब आल बा तब घर पहले से घर बा।
1: हाँ तकमा जे एक पत्नियाँ के कुछ नहीं बा, कुछ नहीं मिली वो एक तकमा से जीबिया जब बोली से ना जीबिया फोप उकर रखल मिशेवा के तहिया तकमा जैसे बुझो शादी करके आल तब तो नहीं बा बस जीबिया फोप किन ले बा या उकर जीबिया आगे कर किन ले हो या सदिया में कब किन ले हो तब के मध्यम मुआ की मिली मैं तहिया तो शादी में नहीं है कर ले बा जीवोश कर दे ला
0: तकाल परसों जब पतिवा के देहांत हुआ था।
1: हाँ तो दूगो लईकुआ आई उमे ओके कुमार
0: पतिवा नहीं आवेला
1: नहीं पत्निया के नहीं मिली ना बस वो तो कुमा जे उकर हई में नहीं बा उकमा जे हई मिले के पर उकर जब एगो माँ बाप मर जाला तो चाहेला लेकुआ के मिले के उकर जिगिछे है तो उकर जिगिछे वा कब मिलेला तो उ लोग कुमा जे हई एंटाइटल होवेला कुमा जे उकर
0: पत्नीवा के उकर कोनो हक नहीं है अभी घर में
1: कुछ नहीं है बस वो तो उकर नहीं रहल ना जमीनवा रहल आ शादी के गाड़ी कुमा जे हई हई मिशेवा किन ले लेलक जीबिया पोप अब ओ में का करे अपन पैसा से सिबुजों हई कुंसुए कर ले एगो घर उ लाहो दल्ले बा तो ओकरे मज ओकरे रही मैडम वहाँ की तो कुछ भी नहीं मिली
0: मैम पैसा दल्ले बा बाद में
1: नहीं जी पैसा दल्ले हो तब ई कंट्रीब्यूशन फिनेंशियर जिसे हमने बोली ला सर जे ओ कर ले हो शादी के बाद ओ घरवा जो मिशेवा के रगल ओ कर में आजूते कर ले बा ई भी देखब सब कथाज हुए ला तो जीवोश के बाद हैं तहिया देख ला का हुए ला तब तब मदम मुकमा जे हाँ ऑंतरी हुई तो अभी यहाँ तो नहीं बस वो तक मजा बे उपमा जे एक बगल बाब फिनी मेरे को लड़का हाँ वो तो माचिक मिल
0: दे कोई कुछ करेला शादी करे आगे पैसा निकाल के दे दे वेलन सा और फिर घर बना वेलन सा तब बाद में वाया सिविल करे लन सा तब वो तब शादी नहीं आगे पैसा दे दे लो तब बन गल अब तो रिजो ने नहीं दिया बा पैसा दे गल दे निकल ला दे ला किन ला अब तो सब कुछ तो हो गल बा अब जब शादी के बाद अला जब जिवोस हुआ था तो पत्नीवा की कुछ नहीं मिली काहे वो शादी के पहले तो कर दे दे दे रहा
1: अरे तो एक आदमी के सैंप है कब उसन कौवा में हुई तो हमेशा बोल ले आल नहीं सर कि एगो पापिए करिए कि कब कुमा जब कब पबेवा कर ली उ मैडम
0: ये तो समस्या बा जब एगो एगो छोकरा एगो छोकरी के खुशी रहला तो शादी जब करे लन सर तब कैसे बोल जाला प्यार में अंधा हो जालन सर तब लोग के बुझाला कि एगो है एगो एगो कैसे बोल एगो इंसल्ट हो जाला कि
1: वो बखतवा
0: नहीं देखे लन सर तब पैसा दे के रहल दे देला लमवार किन लेला लिली किन लेला सब कुछ कर देला होम सिनेमा डाल देला घर में झूला डाल देला सब कुछ हो गल आप शादी करके जेब हुआ तब बाद में जब समस्या हो गल जीवोस हो गल तब तोहर लागे तो कुछ नहीं बा एको फैव नहीं बा पैसा ओके देला वो अपन नाम से सब कुछ किन ले गल घरवा में दल ले गल
1: तो ठीक यही बोले लन सन औसन औसन का मैम कितना खुशी हो या कुछ करब चाहेला कानून बोले ला मैडम तू धल ले वो घरवा में पैसा ना कोंट्रीबिए कर ले वो ना पेबुआ कहाँ बा कैसे हमनी के तो कानून है सर हमनी के पुस्तक में लिखल ला ऐसा का में चला पेब तो पेब बताई कि चाहेला कुछ ना कुछ लिखल में या कैसे नहीं लिखल
0: तो के दिमाग में ई है ना कि खुशियों के शादी करत हुआ सब परिवार खुश बा तू खुश हवा सब कुछ लाइक ढेर कोई लड़ झगड़ के शादी करेला तो ऐसा में थोड़ी ना बोलियन सके चाहना फेव रखे के जीवोस हो जाए तो बोले अब तो अब शादी ले आगे मुफिन दालत हुए
1: अभी के बोला तो राय को काट के बहुत सा जो बा जैन पहले के हमने की माँ बाप नहीं वो सकेला को मजा नहीं सोचा था ऐसे अभी के जैन लोग पहला बोली जाने में तो पैसा दे हाँ खुशी ऐसा वो बोले इंसान आजकल के
0: पापियेगर
1: हाँ पापियेगर ही में बोले और दूसरा है बोले पापिये नहीं कर लकू वो मिशेवा सोचा था माले बा कभी ही यहाँ कुमा जाए ओके पापिये बा कानून तो पूरे मांगे ला ना पापिये यहाँ कौन पापिये बोले हम तो के नहीं दे रहे दे मिलियो वो घरवा में बनाई के बोले ना कौन पूरे बातुर बोले हम तो के बताई ला हमारे पूरे बोले लाभांक में हमारे यहाँ में कौन आदमी के पुष्प में बात दू मिलियो हम तो लाभांक से एगो लोन ले ले रही उ लोनवा ले रही तो जाके काले गो पापिये लाभांक से मांगी कि एगो ले आ लाभांक का पैसा देवे ला रीजन ऑफ मजे काहे मांगले
0: हुआ
1: लिखले बा लोन ले
0: देख
1: लोस लोनवा लिख देवे सब तब काल उठा के पपिये वाला कुरुआ में फेंक दे बोले हिका हिका हम दले रही एगो लोन ले रही लाभांक आर लाभांक बोले लोन कब मंगले रही हमके पूछ ले रही एगो घर में आर पूछल सन कहाँ कौन घर कैसे कहाँ जे तो हिया का मर पेबुआ बा तो देख लो पपियुआ में नहीं बा
0: मेला दे पापिए
1: तो हाँ हिया के मिल
0: पैसा परी दे के और हमियों के अब अपन के जो श्रोता बा और के बुलब जा तनिक उन समय हमने के दे के काहे के हमके पास समय नहीं बा आज के हमने कार्यक्रम जुन बा हमने बहुत अच्छा से समझाई ली जा कारण बताई दी जा

0: हमने बतेली जा कोई भी है सिपाहाशों जो भी है जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो शादी है कोठा में कुंज वाला ई अगले हफ्ते बतियाब जा
1: हाँ एगो दैनी है इस
0: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: हमने देखी ला सर जब एगो जी बिया कुमें कब कुमा जे है एगो है पति पत्नी बात दोनों के है उजी बिया हुआ चाहे ला कंसेंटमेंट दोनों के
0: हाँ।
1: कब बेचे के था एगो मिशवा शादी कर लेबा कोई बिया वो एगो जी बिया हुआ रगल बा वो शादी कर ले कब एगो है जी बिया कुमें है तो चाहेला पत्निया के भी परमिशन ओकरो कुमा जे है चाहेला कंसेंटमेंट
0: किनबो करब तो चाहे पति पत्नी दोनों के नाम पर आवेला ना
1: हाँ तो वो कब किन्ना तो हाँ इतना ऑटोमेटिक मैं सिपोज देख ले सब पहला चीज ना एरिते होल कुमा पसी शादी में मिलल बा ओके कुमा ओकर मिलेला तो हिया चाहे ला मिशेवा के कुमा जो कर कंसेंटमेंट मुझे जाने पत्नी हम के मन बा हो घरवा जोन बा हाँ। बेचे के तो बोले बेच बे हम नहीं देव कंसेंटमेंट फिर नहीं सकी बेचे
0: नहीं बेचाई फिर
1: हाँ आर सिलमा के मनो ही बेचे के अब दे के तो बोली हाँ आले चल नुते रही हम आप सीए कर अब
0: चल तो एक साथ हमने की आज के जोन कार्यक्रम बा आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुए था और हमने की जोन आज के विषय रहा डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर डिवोर्स यानी कि तलाक के बाद जोन प्रॉपर्टी रहला तो के कैसे हमने बांटी ला जा केकर हक कौन ची बर्बा एक बारे में हमने एक और कार्यक्रम में फिर बतियाब जा कपिल देव रघुनंदन जी हमने के वकील के बहुत बहुत धन्यवाद और हमने के इतना अच्छा से समझेला उम्मीद करती थी कि हमने के जो श्रोता लोग हम जा वो लोग हमने के दर्शक लोग हम जा वो लोग अच्छा से समझ ला जा अब थोड़ा उपशों बा जब शादी करत हुआ को ब्याह करबा सिपाहाशों जी ब्याह करबा या कौथा के करबा सोच समझ के लेकिन जो भी करबा कुछ भी किनबा याद रखिया तोहरा चाहे ना एगो फैव आगे चल के कुछ भी सकेला होई आजकल के ई शादी में नहीं सकबा बोले कि एगो शादी कितना साल से की चले वो तो सकेला एक महीना में भी टूट जाए छः महीना में भी टूट जाए या सकेला 18-20 साल के बाद भी टूट जाए था फिर क्वेश्चन लेवल अच्छा है जब भी कुछ किनबा अपन फेव रखिया एक साथ आगे चाहता है बहुत बहुत धन्यवाद शुभ दिन नमस्ते।

0: जी सुनते संक्षिप्त समाचार, आपसे आस्था नमस्कार।
1: नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। छात्रों की भूमिका में दुनिया भर में गिरावट, OECD के प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा में विज्ञान मैथमेटिक्स और पढ़ने के परिणाम कमजोर हुए हैं। परीक्षा में 91 देशों के 60,60,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। OECD जेनरेटिव AI के बढ़ते उपयोग से इससे संभावित संबंध को भी देख रहा है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के महानिदेशक दारेन टांग पहली सरकारी यात्रा पर मॉरिशस में, विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ उनकी मुलाकात में नई खोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बौद्धिक संपदा के जरिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। मॉरिशस में बिना बड़े ऑपरेशन के आधुनिक

आधुनिक इलाज को आगे बढ़ाने की पहल, जहां इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर और कैंसर विशेषज्ञ एडवर्ड लामशांगलिन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात की। वे बिना फीस लिए देश की मदद करना चाहते हैं। विशेष इलाज के लिए 12 रोगियों को चुना गया है। मालागासी कारोबारी मामी गावातुमांगा की जमानत की मांग पर

0: रूबेन मुरुंगा पिले का आरोप है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद और सांसद वेरोनिका गोविंद से वकील बदलने को कहा था। आज सुनिए सांसद को शिकायत दर्ज कराने को कहा है, लेकिन वकील के अनुसार गुलशन गोविंद को उसकी इसकी अनुमति नहीं मिली। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों में 2,977 लोगों की जाने गई थी। CIA और FBI के पास अलकायदा से जुड़ी जानकारियां थीं, लेकिन इन्हें समय रहते आपस में नहीं जोड़ा गया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के बीच जानकारी बांटने की व्यवस्था मजबूत की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय ब्रिक्स समिट के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक में यूक्रेन, मध्य पूर्व के युद्ध और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा होगी। पुतिन ईरान के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 2019 के बाद ये शी जिनपिंग की पहली भारत यात्रा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। ट्वेंटी नाइन अरिगी स्ट्रीट बोबासेमी 77 साल की 77 years old की हलीमा करीमन इंतकाल कर गई है। उनका जनाजा आज दिन के 10:30 बजे आज सुबह के 10:30 बजे उन्हीं के मकान बोबासे से निकाल कर दफनाने के लिए सैमोते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM टागोर रोड रिश्मो फ्लाक में 81 years old के श्री मोहनलाल जगर की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मोहन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज शाम के 4:30 बजे उन्हीं के मकान रिश्मो फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। Today at 4:30 PM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

10:04 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। भक्ति धारा कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं श्रोताओं। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं और भक्ति धारा कार्यक्रम के अंतर्गत आज चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में, और शुक्रवार का दिन है आपके शास्त्र नवनीतम, ये कार्यक्रम जो है आप सुन पाएंगे डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में। और आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम गणेश चतुर्थी के संदर्भ को लेकर आप ये विशेष कार्यक्रम हिंदू महासभा की तरफ से आप ये कार्यक्रम जो है आचार्य गिरीश शर्मा जी से सुन पाएंगे। तो चलिए श्रोताओं, ज़्यादा देर ना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और शुरुआती दौर में हम भगवान गणेश जी का नाम जो है लेते हैं। श्रोताओं, भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं होता, भक्ति तो हम विश्वास के साथ करते हैं और जहाँ हमारा जो मन है कहता है प्रभु जो होगा अच्छा ही होगा, और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान समस्त श्रोताओं के लिए।

0: 11 मिनट हुए हैं इस स्टूडियो की घड़ी में और समय हुआ है शास्त्र नवनीतम का। ये कार्यक्रम आप डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगी।
1: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।
2: ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है विद्या की गरिमा और विद्या की रक्षा। ऋग्वेद के गो सूक्त में यह मंत्र आया है, न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासाम अमित्रो व्यथिथरा दधर्षति देवांशयाभिर्यजते ददाति च ज्योगताभि सचते गोपति सह। कथित मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, ता न नशन्ति। ता न नशन्ति का अर्थ है विद्या नष्ट नहीं होती, क्योंकि विद्या अमृत स्वरूप है। तस्करः न दभाति, तस्कर अर्थात चोर विद्या को चुरा नहीं सकता। व्यथिरा अमित्रः, व्यथिरा अमित्रः का अर्थ है दुख देने वाला एवं आक्रमण करने वाला शत्रु भी विद्या को नष्ट नहीं कर सकता। आसाम न दधर्षति, विद्या का तिरस्कार या अपमान नहीं हो सकता। या भी देवान यजते, जिन देवतुल्य महापुरुषों के द्वारा देव यज्ञ परोपकार आदि कर्म किए जाते हैं वे विद्या से ही संभव हैं। च ददाति गोपति, और जो विद्या पाकर विद्या का दान करता है वह विद्या का स्वामी कहलाता है, विद्या का रक्षक कहलाता है। ज्योक्ता भी सचते, ज्योक्ता भी सह सचते, विद्या उसी के साथ चलती है जो विद्या को अपनाती है। विद्या पवित्र मन, निर्बल बुद्धि और शुद्ध आत्मा में निवास करती है। मनुष्य जो कुछ देखता, सुनता व अनुभव करता है उन सब का प्रबल संस्कार अथवा प्रभाव अंतःकरण और आत्मा में अवश्य पड़ता है। कथित वेद मंत्र के आधार पर ही किसी एक कवि ने एक सुंदर संस्कृत श्लोक की रचना करके यही विचार इस प्रकार प्रस्तुत किया है। हर्तुर न गोचरम याति दत्ता भवति विस्तृता, कल्पान्तेपि नया नश्येत किम अन्य विद्या समम। हर्तुर न गोचरम याति, विद्या चोर की दृष्टि में नहीं आती, विद्या चुराई नहीं जा सकती। दत्ता भवति विस्तृता, विद्या देने से विद्या बढ़ती है, विद्या बांटने से ही विद्या का विस्तार होता है, विद्या के दान से विद्या की अच्छी गति होती है। कल्पान्ते अपि या नश्येत, प्रलय व कल्प के अंत तक भी विद्या नष्ट नहीं होती, क्योंकि विद्या अमृत है, वह कभी नहीं मरती। फिर आगे कवि कहता है, किम अन्य विद्या समम, विद्या जैसी अन्य दूसरी वस्तु क्या हो सकती है। कहने का अभिप्राय है कि विद्या की तुलना किसी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती। पुस्तक पुरानी हो जाती है परंतु ज्ञान हमेशा नया रहता है। पुस्तक भले ही जल जाए परंतु विद्या को जलाई नहीं जा सकती। इतिहास साक्षी है कि सन 1193 में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने भारत के नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया था। उसके मन में यह दुष्ट विचार पलती रही कि किसी के धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता को समाप्त करना है तो उसके सभी साहित्य को जला देना चाहिए और विद्वानों को या तो मार देना चाहिए या धर्म परिवर्तन करा देना चाहिए। इस प्रकार अगली पीढ़ी को पता नहीं चल पाएगा कि उसके पूर्वज कौन थे, क्या सोचते थे और क्या जानते थे

या क्या करते थे। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और पुस्तकालयों में आग लगा दी। कहते हैं कि जब उससे पूछा गया विद्या की ताकत क्या है, तो उसने तर्क नहीं किया बल्कि तलवार उठा ली। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के 3 विशाल पुस्तकालयों को आग के हवाले कर दिया। 900,000 से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ भस्म कर दिए गए। धुआं इतना फैल गया कि पास के गांव तक राख उड़कर जाती थी। फिर भी मूर्ख खिलजी विद्या की अमरता को नहीं समझ पाया। यहां 2 विशेष बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। पहली बात, पुस्तकें जला दी गई, कागज, स्याही, इमारत सब राख हो गए। दूसरी बात, विद्या नहीं जली, क्योंकि उस समय सतत अभ्यास के द्वारा विद्या को कंठस्थ करने की परंपरा थी। विद्वानों ने सतत अभ्यास द्वारा विद्या को कंठस्थ कर अपनी बुद्धि में सुरक्षित रख लिया था। भयानक आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो विद्वान, महात्मा एवं भिक्षु बच गए थे, वे पलायन कर सुरक्षित स्थान में जा बसे। वे अपनी बुद्धि में उन विद्याओं को सुरक्षित रखें और उन विद्याओं का प्रचार प्रसार जारी रखें जो विद्या मन, बुद्धि और आत्मा में समा जाती हैं, उसको कोई छीन नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। बख्तियार खिलजी जैसे आक्रांता पुस्तक जलाने में तो सफल हुआ, परंतु विद्या को जलाने में सफल नहीं हुआ। प्राचीन काल से ही श्रुति परंपरा के आधार पर वेदों को कंठस्थ करवाए जाते थे ताकि हर परिस्थिति में वेद सुरक्षित रहें। वेदों को सुरक्षित रखने के लिए 2 महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली थी, सिक्योरिटी सिस्टम। प्रथम है श्रुति परंपरा एवं अभ्यास व कंठस्थ करने की परंपरा। दूसरी प्रणाली थी वेद, उपांग और विकृति पाठ का निरंतर अभ्यास। श्रुति परंपरा का अभिप्राय है सुनकर वेद विद्या को मन, बुद्धि और आत्मा में धारण कर लेना। प्राचीन काल से ही श्रुति परंपरा में गुरु और शिष्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्राचीन काल में गुरु वेद मंत्रों को मुख से उच्चारण कर अपने शिष्यों को प्रदान करते थे। सभी शिष्य सुनकर वेद को कंठस्थ करने का श्रम करते थे। गुरु द्वारा स्थापित अनुशासन शिष्यों का मार्ग प्रशस्त करते थे। वेद को स्थायी रखने के लिए दूसरी सुरक्षा प्रणाली थी अष्ट विकृति पाठ का सतत अभ्यास, 8 मेथड्स ऑफ रिसाइटिंग वेदिक हिम्स। वेद मंत्रों को कई तरीके से पढ़ने और अभ्यास करने की पद्धति बनाई गई, जैसे जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ, घन पाठ। वेदों के मूल स्वरूप में कोई बदलाव या मिलावट न हुआ। इसके लिए 8 विशेष प्रकार के पाठ, रेसिटेशन पैटर्न्स विकसित किए गए थे और इस प्रकार वेदों को सुरक्षित रखा गया। 1 अक्षर भी कम हुआ या जोड़ा गया या आगे पीछे हुआ तो तुरंत पकड़ा जाता था। वेद मंत्र जो पहले थे आज भी वही हैं। मंत्रों में प्रक्षिप्त भाग जोड़ा नहीं गया। यूं कहा जा सकता है कि ये प्राचीन काल के त्रुटि सुधार संहिता थे, जिसे अंग्रेजी में एरर करेक्शन कोड कहा गया है। शुद्ध संहिता पाठ और विकृति पाठ के जरिए वेदों को सुरक्षित रखा गया था। और इस प्रकार जब हम देखते हैं जटा पाठ, इसमें शब्दों को आपस में जोड़कर आगे पीछे दोहराया जाता है। माला पाठ, शब्दों को माला की तरह आपस में गूंथ कर पढ़ा जाता है। शिखा पाठ, यह जटा पाठ की तरह होता है परंतु इसमें अंत में

0: तीन शब्दों एक चोटी की तरह जोड़ा जाता है। रेखा पाठ शब्दों को एक क्रमबद्ध या रैखिक लीनियर तरीके से विशेष क्रम से पढ़ा जाता है। और ध्वज पाठ इसमें शब्दों को एक के बाद एक क्रम से ध्वज के आकार के पैटर्न में व्यवस्थित करके पढ़ा जाता है। कहा जाता है कि विकृति पाठ के जरिए ही वेदों को सुरक्षित रखा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकें जली तब भी महत्वपूर्ण ज्ञान और वेद बचे रहे, क्योंकि वेद पुस्तकालय में नहीं अपितु ऋषियों सन्यासियों एवं वेदज्ञों के कंठ हृदय और बुद्धि में विद्यमान थे। आज जिन चारों वेदों को पवित्र ग्रंथ के रूप में सुरक्षित रखे देखते हैं आज जिन चारों वेदों को पवित्र ग्रंथ के रूप में सुरक्षित देखते हैं तो वे श्रुति परंपरा की देन है। अतएव हर संभव उपाय से विद्या की रक्षा करनी है और जो विद्या प्राप्त कर लेते हैं उसे बांटना हर एक मनुष्य का धर्म है। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। अब हमें अनुमति दीजिए। ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।
2: चलिए श्रोताओं, अभी आप शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम सुन रहे थे डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में। आइए इस हिंदुस्तानी सभा को आगे बढ़ाएंगे। गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर आइए ये विशेष कार्यक्रम हिंदू महासभा की तरफ से आचार्य गिरीश शर्मा जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।

काय कोटि सूर्य समः प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः ओम श्री राम दूताय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर चल रहे इस विशेष कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सबों का स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, साधारण्यता अनुसार भगवान गणेश की पूजा हल्दी की मूर्ति पर की जाती है, कारण कि हरिद्र में मंगल आकर्षण की शक्ति है तथा वह लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। नारद पुराण में तो श्री गणेश जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाने का आदेश देकर उसके अभाव में हल्दी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति के ऊपर पूजा करने का विधान दिया गया है। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी घर में हम एक ही देवता के अनेक मूर्तियां संग्रह करते हैं, परंतु हमें इनकी संख्या इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कहा गया है कि घर में दो शिवलिंगों, दो शंखों, दो सूर्य भगवान की मूर्तियां एवं चित्र, दो शालिग्राम तथा तीन गणपति की मूर्ति एवं तीन देवियों की मूर्ति स्थापना नहीं करनी चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान गणेश की पूजा में दुर्वा बहुत आवश्यक माने जाते हैं।

गणपति की पूजा में लाल वर्ण के फूल एवं दुर्वा विशेष रूप से अर्पण किया जाता है। और स्मरण रहे कि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, एक मान्यता अनुसार श्री गणेश जी का सर्वप्रथम आविर्भाव माता पार्वती के यहाँ माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ। गणेश जी अपने भक्तों के समस्त संकटों को, कष्टों को नष्ट कर देता है, अतः उनके प्रादुर्भाव की तिथि संकष्ट हरण चतुर्थी कहलाते हैं। चतुर्थी तिथि को गणेश जी के प्रकट होने के कारण उनके भक्ति प्रतिमास की इसी तिथि के आने पर विशेष आराधना की जाती है और प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी और शुक्ल चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी के नाम से पूजन व्रत किया जाता है। स्कंद पुराण में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की विशेष महिमा है। इसी कारण से इस दिन भगवान गणेश जी के जयंती के रूप में मनाए जाते हैं और माना जाता है कि भगवान गणपति अपने भक्तों के समस्त कार्यकलापों में सिद्धि प्रदान करते हैं, अतः उनका नाम सिद्धि विनायक पर जाते हैं। जो गणेश चतुर्थी का हम लोग व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो विशेष रूप से माना गया है कि गणेश जी की विशेष पूजा गणेश चतुर्थी के मध्यान काल में करनी चाहिए, कारण कि भगवान गणेश मध्यान में प्रकट हुए। विशेष पूजाओं में से एक विशेष पूजा यह बताते हैं कि भगवान गणेश के 21 नामों का उच्चारण करते हुए अलग अलग प्रकार के पत्ते आदि अर्पण किया जाता है। जैसे सुमुखाय नाम उच्चारण करते हुए शमी पत्र चढ़ाते हैं, गणाधीशाय नाम कह करके हम लोग भंगैर्य का पत्ता चढ़ाते हैं, उमा पुत्राय ऐसा बोल करके बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, गजमुखाय नाम से दुर्वा चढ़ाते हैं, लंबोधर नाम से हम लोग पूजन करते हैं और बेल के पत्र चढ़ाते हैं, हर सुनमे नमः ऐसा बोल करके धतुरा अर्पण किया जाता है, फिर उसके बाद शूर्पकारण्य कह करके तुलसी मंजरी अर्पण किया जाता है, वक्रतुंडाय ऐसा बोल करके सेम का पत्ता चराया जाता है, गृह ग्रजाय ऐसा बोल करके अपमार्ग का पत्ता चराया जाता है, एक दंताय ऐसा बोल करके वन भटका एक पत्ता आते हैं उसको अर्पण किया जाता है, हेरम्ब नाम से सिंदूर चराया जाता है, फिर उसके बाद गजानन से तेज पत्ता अर्पण किया जाता है, सर्व विघ्न विहर्ताय नाम से हम लोग अगस्त्य का पत्ता चढ़ाते हैं, विकटाय कह करके कनेर का पत्ता अर्पण किया जाता है, हेमटुंडाय इस नाम से उच्चारण करते हुए कदली पत्र हम लोग चढ़ाते हैं, विनायक के नाम से आँख का पत्ता चढ़ाया जाता है, कपिलाय ऐसा बोल करके अर्जुन पत्ता अर्पण किया जाता है, फिर वटवे नमः ऐसा कह करके देवदारुग का पत्ता अर्पण किया जाता है, सुराग्रज्याय ऐसा बोल करके गंधादि पत्र अर्पण किया जाता है, और अंत में सिद्धि विनायक कह करके केतकी पत्र जो है भगवान गणेश को अर्पण किया जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा सभी करते हैं, यद्यपि एक परंपरा सी होती है कि हम ऐसा माने कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं यानी जो विद्यार्थी है वह विशेष रूप से गणेश की पूजा करे, वह भी अपनी जगह सही है, परंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान गणेश की पूजा सभी को करना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो वानप्रस्थी आदि जो भी आश्रम का है। और आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजनीय माने जाते हैं, इनकी पूजा हर कार्य के प्रारंभ में किया जाता है, और कभी कभी अपनी बोलचाल में भी हम लोग कोई भी कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि चलिए इस कार्य का श्री गणेश।

करें, कारण कि भगवान गणेश का नाम उच्चारण करने से हमारे कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं और वह कार्य निर्विघ्नतापूर्वक संपन्न होते हैं। वैसे तो एक उल्लेख यह भी आता है कि भगवान गणेश की हर एक विशेष रूप जो है अलग अलग महीनों में किया जाता है। जैसे चैत्र मास में गणेश जी की उपासना जो है वासुदेव के रूप में किया जाता है, फिर उसके बाद वैशाख मास में संकर्षण के रूप में गणेश जी की पूजा किया जाता है, और ऐसे ही हर एक महीने में गणेश जी की अलग रूपों से इनकी पूजा की जाती है। और जो भाद्रपद मास में आते हैं तब हम लोग गणेश जी की सिद्धि विनायक रूप में इनकी पूजा करते हैं, कारण की मान्यता है कि भाद्रपद मास की इस चतुर्थी में जो भी भगवान गणेश की पूजा पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं तो इनके सभी कार्य पूर्ण हो और भगवान गणेश की कृपा से सिद्धि आदि की प्राप्ति होते हैं। सो चलिए हम सब मिलकर के जो गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहे हैं सोमवार 14 सितंबर को, उसमें हम भगवान गणेश से यही प्रार्थना करें कि वह सबके जीवन में विघ्न को दूर करें, हम सबका कल्याण करें, बुद्धि प्रदान करें, और विशेष रूप से जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गणेश जी जो है वह विवेक का प्रतीक है। यद्यपि बुद्धि की आवश्यकता तो है ही, लेकिन बुद्धि से भी अधिक विवेक की आवश्यकता होती है, जहाँ पर हम न केवल अपने सामर्थ्य अनुसार कर्म करें बल्कि अपने जितने भी हमारी उपलब्धियाँ हैं उनका हम सही उपयोग करें। अपनी उपलब्धियों को सही उपयोग में लाना, समय का सही उपयोग करना, यह सब विवेक का प्रतीक माना जाता है। हिंदू महासभा की ओर से एवं अपनी ओर से आप सबों को श्री गणेश जयंती के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।

चलिए श्रोताओ, 10:35 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। शुक्रवार का दिन है आज, और आज का दिन हम समर्पित करते हैं माँ दुर्गा को। तो चलिए ये प्यारा सा भक्ति गान जो है हम माँ दुर्गा पर आधारित कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं श्रोताओ, और ये कार्यक्रम जो है दिन के 11 बजे तक हम चलाने वाले हैं। शक्ति का प्रतीक माँ दुर्गा की महिमा जो है अपरंपार है, और ऊर्जा और शक्ति पाने के लिए हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए ये प्यारा सा भक्ति गान सभी सुनने वालों के लिए।

चलिए श्रोताओं, माँ दुर्गा केवल शक्ति का स्वरूप नहीं बल्कि विश्वास का, साहस का और ममता की पहचान है। जब मन कमजोर पड़े, माँ का स्मरण भीतर नई शक्ति जगाता है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ माँ का आशीर्वाद हम अनुभव कर सकते हैं। सच्ची भक्ति मन को भय से निकालकर विश्वास की ओर ले जाती है।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: जय कला श्री रामारी.

तो चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और शुक्रवार का दिन जो है हम बहुत ही भक्ति भाव के साथ माँ को हम पूछते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को जारी रख रहे हैं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। वैसे श्रोताओं, माँ दुर्गा जो है उनकी आराधना केवल मंदिर तक सीमित नहीं, किसी की सेवा करना, प्रेम देना और सत्य के मार्ग पर चलना भी माँ की भक्ति है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए तो माँ को हमें ज़रूर याद करनी होती है, क्योंकि शक्ति बाहर से पहले हमारे भीतर जागती है।

चलिए श्रोताओं, जाने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। C'est W.A. Valentina, Val de Vie et Vente Garden, Marcellement Lenoir, Petit Camp, Résidence Triano, Marcellement River Edge, और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासों को, खास करके सोफिया ब्रांच रोड और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 11 सितंबर 2026 को दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है, कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के पर आप उर्दू कार्यक्रम साइदा की पेशकश में सुन पाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। आज शुक्रवार है, शुक्रवार का दिन, आज का दिन हम माँ संतोषी को भी पूजते हैं। तो ये आरती जो है माँ संतोषी पर आधारित सभी भक्तों के नाम। तो हम वापस मिल रहे हैं दोपहर के 2:30 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर। तब तक आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

नमस्कार, 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। छात्रों की भूमिका में दुनिया भर में गिरावट। OECD के प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा में विज्ञान, मैथमेटिक्स और पढ़ने के परिणाम कमजोर हुए हैं। परीक्षा में 91 देशों के 60,60,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। OECD जेनरेटिव AI के बढ़ते प्रयोग से इसके संभावित संबंध को भी देख रहा है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के महानिदेशक दारेंटांग पहली सरकारी यात्रा पर मॉरिशस में विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ उनकी मुलाकात में नई खोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बौद्धिक संपदा के जरिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। मॉरिशस में बिना बड़े ऑपरेशन के आधुनिक इलाज को आगे बढ़ाने की पहल, जहां इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर और कैंसर विशेषज्ञ एडवर्ड लामशांगलिन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। वे बिना फीस के देश की मदद करना चाहते हैं। विशेष इलाज के लिए 12 मरीजों को चुन लिया गया है। मालागासी कारोबारी ममी गावतो

मांग की, जमानत की मांग पर बहसें पूरी। बेल एंड रिमांड कोर्ट के मजिस्ट्रेट 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएंगी। रेनियन और मॉरिशस के बीच गांजे की कथित तस्करी के मामले में नया घटनाक्रम। वकील रूबेन मुगुंगा पिले का आरोप है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद और सांसद विगोनिकले गोविंद से वकील बदलने को कहा था। आज सुनी सांसद को शिकायत दर्ज कराने को कहा है, लेकिन

0: सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत पहुंचने वाले हैं। 2019 के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी संभावित मुलाकात का विशेष नजर रहने वाली है। हाल के समय दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवाएं फिर से शुरू हुई। सीमा व्यापार और लोगों के बीच संपर्क भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। हालांकि हिमालय सीमा से जुड़े विषय और व्यापार में असंतुलन अब भी बातचीत के प्रमुख मुद्दे हैं। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों में 2,977 लोगों की जानें गई थी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। कोंकावाल क्यूपिप में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के जनाब हसन भाई सालागन इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के सवा बारह बजे उन्हीं के मकान कोंकावाल क्यूपिप से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए दायर ए हबीब की मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए क्यूपिप का कब्रिस्तान फ्यूनरल टुडे एट क्वार्टर पास्ट नून। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: शम्मे फरोजा

आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मौज़े सामईन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर आफ़ियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फ़रोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ।

0: जी हाँ, जुम्मे का मुबारक दिन है, माहे नूर, माहे रबीउल अव्वल का आज आखिरी जुम्मा है। आप तमाम सुनने वालों को हमारी जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए, आमीन। मौज़े सामीन, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आज का प्रोग्राम कुछ अलग नौयत का है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इशरत तस्नीम साहिबा, जी हाँ, जो कि पाकिस्तान कराची से तशरीफ़ लाई हैं, और हमारे लिए बहुत बहुत सआदत की बात है कि आज हम उनसे इस हमारे इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। तो हम इशरत तस्नीम साहब को कहते हैं कि आपको खुश आमदीद हमारे इस प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा में।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, यहाँ के वाकई बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बिल्कुल, हमें भी ऐसे ही अच्छा लग रहा है, और यकीनन हमारे सुनने वालों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि आज हमारे साथ, हमें ये शर्फ हासिल हुआ है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपको कहेंगे खुश आमदीद। मौज़े सामईन, हमेशा की तरह हस्बे मामूल आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आज आप समात फरमाएंगे सूरह अर्रहमान की तिलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह।

0: अल्लाह।
1: माशाल्लाह। जी हाँ, अभी आप समात फरमा रहे थे इशरत तस्नीम साहिबा की खूबसूरत आवाज़ में हमदे अंबारी ताला। आज इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:24 होने को हैं। जुम्मे का मुबारक दिन है। जी हाँ, माहे नूर, माहे रबीउल अव्वल का आखिरी जुम्मा सितंबर की 11 तारीख है और माहे रबीउल अव्वल की आज 29 तारीख है। हम्द उस रब कायनात के नाम जिसने अंधेरों को रोशनी दी, फूलों को खुशबू, परिंदों को नगमे, ज़मीन को रौनक और इंसान को शऊर अता फरमाया। वही हमारा खालिक, वही हमारा मालिक और वही हर तारीफ़ के लायक है। मौज़े सामीन, अभी आपने इस खूबसूरत आवाज़ में हम सुनी और अब हम इशरत तस्नीम साहिबा से गुजारिश करेंगे कि हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं।
0: जी ज़रूर, आपने नात पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगी। आज जुमे का दिन है और इस दिन एक सात ऐसी होती है, एक घड़ी ऐसी होती है कि हमारी दुआएं कबूल होती हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो अच्छी अच्छी दुआएं करते रहना चाहिए वैसे तो, लेकिन ख़ास तौर से जुमे के दिन। और जुमा भी ऐसा कि जुमा है रबीउल अव्वल का है, तो फिर तो क्या कहने, जितने दुरूद पढ़ें उतने ही कम हैं कि जिसके सदक़े में दुआएं कबूल होती हैं, सारी मुश्किलात दूर होती हैं। और बेशक हम कुछ भी ना करें, फ़राइज़ के साथ साथ अगर हम दुरूद पाक पढ़ते रहें तो हमारी सारी मुश्किलात यकीनन दूर होंगी इंशाल्लाह।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक, आज जुम्मे का मुबारक दिन है, रबीउल अव्वल का आखिरी जुम्मा, तो हम दुआगो हैं कि आप हमेशा इसी तरह मॉरिशस आती रहें और हमारे आपके यहाँ के जो चाहने वाले हैं उनके लिए इसी तरह महफिलें सजाती रहें।
0: बहुत शुक्रिया। और हाज़िरी के हवाले से कलाम पेश कर रही हूँ।
1: बिल्कुल,
0: तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सबको बा अदब और मकबूल हाज़िरी बहुत जल्द नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।

0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इस वक्त जितने लोगों ने भी ये कलाम सुना, हम दुआगू हैं कि अल्लाह पाक सबकी हाज़िरी करवाए, आमीन। नसीब जाग उठे जिसदम हाज़िरी हो जाए, निगाहे शौक़ को तैबा की रोशनी मिल जाए, दिल में बस एक आरज़ू लब पर यही दुआ, सरकार के दर की हाज़िरी नसीब हो खुदा। मदीने की गली हो और झुकी हों मेरी आँखें, अदब से लब हों खामोश मगर दिल बात करता हो, बुला लीजिए आका, बड़ी आरजू है, मदीने की हाज़िरी की बड़ी जस्तजू है। ना दौलत की तमन्ना ना शोहरत की तलब है, मेरे दिल की तमन्ना बस मदीने का सफ़र है। कभी तो सब्ज़ गुंबद सामने हो या रसूल अल्लाह, कभी तो सब्ज़ गुंबद सामने हो या रसूल अल्लाह, कभी तो मेरी आंखों को ये मंजर भी नसीब आए, आमीन। मौज़ सामीन, हम आपको बताते चलें कि आज हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा इशरत तस्नीम साहिबा, और इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में दो और ख़वातीन भी मौजूद हैं जिनके तआवुन के बग़ैर ये होना नामुमकिन था। जी हाँ, मैं उनके नाम लेना चाहूँगी, मिसेस नरीमान कुओ और मिस रिहाना, मिस ज़ाइदा पीर मामूद। जी हाँ, इनके तआवुन के बग़ैर ही होना नामुमकिन था, हम इनके भी दिली शुक्र गुज़ार हैं। जी हाँ इशरत साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछले दौरे जो आपके मॉरिशस में आपका आना जाना रहा और आज के मॉरिशस में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है?
1: मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी 2005 में
0: जी,
1: तो इस हवाले से मैं बताना चाहूँगी कि उस वक्त काफ़ी नेचुरल था, नेचुरल अब भी है
0: बिल्कुल,
1: लेकिन मैं देख रही हूँ कि काफ़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं और प्रोग्रेस हुई है, अच्छी बात है, तरक्की तो होनी चाहिए माशाल्लाह। तो काफ़ी ब्रिज मैं देख रही हूँ, ब्रिजेस बन गए हैं, रोड ज़्यादा बन गए हैं और लोग भी अब नज़र आ रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई थी 21 साल पहले, तब लोग कम नज़र आते थे और हाँ महफिलों में हमारे तो बैक टू बैक बात है लोगों की, यहाँ पर अकीदत जो है ना वो पहले भी ऐसी ही थी और आज भी ऐसे ही है कि लोग जब हमारे साथ दुरूद में

0: शामिल होते हैं, सलाम में शामिल होते हैं, कलाम में शामिल होते हैं, तो फिर बात ही कुछ और होती है महफिल की।
1: हाँ, मैं भी ये बात आपसे पूछना चाहती थी, क्योंकि यहाँ के लोगों की मादरी ज़बान उर्दू नहीं है,
0: जी
1: लेकिन उनकी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ज़ाहिर है उनका जो इश्क है उसके लिए, तो उसको देखकर यकीनन आपको भी आप भी चौंकी होंगी पहली दफ़ा जब आपने ये सब।
0: जी बिल्कुल, ये बड़ा अमेजिंग है और बड़ा हैरत अंगेज़ है कि लैंग्वेज नहीं है। अभी कोई क्रियोल में मेरे साथ पढ़ेगा, मेरे सामने पढ़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसका साथ दे सकती हूँ। लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है और हैरतनाक बात है कि सब लोग इस तरह शामिल हो जाते हैं कि लगता है कि उर्दू आती है बोलनी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो USU के थ्रू इससे पहले इसी प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम्स किए हैं हमने।
1: जी
0: शहजाद भाई होते थे, शहजाद अहमद अब्दुल्ला साहब, तो वो मतलब बुलाते भी थे। और यहाँ जो करवाते हैं अकीदत के फूल के नाम से एक
1: जी
0: प्रोग्राम होता है
1: जी
0: मॉरिशस में, तो जो बच्चे विन करते थे वो हमारे पास भेजते थे पाकिस्तान ना,
1: माशाल्लाह।
0: तो मेरे जो उस्ताद हैं फिर मैं उनके पास ले जाती थी और वो बच्चे हमारे साथ ही स्टे करते थे हमारे घर पर। तो वहाँ जब मैं उनको, तो मेरे उस्ताद जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो वो इजी हो गए कि अच्छा जी ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा उर्दू आती होगी। लेकिन जब बोलना शुरू किया तो उनको उर्दू नहीं आती थी। इवन उनका पढ़ना जो था वो रोमन में लिखा हुआ था और अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ था,
1: बिल्कुल
0: तो वो भी बहुत हैरान हुए कि अच्छा इन बच्चों को लैंग्वेज नहीं आती लेकिन इतनी साफ उर्दू में नात पढ़ रहे हैं। तो ये एक समझती हूँ कि मिरेकल है अल्लाह की तरफ से।
1: बिल्कुल, और यही मेरे ख्याल से इसीलिए मॉरिशस जो है एक बहुत ही मुनफरिद मुल्क है, मुनफरिद
0: जी
1: जजीरा है
0: जी
1: कि जिसमें इतनी सारी जुबानें बोली जाती हैं। और यहाँ के लोग मतलब आप किसी भी जुबान में बात करें, वो उर्दू हो, हिंदी हो, तो सब लोग सब जुबानें समझते हैं। तो यहाँ के मेरे ख्याल
0: जी
1: से ये अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है।
0: अच्छा, ये अब ये बात आप सही कह रही हैं कि बहुत से लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं, बहुत से मौसम हैं कि एक रोड से उस रोड पे जाओ तो पता चला कि जी मौसम ही बदल गया,
1: बिल्कुल
0: छोटी सी जगह है। और इस ये बात भी बड़ी हैरत अंगेज़ है कि यहाँ मतलब पहाड़ी सिलसिला भी है इसी जगह में, कि पहाड़ी सिलसिला भी है तो ग्रीनरी भी है तो समंदर भी है। हमारे पाकिस्तान में सब कुछ है लेकिन ऐसा नहीं है, एक साइड पे देखा जाए तो पहाड़ी सिलसिला है, फिर उसके बाद आप सफ़र करते हैं एक दिन दो दिन ऐसे लगता है, मतलब 24 घंटे 48 घंटे इस तरह, फिर उसके बाद आप आते हैं तो पता चला जी हाँ ग्रीनरी है। लेकिन यहाँ छोटी सी जगह में सब कुछ कुदरत ने समो दिया है।
1: और शायद इसीलिए मॉरिशस को जन्नत कहा जाता है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: जी
0: अल्लाह इस जन्नत
1: बिल्कुल
0: को कायम रखे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अब हमारे सामने पेश करें नाते रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
0: जी ज़रूर। और नात पेश करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनेगा तो यकीनन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ज़रूर कहेंगे, क्योंकि जब हम भी
1: बेशक
0: क्योंकि यही है कि जब हम आपका नाम सुनते हैं तो हम पर दुरूद वाजिब हो जाता है।
1: बेशक
0: तो जब भी मैं मोहम्मद कहूँगी तो यकीनन सुनने वाले सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें।
1: बेशक बेशक।
0: या

0: जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम।
1: माशाल्लाह इशरत साहिबा, आपकी आवाज़ में ख़ास मिठास, सोज़ और अकीदत है। आपने जिस मोहब्बत और ख़ुलूस के साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, उसने यकीनन दिलों को छू लिया।
2: बहुत शुक्रिया जी।
1: यूँ महसूस हुआ जैसे हर लफ्ज़ इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबा हुआ है। आवाज़ की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन आपके अंदाज़े नातख्वानी में जो अदब, आजिज़ी और मोहब्बत झलकती है, वो इस कलाम को और भी पुर असर बना देती है। एक बार फिर हम आपसे कहेंगे माशाल्लाह।
2: शुक्रिया जी।
1: कुछ और सवालात आपसे करना चाहेंगे, हमें आप ये बताना पसंद करेंगी कि क्या गुज़िश्ता दौरे मॉरिशस का कोई ऐसा वाक़या, महफिल या मुलाकात जो आप कभी ना भूल पाएं?
2: ऐसे तो सारी ही महफ़िलें ऐसी हैं कि नहीं भुलाई जाती हैं। लोगों का प्यार एक्चुअली इतना मॉर्निंग में करने का हमें आदत बहुत कम कम है।
1: जी जी जी
2: एफएम भी अगर हम जाते हैं वहाँ का जो रेडियो है
1: जी
2: तो वो भी 1 बजे मतलब आफ्टरनून के बाद ही होता है, आफ्टर जोहर वगैरह ना, तो यहाँ मॉर्निंग में है प्रोग्राम्स,
1: जी
2: तो बड़ा अपने आप को संभालना। लोग भी माशाल्लाह मिलने आ रहे हैं, लोगों की मोहब्बत है कि
1: बिल्कुल
2: हमसे मिलने आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमें मिलना होता है उनसे। और
1: जी
2: मोहब्बत का तो कोई वो नहीं है ना बदल कि
1: बिल्कुल
2: हम उसको वो पे कर ही नहीं सकते कभी भी। तो वाक़यात तो बहुत से हैं, इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं सोचती
1: बिल्कुल
2: हूँ
1: बिल्कुल कोई मसला नहीं। अच्छा,
2: क्योंकि
1: यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी दूसरा सवाल, कि पाकिस्तान और मॉरिशस की जो नातिया महाफिल हैं उनमें आपको कोई खूबसूरत फ़र्क नज़र आता है, कोई कोई डिफरेंस जो आप फील करती हैं कि यहाँ और वहाँ में ये आपको फ़र्क दिखता है कि यहाँ का ये, जैसे कि आपने एक फ़र्क हमें बताया कि यहाँ के हर चीज़ सुबह है, यहाँ हमारी सुबह ज़रा जल्दी होती है,
2: जी जी
1: पाकिस्तान में
2: जी
1: हमारी सुबह
2: ये बहुत
1: देर से
2: बड़ा
1: होती
2: फ़र्क
1: है। हाँ,
2: है।
1: ये तो सबसे बड़ा फ़र्क है। इसके अलावा जब आप कलाम पढ़ रही होती हैं, जब आप किसी महफिल में कोई कलाम सुना रही होती हैं, महफिलें सजा रही होती हैं, तो उसमें या तो आपके सुनने वालों में या किसी भी तरीके के जो फ़र्क हैं, कोई है आपके जहन में या दोनों आपको एक ही जैसे लगते हैं?
2: देखिए बात यह है कि जिक्र तो एक ही है, अल्लाह भी एक है, रसूल भी एक है,
1: बिल्कुल
2: उसी का
1: बिल्कुल
2: जिक्र होता है।
1: बिल्कुल
2: तो हमारी यहाँ की महफ़िलों में वहाँ की महफ़िलों में एक फ़र्क है कि वहाँ लोग एक्सप्रेसिव कम है मेरा ख्याल है, क्योंकि महफ़िलें मिलती तो बहुत है ना, तो आए दिन महफ़िलें हो रही होती हैं, तो जो चीज़ हमें मिल जाए बिन मांगे मुझे लगता है हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं शायद ना।
1: बिल्कुल
2: तो जिस तरह लोग यहाँ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, हमारे साथ मिल के पढ़ रहे होते हैं, ऐसी महफ़िलें पाकिस्तान में कम हैं। ऐसा नहीं है, मोहब्बत है, अकीदत है, सब कुछ है, दिल में होता है, लेकिन शायद शर्माते हैं बोलने में, तो
1: बिल्कुल
2: हमें उनको अपने साथ करने में थोड़ा टाइम लगता है। और बस यही है, एक चैलेंज होता है समझ लीजिए कि
1: बिल्कुल
2: जब हम पढ़ रहे होते हैं तो लोग हमारी सिमत आएँ। अच्छा, आपने मुझसे कहा कि कोई वाक़या ऐसा, सबसे बड़ी बात तो यही कि हाँ लोगों का जो प्यार मिलता है ना,
1: जी
2: तो वही हम लेकर जाते हैं साथ और उसको
1: बिल्कुल
2: मिस कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल
2: बात होती रहती है, दो दोस्तें वगैरह जो हैं, जैसे जाहिदा हैं, नरीमान हैं, और भी दोस्तें हैं, तो उनसे बात वगैरह होती रहती है, लेकिन वो उसको मिस बहुत करते हैं, उस मोहब्बत को।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: तो ये मोहब्बत तो है अपनी जगह बिल्कुल, इसका कोई, वही मैंने कहा कि हम इसको पे नहीं कर सकते, इसका कोई नेमुल बदल
1: नेमल
2: नहीं है।
1: बदल नहीं।
2: तो एक मरतबा क्या हुआ कि हम जा रहे थे रास्ते में, तो जैसे ही वहाँ

0: पहुंचे हॉल पर तो मैं गाड़ी से उतर रही थी, तो मेरा हाथ अभी डोर पे ही था तो किसी ने बंद कर दिया एकदम से, या खुद से बंद हो गया, कुछ हुआ तो हाथ में ज़रा चोट सी हल्की सी लग गई थी। अच्छा, जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो लोग मिलने के लिए आने लगे। मैंने रिंग पहनी हुई थी तो अब वो उसके साथ और चोट भी लगी हुई थी, मैंने इतना गौर नहीं किया, पढ़ना शुरू किया। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, लोग मिलने के लिए आने लगे, तो जब लोग मुझसे हाथ मिलाने लगे तो मुझे याद आया कि मेरे हाथ में तो चोट लगी और तकलीफ भी हो रही है ना, तो मैंने
1: बिल्कुल
0: वो अपना वो हाथ पीछे कर लिया, तो ख्वातीन ने, औरतों ने मेरे हाथ को अंदर से पकड़ के निकाला और फिर सब
1: तो
0: मिलने
1: ये आपके ये आपको याद रहेगा उन
0: लगे। ये
1: तमाम
0: उनका
1: वाकयात में।
0: प्यार है, मतलब मुझे
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छा लगा, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन
1: मतलब यहाँ के लोगों का खुलूस,
0: जी जी
1: मोहब्बत और
0: बिल्कुल
1: आपके लिए अदब, आपके एहतराम,
0: जी
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल
0: मैं कहती
1: बिल्कुल
0: हूँ कोई ऐसा बॉक्स हो, कुछ हो, मैं उसमें भर के ले जाऊँ। खैर, ये तो दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि जब जाते हैं तो बिल्कुल पुरनूर भी होता है और मोहब्बतें लेकर भी जाते हैं, पर दिल
1: बिल्कुल
0: चाहता है कोई बड़ा सा बॉक्स हो उसमें भी भर ले
1: माशाल्लाह।
0: बंदा।
1: इसीलिए आप आ जाती हैं और आप आती जाती रहेंगी। हमारी दुआ है कि आप
0: इंशाल्लाह
1: इसी तरह मॉरिशस आती जाती रहें,
0: इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे दरियाफ्त करूंगी कि अब आप क्या पेश करना चाहेंगी।
0: जी। नातिया कलाम पेश करते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: इससे पहले दुरूद पाक का नजराना।
1: जी।

0: जुमे का दिन है और यकीनन ये बात हम सुनते रहते हैं कि आज के दिन की एक साथ ऐसी है कि दुआ कबूल होती है, तो इस्तगासा पेश करूंगी और दुआ यही है कि अल्लाह हमारी सारी दुआएं कबूल मंजूर फरमाए।
1: आमीन आमीन।

0: माशाल्लाह जी हाँ, कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक पहुंचती हैं और कुछ सीधी दिल में उतर जाती हैं। इशरत साहिबा, आपकी आवाज़ उन्हीं खूबसूरत आवाज़ों में से माशाल्लाह एक आवाज़ है। मौज़े सामीन, आपको बताते चलें कि कल दिन के 1:30 बजे यहाँ बाद नमाज़े ज़ोहर म्यूनिसपैलिटी ऑफ क्यूपिप में इशरत तस्नीम साहिबा महफिल नात सजाएंगी। जी हाँ, आप सबको शिरकत की दावत है इशरत तस्नीम साहिबा की सरपरस्ती में। इशरत, हम आपसे कुछ और बातें करना चाहेंगे।
1: जी
0: आप हमें
1: ज़रूर।
0: बताना पसंद करेंगी कि नात ख्वानी का आगाज़ आपकी ज़िंदगी में कैसे हुआ?
1: ये भी बड़े मज़े की बात है। मैं उस वक्त 6 साल की थी तकरीबन, और हमारे फैमिली में कोई नात ख्वानी था। उस वक्त रेडियो का ज़्यादा रिवाज था पाकिस्तान में, और टेलीविज़न आ चुका था मेरे बचपन में, लेकिन ब्लैक एंड वाइट था, उस वक्त तक कलर नहीं आया था। तो कभी कभी जो नातें हम सुनते थे रेडियो पर सुन ली, टेलीविज़न में सुन ली, तो बस इतना ही था जैसे ना। तो स्कूल में मिलाद शरीफ हो रहा था, तो टीचर ने कहा भाई किस किस को पढ़ना है। अब वो अल्लाह जब देता है ना, कोई फ़न देता है अल्लाह की तरफ से है ना, मतलब
0: बिल्कुल
1: इसके बगैर
0: बिल्कुल
1: तो किसी हुनर के बगैर कोई भी खाली नहीं है।
0: बिल्कुल
1: हर एक को अल्लाह ने कोई ना कोई हुनर ज़रूर बख्शा है। जैसे आपके कुव्वते गोयाई कितना माशाल्लाह, मैं सुन रही हूँ आपको, एक एक लफ्ज़ ऐसा लग रहा है जैसे कि मोतियों में पुरोया हुआ।
0: बस आपकी मोहब्बत
1: माशाल्लाह,
0: है, आपकी
1: नहीं
0: मोहब्बत
1: बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। तो बहरहाल मैंने टीचर को सुनाई नात, तो इतनी छोटी सी आवाज़ थी, तो वो आपस में मशवरा करने लगे कि इनको लें ना लें, क्या करें। तो दूसरे टीचर ने कहा कि कोई बात नहीं, माइक तो होगा, तो माइक्रोफोन लगे होंगे तो इजीली ये पढ़ लेंगी, चले ले लेते हैं ना, कोई बात नहीं। तो वो कंपटीशन भी था और मिलाद शरीफ भी था, तो उसमें मैंने फ़र्स्ट विन किया उस वक्त।
0: माशाल्लाह।
1: तो उसके बाद फिर हिम्मत बनी और काफ़ी मुश्किलात पेश आई, क्योंकि फैमिली में कोई था नहीं ना,
0: बिल्कुल
1: तो इधर से सीखा उधर से सीखा, मतलब धक्के भी खाता है बंदा। तो मैं समझती हूँ कि हीरा बनता है तभी इंसान के, जब कुंदन बनता है ना तो तपना पड़ता है सोने को,
0: बिल्कुल
1: तभी
0: बिल्कुल
1: कुंदन बनता है। खैर मैं तो खैर इस वक्त भी कुछ नहीं हूँ, मैं तिफले मकतब ही हूँ, आज भी सीख रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा जो आता है तो मैं सिखाऊँ भी। तो एज एन इंस्ट्रक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जो कि डॉक्टर फरीद अहमद साहिबा, मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की जो
0: माशाल्लाह।
1: सिस्टर थी, और काफ़ी आती थी यहाँ, काफ़ी मुरीदीन भी हैं उनके, तो उन्हीं की यूनिवर्सिटी में जाके मैं सिखाती थी। आज भी मेरे स्टूडेंट काफ़ी हैं माशाल्लाह,
0: माशाल्लाह
1: और आज हैरत की ये बात है, खुशी की बात है कि पाकिस्तान में जितना अच्छा पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो सब तकरीबन तकरीबन मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं।
0: माशाल्लाह
1: और मैं जहाँ जाती हूँ इतना प्यार देती हैं, कहती हैं मिस आपने इतनी हौसला अफजाई की, और मैं हैरान होती हूँ, मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो इतना प्यार सबको दे रही होती है, मतलब हर कोई मुझे प्यार दे रहा होता है, तो
0: बिल्कुल
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल आपने आपने कहा स्कूल से, मुझे भी स्कूल से नाते पढ़ने का बहुत शौक था, और मैं भी बहुत, लेकिन ये मौका नहीं मिल सका आपसे सीखने का। लेकिन
1: अरे
0: इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो
1: अरे
0: ज़रूर
1: मुझे
0: सीखेंगे
1: कुछ भी नहीं
0: आपसे।
1: आता कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो आता है वो सिखा,
0: बिल्कुल
1: मतलब
0: बिल्कुल
1: कोशिश करते हैं बस।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल यही चाहिए। अच्छा, इसी के साथ मौजूद सामीन, 11:51 हो चुके हैं, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है।
1: जी
0: तो हम इशरत तस्नीम साहिबा से दरख्वास्त करेंगे कि जैसा कि हर महफिल में होता है कि मनकबत हमारे सामने अगर कोई पेश कर
1: अच्छा
0: सकेंगी,
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: उसके बाद इंशाल्लाह सलाम का नजराना पेश किया जाएगा।
1: ठीक है इंशाल्लाह।

0: नाचाते हुए भी मौजे सामीन हम इस मजलिस के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी इशरत साहिबा कि आप जितने भी लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं या जितने भी लोग आपसे आपको सुनना पसंद करते हैं, मॉरिशस में आप आती जाती रहती हैं तो यकीनन आपके बहुत से चाहने वाले होंगे, अगर आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहती हैं तो।
1: जी, एक्चुअली इस माह मुबारक का सबसे बड़ा पैगाम तो यही है और मैंने कोशिश की है कि हर महफिल में ये पैगाम को फैला दूँ। हम जानते भी हैं एक्चुअली, अच्छा रबीउल अव्वल में आना हुआ तो वहाँ भी बैक टू बैक महफिलें बहुत ज़्यादा थीं, तो वो करते हुए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। तो
0: बिल्कुल।
1: ये है, बहरहाल अल्लाह की मेहरबानी है कि वो ज़िक्र में मसरूफ़ रखता है। लेकिन इस माह मुबारक का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि दुरूद पाक को अपना ओढ़ना बिछूना बना लीजिए, क्योंकि फ़राइज़ के साथ साथ जब दुरूद का पढ़ने का हमारा वतीरा होगा, मामूल होगा, तो कोई मुश्किल आएगी नहीं। और आएगी भी क्योंकि आजमाइश है दुनिया में, हर एक के साथ टेस्ट है। मैं ये समझती हूँ दुनिया में कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ कोई परेशानी नहीं है, हर एक के साथ कोई ना कोई दुख, क्योंकि अल्लाह आजमाता है, ये टेस्ट है हमारा। तो अल्लाह सबको सुरखरू भी करे, और जब हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो जो भी आजमाइश आएगी वो आसानी के साथ गुजर भी जाएगी, दिल को इत्मीनान सुकून, हम परेशान नहीं होंगे कि हर एक को पकड़ के नहीं बोलेंगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, हमारे साथ ये परेशानी हो गई। दिल को एक सुकून होगा, हमें पता होगा कि अल्लाह हमारे साथ है, उसका हबीब हमारे साथ है, ये जिक्र हमारे साथ है, तो दिल को एक सुकून तो मिलता ही है। अगर टाइम हो तो मैं दुरूद के हवाले से एक बात ज़रूर कहना
0: बिल्कुल,
1: चाहूँगी।
0: बिल्कुल।
1: देखिए, हमने बचपन से सुना कि दुरूद पढ़ते हैं तो हर दुआ कबूल होती है, ठीक है ना? जबकि हम देखें पांच वक्त नमाज़ें पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, मतलब मसरूफियत में से टाइम निकाल के खड़े होना एक बात है, तब भी हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी नमाज कबूल हो जाए। हमारी ज़कात माल में से माल निकालना बहुत बड़ी बात है, दिल बड़ा करना पड़ता है, तब भी दुआ करते हैं। हज है, उसमें मशक्क़त भी है, पैसा भी है, टाइम है, सब कुछ इन्वॉल्व है, तब भी हम दुआ करते हैं या अल्लाह हज कबूल हो जाए। लेकिन दुरूद पढ़ते हैं तो हमें पता है दुरूद कबूल है, और दुरूद के दो शाले में लपट के जो भी इबादत की जाए, जो दुआ की जाए, जो नेक अमल किया जाए वो कबूल है, हमें ये पता है ना। पर ऐसा इसलिए है कि जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हम ये तालीम अल्लाह ने फरमाई सूरह अहज़ाब में कि मैं और मेरे मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं, तो ऐ ईमान वालों तुम भी नबी पर दुरूद भेजो। अल्लाह हमें फरमा रहा है कि तुम भी भेजो नबी पर दुरूद, अल्लाह तो हमें कह रहा है ना, लेकिन हमें तालीम क्या फरमाई गई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, कि ए अल्लाह भेज दीजिए मोहम्मद पर दुरूद। तो हम अल्लाह के थ्रू पहुंचा रहे हैं दुरूद, क्योंकि अल्लाह की शान है, अल्लाह को पता है मेरे हबीब की क्या शान है, क्या मकाम है, वो उस हिसाब से दुरूद अल्लाह हमारा पहुंचा रहा है, हमारी कोई औकात नहीं, इसलिए हम अल्लाह तक भेजते हैं, और जो अल्लाह भेज रहा है तो ज़ाहिर है फिर कबूल ही कबूल है।
0: बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इशरत तसीम साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे सामीन के लिए निकाला और अपने नातिया सफ़र, यादों और ख़ूबसूरत ख़यालात को हमारे साथ बाँटा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी आवाज़ और आपकी इस ख़िदमत नात को मज़ीद कबूलियत अता फ़रमाए, और आप इसी तरह इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू दुनिया भर में फैलाती रहें।
1: आमीन।

0: सुमामीन, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बोलना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे FM पर भी प्रोग्राम हो रहे होते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रही हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, और आप किसी से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा ही, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं।
1: आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत। और आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप सलाम का नजराना पेश करें।
0: जी

0: मौज़ सामीन, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। एक बार फिर शुक्रगुज़ार हैं मोहतरमा इशरत तस्नीम साहिबा, मोहतरमा नरीमान और मोहतरमा जायदा के कि आप सब ने स्टूडियो में हमारा साथ दिया। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में हमारी आज की इस महफ़िल को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

Thank you.

Idea.

0: तो चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम है आपकी पसंद, आपके मनपसंद रेडियो चैनल
1: आपकी पसंद।
0: समस्त सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक श्रोताओ हम आपका साथ देने वाले हैं। कार्यक्रम है आपकी पसंद, आपकी पसंद कार्यक्रम, आपके सहयोग से कार्यक्रम चलता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन सकेंगे, द बर्निंग ट्रेन फिल्म से लिया गया, मेरी तरफ से सभी सुनने वालों के लिए।

चलिए ये श्रोता को आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत विद्या जी है उन्हें अनपाव की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगला गीत उनकी बहन सती के लिए, सुरेखा, वेदना, विमला, प्रीति, बबीता और उनकी चाची है कुमारी। तो चलिए प्यारा सा गीत, तुमसे अच्छा कौन है।

0: आपकी पसंद कार्यक्रम 2:50 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में शो जाओ। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं इन सभी श्रोताओं के लिए आप है सुदेवी जी वाकवा की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये अगला गीत जाएगा समस्त परिवारों के लिए। थयोरे की दीदी ललिता है, कुशल परिवार है, दीदी सुनीता है, शोभा, देवीना, माला, बिंदु, मालिंगा के भाभी, प्रतिमा, शीला, राधा, बबीता, रामरतन परिवार, कुआगो परिवार, गागुबाव परिवार, जालू परिवार, समस्त परिवारों के लिए ये अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं। फिल्म रेफ्यूजी से लिया गया ये प्यारा सा गीत जो है इन समस्त श्रोताओं के नाम हम कर रही हैं।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लूंगी।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है रजनी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में 900 से 1000 दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, जबकि सार्वजनिक जनिक क्षेत्र में ये संख्या लगभग 50 है। हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद हैं। परिवहन के क्षेत्र में कार्बन की मात्रा कम करना और हमारी सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाना, इस ट्रांजिशन में तेजी लाने के लिए निजी ऑपरेटरों से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम से गुजरने की मांग की जा रही है। एक इलेक्ट्रिक बस खरीदने के वास्ते 3.5 मिलियन रुपए तक की फाइनेंसिंग मुमकिन। बहुत जल्द UNDP और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा समर्थित प्रमोटिंग लो कार्बन इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट इन मॉरिशस परियोजना के संदर्भ में ये सहायता राशि बढ़ाई जाएगी। सार्वजनिक सेक्टर को ज्यादा कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह कैसे बनाया जा सकता है, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संबंध पक्ष 1-2 दिवसीय सलाहकारी कार्यशाला के लिए एकत्र हो रहे हैं। मकसद है उन मुख्य सिद्धांतों पर आम सहमति बनाना जो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म बिल का ड्राफ्ट तैयार करने में मदद देंगी। इस कार्यशाला की शुरुआत रिजवी में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन में की गई। विदेशी समाचारों में, भारत में दिल्ली में ब्रिक्स समिट 2026 को लेकर तैयारियां पूरी हैं और दुनिया की नज़र भारत पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बैठक शुरू हो चुकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की भी पेजेस्कियान के से द्विपक्षीय बातचीत होनी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत आए हैं। सम्मेलन में व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, कनेक्टिविटी और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत मंडपम में होने वाले इस बड़े आयोजन के लिए दिल्ली में कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। और 11 सितंबर 2001 की वो सुबह इतिहास की सबसे भयावह सुबहों में से दर्ज, जब अमेरिका के आसमान में उड़ रहे 4 विमानों को आतंकवादियों ने हथियार बना दिया था और कुछ ही घंटों में दुनिया की तस्वीर बदल गई। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स और वाशिंगटन के पास पेंटागन को निशाना बनाया गया, जबकि 4th विमान पेंसिल्वानिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस सुनियोजित आतंकी हमले में करीब 3,000 लोगों की जान चली गई और इसके बाद अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था, विदेशी नीति और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का रुख बदल गया। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: तो चलिए श्रोताओ, ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है।
4: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: श्रोताओ, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से क्लेमोशा के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 12 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओ, अभी आप सेंट्रल

0: बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो आइए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे इसी चैनल पे।
1: आपकी पसंद

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम सपहर के 3:05 हुआ है स्टूडियो जी, 3:05 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखेंगे। तो चलिए श्रोताओ, ये अगला गीत जो है इस समय विश्वानी डुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाकवा से। तो अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम और इस फिल्म से लिया गया गीत जाएगा उनकी सभी बहनों के लिए, इंदिरा शारदा और साथ में उनकी सहेली है नीला प्रतिभा शोभा, साथ में है गीता गजाधर। तो इन सभी लोगों की फरमाइश पे हम ये अगला गीत चलाने वाले हैं। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपकी पसंद का कार्यक्रम श्रोताओ 4028085 पे, साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर है 5251700005। तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रही है और गीत जो है बहुत ही पसंद किया जाता है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे श्रोताओं, और अगला गीत हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं, और इस समय हमारे साथ मैं है, जी हाँ इस समय हमारे साथ मैं है लॉन्ग माउंटेन की रहने वाली, जी हाँ हमारे साथ सरिता जय काथुबोन की रहने वाली, और साथ में है नारायणी जय लॉन्ग माउंटेन की रहने वाली, और केश जय काथुबोन की रहने वाली, उनके दो बच्चों के लिए नेहा नितिशा उनके दामाद है आनंद जी, और उनके समस्त परिवारों के लिए उनके दामाद है एल्विन और उनके पति है आनंद जी। त्रिवेणी जी है गुडलैंड्स की रहने वाली, साथ में हैं सभी मोहन परिवार के लिए और उनके पति है अनिल जी। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत हम सुनेंगे।

चलिए बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गीत आपके नाम हम कर रहे हैं। सपहर की 3:18 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। ये गीत माँ गायत्री जी के लिए नोवेल फ्रांस की रहने वाले, साथ उनके बेटे अजय के लिए, साथ में गांकोप की रहने वाली सुनीता जी के लिए। ये अगला गीत माला सुमारू जी है कथोबोन की रहने वाली। ये गीत उनके पति, जी हाँ, माला सुमारू जी है कथोबोन की रहने वाली और उनके पति है सूर्यदेव जी, उनके सभी बच्चों के लिए, कुछ मॉरिशस में है, कुछ कनाडा में है।

चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में शोभा जी है पोम्पे म्यूजिक से हमारे साथ दे रही है। तो चलिए ये बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म दरिंदा से लिया गया मुकेश की आवाज़ में, ये प्यारा सा गीत हम सुनेंगे।

0: तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपको पता है कुछ ही दिनों में हम गणेश चतुर्थी पर्व मना रहे हैं। तो चलिए, ये अगला गीत हमारे साथ इस समय फिकॉफला की अनिता जी जुड़ी हुई है, तो उनकी फरमाइश पे चलिए उनकी तरफ से भी जितने भी लोग ये पर्व मना रहे हैं, वैसे आपको पता है कि जो है तैयारियाँ शुरू हो चुकी है और अनिता जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: एमबीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
2: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

अगला गीत जो है हमारे साथ इस समय क्यूपिप से अदिति, ये गीत उनजाएगा उनके मामा पापा राजेश के लिए। तो आपके समस्त परिवारों के लिए ये प्यारा सा गीत हम तुम फिल्म से लिया गया, ये टाइटल ट्रैक हम चला रहे हैं।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे 4.285 पे बहुत ही प्यार के साथ निभा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लॉन्ग माउंटेन की नारायणी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये अगला गीत जाएगा उनकी माता जी की याद में। तो चलिए फिर ममता से लिया गया ये सदाबहार गीत जो है हम चलाएंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में।

चलिए कार्यक्रम की अंतिम भेंट में ये खूबसूरत सा गीत जाने वाला है फैजना, नाजमा, फजीमा, मुनीजा, सभी भाइयों के लिए, सभी लिसनर्स के लिए। आदमी और इंसान फिल्म से लिया गया गीत, 1970 की मूवी। तो चलिए प्यारा सा गीत अमीना जी की फरमाइश पे, जो कि पोप हाले की रहने वाली है, और इसी गीत के साथ ही छुटाओ आपकी पसंद कार्यक्रम का समय पूरा हो जाएगा। साथ देने के लिए शुक्रिया। हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर, गुलदस्ता उर्दू। ये कार्यक्रम निसार के साथ आप सुन पाएंगे। हमारी तरफ से नमस्कार आप सभी को।

0: यूं ही हर शाम अगर आपको हम याद रहें, यूं ही हर शाम अगर आपको हम याद रहें, सोहबतें गर्म रहें, महफिलें आबाद रहें। मोहतरम मोहतशम सामईन, निसार अख्तर की तरफ से आदाब अर्ज हैं। उर्दू ज़बान की मोहब्बत, शफ़क़त, नज़ाकत लेकर आपकी ख़िदमत में पेश कर रहे हैं गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम, वो ख़ास बज़्म सुखन जो उर्दू स्पीकिंग यूनियन के ज़ेर एहतमाम नशर किया जाता है। ये बंदा नाचीज़ निसार अख्तर तमाम शायकीन उर्दू का इस्तकबाल करता है। सामईन कराम, गुज़िश्ता हफ्ते को गुलदस्ते उर्दू की अंजुमन में हमने एक नहायत ही दिलचस्प और रंगीन सफ़र का आगाज़ किया था। उर्दू ज़बान व तहज़ीब और हिंदुस्तानी सिनेमा, एक ऐसा मजबूत रिश्ता जिसकी खुशबू फिल्मी मुकालिमों में भी महसूस होती है, नगमों में भी, कहानियों में भी और किरदारों के लहजों में भी। उर्दू ने हिंदुस्तानी सिनेमा को सिर्फ मुकालिमों का सरमाया न दिया, बल्कि बात करने का सलीका, जज्बात को अल्फाज देने का हुनर और इजहार को एक नफीस पैराया अता किया। शायरी जब किताब में होती है तो दिल से मुकालिमा करती है, और जब यही शायरी सुर में ढल जाए तो दिल की धड़कन बन जाती है। फिल्मी नगमों ने उर्दू के कितने अल्फाज हमारे घरों तक पहुंचाए, कितनी गज़लों को ज़बान दी, कितने अशार को आवाज़ दी, कितनी मोहब्बतों, ख्वाबों और जुदाइयों को एक खूबसूरत तरन्नुम अता किया।
1: इसका रिश्ता तो पहले ही हिंदुस्तान की बोलती फिल्म से उस्तवार हो गया था, जब उसमें नगमे थे फिल्म। उसके बाद दूसरी शीरी फरहाद जो फिल्म थी उसके नगमे बहुत मकबूल हुए थे, और उसमें बहुत ज़्यादा नगमे थे, तकरीबन 17। फिर ये सिलसिला तारा फिल्मों में कभी कम नगमे हुए, कभी ज़्यादा हुए, बहुत मकबूल। लेकिन एक ख़ास बात यह थी कि इन नगमों में जो उर्दू शायरी के इस्तियारे थे वो सारे फिल्मी नगमों में लिए जा रहे थे। जैसे उर्दू शायरी में इस्तियारे इस्तेमाल होते हैं, जैसे चमन, बाग, इस तरह के वीराना। वो एक नगमा है, नमिनता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते,

0: या इस तरह से चमन में रहकर भी हम वीराना हुआ जाता है। तो इस तरह के नगमे थे जो वीराना, चमन, या जैसे एक नगमा है, एक था गुल एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। तो ये सारे इस्तियाराती मानी हैं, नगमा, गुल, बुलबुल, इनकी में जो है ज़िंदगी का एक मानी है, और इनमें आशिक और माशूक भी हैं, और ज़िंदगी का मानी भी इसमें मौजूद है। तो वो सारे जो इस्तियाराती माने शायरी में इस्तेमाल होते थे, वही फिल्मों में भी मानी रहे, और वो एक तरह से फिल्मी नगमे उनकी तौसी हो गए। फिर एक पहलू ये भी है कि बहुत से ऐसे फिल्में हैं जिनमें उर्दू शायरी पहले लिखी गई, फिर उसी शायरी को फिल्मों में बतौर नगमा ले लिया गया। जैसे एक फिल्म थी मिर्ज़ा गालिब, तो उसमें गालिब की ही शायरी पूरी इस्तेमाल की गई है, कोई अलग से फिल्मी नगमा नहीं लिखवाया गया।
1: शमाए महफिल जनाब मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के सामने लाई जाती है।

0: तुम ही कहो के ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो के ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
1: उर्दू जबान का जिक्र तो हमने खूब किया, मगर जबान सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं, अपने साथ एक पूरा तर्ज जिंदगी, एक अंदाज़े गुफ्तगू, एक तहजीब भी लेकर चलती है।
2: फिल्मों में उर्दू तहजीब कई तरह से आई, एक तो जुबान के जरिए वो बहुत अहम है, फिर जो मकामी जुबान है उनका भी असर रहा है, लेकिन ख़ास तौर से जब तारीखी फिल्में बनाई गईं या कोई ख़ास पस मंज़र में, जैसे हैदराबाद की कहानी है, लखनऊ की है, दिल्ली की है, तो उन फिल्मों में उर्दू तहजीब ज़्यादा नुमायाँ होती है, या अलीगढ़ की है, लेकिन बाकी ज़िंदगी में तो बहुत सारी फिल्में हैं, तो उनमें भी अक्सर ये होता है कि जब कोई आला तबके का किरदार है, और अक्सर फिल्मों में आला तबके के किरदार ही दिखाते हैं, तो आला तबके का किरदार दिखाने के लिए वो लोग नफीस उर्दू बोलते थे, तो इस तरह से बहुत सारी फिल्मों में उर्दू तहजीब बहुत नुमायाँ है, लेकिन कुछ फिल्मों में जहाँ पर स्टोरी लखनऊ की है, हैदराबाद की, जैसे लखनऊ की हम बताएं, जैसे मेरे महबूब है, या जो तारीखी फिल्में हैं तो उनमें भी वो दिखा देते हैं, जैसे मुगले आज़म है, वहाँ तो उर्दू तहजीब बहुत है और बहुत ही इल उर्दू बोली गई है, इसके बावजूद तो उसके मकाल में लोगों की ज़ुबान पर आज तक। निकाह फिल्म में हैदराबाद का दिखाया, बाजार फिल्म में हैदराबाद को दिखाया, तो बहुत सारी फिल्में हैं, उमराव जान में लखनऊ का दिखाया, तो उनमें वो तहजीबें, उर्दू तहजीब ज़्यादा नुमाया है, लेकिन फिर भी जो आम जदीद ज़माने के लोग भी दिखाए जा रहे हैं उनमें भी ये काफ़ी है कि उससे दिखता है कि जो किरदार है वो पढ़ा लिखा है, नफासत बंद है, तो ये सब जब कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी किरदार निगारी के लिए भी बहुत नफीस उर्दू का इस्तेमाल करते हैं।
3: हुजूर।
4: तस्लीम।
3: आदाब।
4: तशरीफ लाइए।
3: हम कोठों में बहुत कम आते हैं।
4: अब हम ऐसे बुरे भी नहीं है नवाब साहब।
3: आप ही की वजह से तो आए हैं, वरना हरगिज ना आते।
4: मैं जानती हूँ हुजूर मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं,

0: नहीं उमराजान, दरअसल उस रात का जादू उतरा ही नहीं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे आप सिर्फ हमारे लिए गा रही हो।
1: तो फिर किसके लिए गा रही थी? उस महफिल में आप ऐसा शेर और मौसीकी को समझने वाला था भी कौन?
0: बेखुदी में हम तो दाद देना भी भूल गए थे।
1: कोई दाद देना भूल जाए, इससे बड़ी दाद क्या होगी?
0: वो गजल भी तो आप ही की थी।
1: ऐ हटाइए, यूं ही तुकबंदी कर लेती हूँ।
0: इतने उम्दा कलाम को तुकबंदी कह रही? सुभान अल्लाह, क्या अदा है।
1: हुजूर भी तो शेर कहते हैं।
0: शायरी हमारे बस की चीज नहीं है। हाँ, तन्हाई में गुनगुनाते हुए कोई शेर हो जाए तो ये बात दूसरी है।
1: यहाँ भी तन्हाई है, कुछ गुनगुनाइए ना।
0: आपके सामने तो हमारी आवाज ही नहीं निकलेगी।
1: अल्लाह आप सुनाइए भी।
0: अच्छा, एक शर्त पर।
1: मुझे मंजूर है।
0: आप अपनी वो गजल हमें दे दीजिए।
1: बस मांगा भी तो क्या मांगा नवाब साहब।
0: उमरा, हम
1: अब और न तड़पाइए, सुनाइए भी।
0: चंद शेर अर्ज़ हैं।
1: इरशाद।
0: किस किस तरह से मुझको न रुसवा किया गया, खैरों का नाम मेरे लहू से लिखा गया, क्यों आज उसका जिक्र मुझे खुश न कर सका, क्यों आज उसका जिक्र मुझे खुश न कर सका, क्यों आज उसका नाम मेरा दिल दुखा गया।
1: वाह, सुभान अल्लाह।
2: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: सामईन कराम, एक ऐलान गौर फरमाइए। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर उर्दू स्पीकिंग यूनियन की जानिब से सनीचर 12 सितंबर को रात के 8:30 बजे इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक खास महफिल नात सजाई जाएगी। इसमें पाकिस्तान के मशहूर मारूफ नात खां हाफिज कमरान कादरी अपनी खुशुलहां और सहरंगेज आवाज में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत का नजराना पेश करेंगे। आप सभी को शिरकत की दावत है। मोहतरम सामईन, अब तक हम ये जान चुके हैं कि उर्दू जबान और हिंदुस्तानी सिनेमा का रिश्ता किस कदर गहरा और दिलचस्प रहा है। हमने उर्दू को फिल्मों में सुना, उसके तहजीबी रंग को देखा। सवाल ये है कि उस जमाने की हिंदुस्तानी फिल्मों में जब उर्दू जबान और तहजीब का असर इस कदर नुमाया था, क्या उर्दू रस्मुलखत भी इस्तेमाल किया जाता था? क्या फिल्मों के उन्वानात, इश्तिहारात, पोस्टर्स में उर्दू के हरूफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराते थे?
4: अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन जो हमारा क्लासिकी दौर है, खासतौर से 50-60 उस वक्त उर्दू रस्मुलखत भी फिल्मों में इस्तेमाल होती थी। एक तो ये भी होता था, कहीं कहीं मान लिया कूचर बाजार दिखाए जा रहे हैं तो वहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ उर्दू में दिख जाता है, वो कहीं कहीं अभी भी होता है। फिर जो क्रेडिट दिए जाते हैं उसमें भी अक्सर फिल्म का नाम तो उर्दू में रहता ही रहता था, कुछ और भी कभी क्रेडिट दिए जाते थे। लेकिन उससे बढ़कर जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी और फिल्मी नगमे लिखे जाते थे वो ज़्यादातर उस वक्त उर्दू में ही लिखे जाते थे। तो उर्दू तहरीर का भी इस्तेमाल होता रहा है बहुत ज़माने तक है, और अभी भी कम हुआ है, लेकिन नहीं कि बिल्कुल बंद हो गया। अभी भी गुलजार साहब उर्दू में ही लिख के देते हैं। और इसके अलावा एक्टर्स और डायरेक्टर उस ज़माने में जो थे, जैसे धर्मेंद्र थे, राज कपूर थे, दिलीप कुमार, देवानंद, ये सब लोग उर्दू में लिखते थे। अभी हाल के वर्षों से कादर खान स्क्रिप्ट राइटर थे तो वो उर्दू में ही लिखते थे। कादर खान खुद स्क्रिप्ट उर्दू में ही लिखते थे।
3: सामईन कराम, इसी के साथ हमारा आज का गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम यहाँ ख़त्म होता है। आज की गुफ्तगु के अख्तिताम पर शायद ये कहना बेजाना होगा कि उर्दू और हिंदुस्तानी सिनेमा का रिश्ता महज ज़बान का रिश्ता नहीं, बल्कि तहजीब, एहसास और इजहार का एक हसीन

इम्तिजाज हैं। सामईन, अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते किसी और मौजू को लेकर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।

0: 890 calories. This is Radio Mauritius.
1: घड़ी मिला लीजिए सामिन कराम, इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं, शाम के ठीक चार बज रहे हैं।
2: मक्का मुकर्रमा सोसाइटी की जानिब से और मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के तआवुन से कुरान रीडिंग कंपटीशन यानी मुकाबला कुरान खानी की चार कामयाब प्रिलिमिनरीज के बाद अब वक्त है उसके ग्रैंड फिनाले का। जुम्मा 11 सितंबर 2026 इस्लामिक कल्चरल सेंटर पोर्टवी से देखिए इसकी लाइव टेलीकास्ट MBC 9 रात 8:30 बजे से। इस मुकाबले के 9 फाइनलिस्ट इसमें अपने खास अंदाज में तिलावत कलाम पाक से मुशर्रफ होंगे।

इस खास मौके के लिए पाकिस्तान से तशरीफ लाए डॉक्टर कारी इकरामुल्ला मोहसिन दामत बरकत उमालिया मारूफ कारी कुरान के तिलावत से भी आप अपने ईमान को ताजगी बख्श सकेंगे। कुरान रीडिंग कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले जुम्मा 11 सितंबर रात 8:30 बजे MBC 9 पर देखिए बराहे रास्त नशरिया।

0: सामीन, अभी आप सूरा अल अंबिया की आयतों से अपने दिलों को मुजयन फरमा रहे थे। रब्बे जुल जलाल इन आयतों के सुनने का सवाब हम सबको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
1: मक्का अल मुकर्रमा सोसाइटी की जानिब से और मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के तआवुन से कुरान रीडिंग कंपटीशन यानी मुकाबला कुरान खानी की 4 कामयाब प्रिलिमिनरीज के बाद अब वक्त है उसके ग्रैंड फिनाले का। जुम्मा 11 सितंबर 2026 इस्लामिक कल्चरल सेंटर पोटली से देखिए इसकी लाइव टेलीकास्ट MBC 9 रात 8:30 बजे से। इस मुकाबले के 9 फाइनलिस्ट इसमें अपने खास अंदाज में तिलावत

फना हो जाए। किसी मुल्ला की बात जो आपको किसी बहाने से किसी हीले से इन हसीन तस्करों से दूर करें, हरगिज न सुने, फकत उन्हें सुने जो खुद भी तस्करे महबूब में सुबह शाम मगन होते और लोगों को भी इन हसीन तस्करों की और इन जमील तस्करों की दावत उन्हें इनवाइट करते हैं और महाफिल को और बढ़ाए, उसमें और इजाफा करें। यही हर मुखालिफत का जवाब है। उसूल ये है कि मुखालिफ को नहीं, मुखालिफत को खत्म करना है। और जूं जूं तस्करे महबूब बढ़ता चला जाएगा, इंशाअल्लाह तू तू मुखालिफत खत्म होती चली जाएगी। सो पहला नंबर वन, अर रहमतुल खास, द स्पेशल मर्सी, अल्लाह की खास रहमत। जब भी कोई अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन तस्करे में मसरूफ होता है, उसकी जुबान पर अल्लाह के हबीब का नाम आता, ख्वाब व महफिले मीलाद के उनवान से हो या किसी और उनवान से, इसलिए कि ये कायदा है कि उनवान के बदलने से मुअन्वर नहीं बदलता। इसको अहले इल्म बखूबी जानते हैं। तो जब भी आपका नाम नामी इसमें गिरामी जुबान पर आता तो अल्लाह की रहमत इस तरह बरसती है जैसे बारिश बरसती है। बाराने रहमत को अल्लाह वाले अपनी आंखों से देखते। हमारे पास तो ये मादी निगाह है, फिजिकल आईज, लेकिन जिनके पास स्पिरिचुअल आईज रूहानी निगाह है वो अपनी आंखों से उस बाराने रहमत को उतरते देखते जो चमाचम बरसती है इन महाफिल इन मजालिस में। इसलिए वहां पीस होता है। वो लोग जो डिप्रेशन का स्ट्रेस का शिकार है उन्हें मैं दावत देता हूं कि इसी मजालिस को ज्वाइन करें, यही आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन का इलाज है, यही आपके टेंशन का इलाज है, यही आपके तमाम फिजिकल डिजीजेस और स्पिरिचुअल डिजीजेस का इलाज है। और आप चाहें तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरी बात, अल मग़फ़िरतुल ख़ासा, द स्पेशल फॉरगिवनेस, अल्लाह की खास रहमत और अल्लाह की खास बख्शिश। जब भी कोई तस्करे महबूब में मगन होता अल्लाह उसके गुनाह मिटाता, उसकी खताओं को मुआफ फरमाता, उसके गुनाह मिटते चले जाते। यहां तस्करे महबूब में इजाफा होता चला जाता है, वहां उसके गुनाहों के मिटने में इजाफा होता है। और नंबर तीन, मग़फ़िरत के बाद अर रिज़वान ख़ास, द स्पेशल प्लेजर ऑफ अल्लाह, द स्पेशल डिवाइन प्लेजर, अल्लाह जल्ला मजदहू की खास रजा। एक तो आम रजा होती है,

और एक खास रजा होती है, एक आम तौर पे खुश होना है और एक खुशी में जूम जाना, खुशी की हद। तो अल्लाह पाक की खास रजा उन्हें नसीब होती है। और नंबर 4, दुखूलुल जन्ना, टू इंटर पैराडाइज, जन्नत में दाखिला होना, जन्नत में जाना। सो दुरूद सलाम और महाफिल मीलाद सेलिब्रेट करने वाले वो खुश नसीब हैं जिनके गुनाह भी बख्शे जाते हैं, जिन पे रहमत की बारिश होती है, जिनसे अल्लाह भी राजी होता है, उसके हबीब भी राजी होते हैं। और जो अहले जन्नत हैं, जिनका शुमार अहले जन्नत है, और फिर अल्लाह की बारगाह से उन्हें खास जन्नत अता होती है, जिनको कुरान ने सूरह फजर में जन्नती कहा है। एक तो जन्नत है पैराडाइज, और एक है जन्नती, माय पैराडाइज, द पैराडाइज ऑफ अल्लाह। या अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना में जिसका तज़किरा फरमाया, वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, वदखुली जन्नती, ओ बिलीवर इंटर इन माई पैराडाइज। जन्नती है कुरान में, जन्नत की इजाफत है या मुतकल्लिम की तरफ, जो अल्लाह जल्ल मजदहु। तो जब फरमाया कि मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, तो ये गुड न्यूज, ये बिशारत, ये मुश्ताए जान फैजा उनके लिए है जिनकी जुबान पर सुबह शाम मुस्तफा के हसीन होते हैं, मुस्तफा के जमील तस्किरे होते हैं, जिनको अल्लाह पाक ने सूरह फजर में बहुत डिटेल से मेंशन किया। अब जन्नती इसलिए फरमाया कि चूंकि मेरे महबूब के तस्किरे से, मेरे महबूब का नाम सुबह शाम इनकी जुबान होता, ये दीवाने ये मस्ताने ये हुजूर का नाम सुनकर तड़प जाने वाले, मचल जाने वाले, मुस्तफा के नाम पर आंसू बहाने वाले, रोने वाले, हुजूर सलाम के हसीन नाम पर झूम जाने वाले, तस्किरे मुस्तफा को सुनकर, तस्किरे हुस्ने मुस्तफा को सुनकर, तस्किरे जमाले मुस्तफा को सुनकर, तस्किरे कमाले मुस्तफा को सुनकर, अव्वलियत नूरे मोहम्मदी के तस्किरे सुनकर, जमाले नूरे मोहम्मदी के तस्किरे सुनकर, कुर्ब इलाही के तस्किरे सुनकर, आंसू बहाने वाले और ये हसीन तस्किरे सुन के तड़प जाने वाले, मचल जाने वाले आशिक, चूंकि सुबह शाम इनकी जुबान पर मेरे महबूब का नाम है, इसलिए फरमाया कि मेरी जन्नत में दाखिल हो गया। इसको आला हजरत ने बयान किया, फरमाया मैं तो तुझे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी हूं, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सो वो लोग जो इन हसीन तस्करों से मुनकर महरूम है, और फिर जुल्म ये है कि फतवे लगाते हैं, इसलिए मैंने कहा किसी ऐसे मुल्ला के फतवे को न सुनना जो मकीरे गुंबते खजरा करे, जो ताजदारे कायनात से आपका ताल्लुक तोड़े। इस हवाले से अल-क़ौलुल बदी में ये लिखा सैयदुना अबू हफ्स कागजी अलैहि रहमतुल बारी,

इस खास मौके के लिए पाकिस्तान से तशरीफ लाए डॉक्टर कारी इकरामुल्ला मोहसिन दामत बरकतुमालिया मारूफ कारी कुरान के तिलावत से भी आप अपने ईमान को ताजगी बख्श सकेंगे। कुरान रीडिंग कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले जुम्मा 11 सितंबर रात 8:30 बजे एमबीसी 9 पर देखिए बराह रास्त नशरिया। और इसके अलावा चंद और ऐलानात समाप्त कीजिए। इंशाल्लाह कल लिटिल दे विल होल म्यूनिसिपैलिटी ऑफ पोटली में दिन के 1:30 बजे से शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा मोहतरमा इशरत तस्नीम की सरपरस्ती में एक ख़ास महफिल का एहतमाम किया गया है। ये महफिल लेडीज़ महफिलनात एसोसिएशन क्यूपिप की जानिब से और दिगर लेडीज़ एसोसिएशन के तावुन से के कोलाबोरेशन से मुनाकिद की जा रही है महफिल। और उसके बाद इतवार 13 सितंबर को चौकोल एंड चाय रेस्टोरेंट सुपरमार्केट बुबासे में के ऑपोजिट में दिन के 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, उसके बाद आफ्ताब इस्लाम मस्जिद सैंपिय में मंगल 15 सितंबर को दिन के 10 बजे, ट्यूसडे यानी कि मंगल 15 ही को नूर मदीना होल नोवेल फॉन्स में दिन के 1:30 बजे, और जुमेरात 17 सितंबर को अब्दुल रजाक मोहम्मद होल फिनिक्स में दिन के 1:30 बजे, और इतवार 13 सितंबर से रोज़ाना मजलिस गौसे पाक की ख़ास महफिल दारुल उलूम मजलिस रज़ा की ब्रंच आबिद गुलाद पोटली में मोहतरमा अलीमा सैयदा उनिजा फातिमा की सरपरस्ती में किया जाएगा। और जैसा कि मालूम ही है कि आज 13 से 17 साल के बीच के उम्र के बीच नौजवान अपने अपने अंदाज में तिलावत कलम पाक फरमाएंगे। कुरान रीडिंग कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले आज इस्लामिक कल्चरल सेंटर में रात 8:30 बजे ये प्रोग्राम एमबीसी 9 पर लाइव टेलीकास्ट होगा। और इसी के मुतालिक रात 8 बजे से यानी एमबीसी 9 चैनल पर रात 8 बजे आप देख सकेंगे ख़ास प्रोग्राम रोड टू फिनाले, यानी कि जो फिनाले होगा जो फाइनल होगा उसके उससे पहले एक ख़ास प्रोग्राम और बराह रास्त 8:30 बजे फाइनल। ये रहे चंद ऐलानात, आइए मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़े गए खुतबे की सदामंदी समाप्त कीजिए।

मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत दिल की शान है। उनकी सीरत ही हमारी ज़िंदगी की पहचान है, और उनका ज़िक्र हो तो दिल को सुकून मिलता है। उनकी सुन्नत से हर रास्ता रोशन लगता है, और दुनिया की हर खुशी एक तरफ मोहब्बत मुस्तफ़ा, एक तरफ अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत रसूल और उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सामीन, अभी आप थोड़ी देर पहले मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़े गए खुतबे की रिकॉर्डिंग अभी आप समाप्त कर रहे थे। इस वक्त हम रीडो मोर्शिद से आपसे मुखातिब हैं। 4:54 हो रहे हैं। पेश खिदमत है ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

और गजल रेडियो मॉरिशस पर। मॉरिशस पर रेडियो मॉरिशस पर। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो मॉरिशस की लहरों पर गीत और गजल कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ कुछ ऐसी सुनी अनसुनी गजलों के साथ। आज के इस कारवां में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक हम आए हैं आपका साथ देने के लिए। तो इस हसीन शाम को कुछ ऐसी बेहतरीन गजलों के साथ, कुछ बहुत ही प्यारी गजलों के साथ और शायरियों के साथ हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं हमारी ये पेशकश आपको ज़रूर पसंद आएगी। किसी ने क्या कमाल लिखा है कि आवाज़ तेरी मानो सुकून का दूसरा नाम है, मुस्कान तेरी मानो राहत का दूसरा नाम है। सब्र पर निहारता हूँ मैं माँ ओ सितारों का, तेरा ही चेहरा जैसे चांद का दूसरा नाम है। मिल न सके अगर तेरी मोहब्बत मुकद्दर में, ये दोस्ती ही शायद इश्क का दूसरा नाम है। दीदार यार भी किसी रहमत से कम नहीं, दीदार यार भी किसी रहमत से कम नहीं। तेरी हर एक बात जैसे नशे का दूसरा नाम है। तू साथ ही हो तो जिंदगी गुलशन की महक की तरह उठे, तेरा पिछड़ना

जानू सहारा का दूसरा नाम है। तेरे बिछड़ने का मानो सहरा का दूसरा नाम हो। तेरे ख्याल से ही रोशन है शामे धोरा की, वरना हर एक घड़ी अंधेरों का दूसरा नाम है।

शाम ने मैखाना सजाया है कि दुनिया के ठुकराए हुए लोग आते होंगे जामे शराब में अपने गम डुबोने के लिए। मगर फरेबे मोहब्बत है कि नहीं भूलता। दौर चलने दो, मत देखो भीगी हुई रात की तरफ, वरना चिरागों की मध्यम होती हुई लौ जिंदगी के मसाइल फिर याद दिला देगी।

और गजल कार्यक्रम। दोस्तों, कुछ ख्वाब इस तरह से बुनना चाहती हूँ, कुछ ख्वाब इस तरह से बुनना चाहती हूँ, चाहत के गीतों को सुनहरे धागे में पिरोना चाहती हूँ। क्या पता जन्नते जहाँ मुकम्मल हो जाए, खुद को हर गीत मेरा मंजूर हो जाए। तकदीर का मेरा हर पन्ना यूं ही संवर जाए, तकदीर का हर पन्ना मेरा यूं ही संवर जाए, जीवन का पल सोने पर सुहागा हो जाए। डूबती कश्तियों को तिनके का सहारा हो जाऊं, रूह को मिले सुकून ऐसी इबादत हो जाऊं, इंसानियत के सैलाब का बहता किनारा हो जाऊं, बुराइयों के खिलाफ ऐसी कट्टर बगावत हो जाऊं। गर मिल जाए ऐसी तेरी सोहबत ऐ खुदा, तेरी पाक नजर का बुलंद सितारा हो जाऊं, बस एक वो नजारा हो जाऊं।

गीत और गजल के इस कार्यक्रम में कुछ शायरियों के साथ अंदाजे बयां करते हुए अहमद फराज साहब की लिखी हुई ये नज्म कि सुना है लोग उसे आंख भर देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर कर

कर देखते हैं। सुना है बोले को बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बाह में फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती है, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र हश्र है उसकी गजल सी आँखें, सुना है हश्र है उसकी गजल सी आँखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्ज़ाम धर के देखते हैं।

गीत और गज़ल के आज की इस हसीन महफिल में कुछ ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन गज़लों के साथ, गीतों के साथ आपका दिल हम लुभाते जा रहे हैं। आइए एक बार फिर ग़ुलाम अली साहब की आवाज़ में लिखी हुई ये नज़्म, गाई हुई ये नज़्म साथ मिलकर सुनते हैं।

अर्ज किया है, क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। प्यासे रह जाते हैं जमाने के सवालात, किसके लिए जिंदा हूँ बता भी नहीं सकता। घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूँ कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता।

हसीन शाम को बस यहीं पर रोकने का समय हो चला है। हमारा बस चले तो हम बस यूं ही प्यार भरे प्यार भरे नज़में और प्यार भरे गज़ल आपके लिए बस यूं ही चलाते रहे, पर बस समय का तकाजा है और इसी के साथ आपने दिल से हमारा साथ दिया। तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए बस हमें दीजिए इजाज़त, हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक और नए कार्यक्रम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और शुभ संध्या आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम की ठीक 6 बजे हैं।

11 सितंबर 2026 सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुर्खियां इस प्रकार है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई

0: दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं, हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद। दवाओं की कमी के क्या कारण है और मरीजों के लिए क्या समाधान उपलब्ध, इसके बारे में जानेंगे। देश में कम कार्बन उत्सर्जन और सड़कों पर ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें, ऐसा बदलाव तेजी से लाने के लिए निजी ऑपरेटरों को बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत एक इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गणेश चतुर्थी पर्व के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं और श्रद्धालु बप्पा को अपने घर लाने की तैयारियां कर रही हैं। लोगों को पर्यावरण प्रिय मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते मोक्ष सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने कार्यशाला का आयोजन किया। विदेशी समाचारों में 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर आतंकवादी हमले किए गए थे। 2500 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 50 साल बाद आज भी इसकी दर्दनाक यादें दुनिया भर में लोगों की जहन में जिंदा। एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज के इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में 9 से 100 दवाइयां उपलब्ध नहीं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ये संख्या लगभग 50 है। हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद हैं। परिवहन की बात करते हैं। देश में कम कार्बन उत्सर्जन और सड़कों पर ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें, ऐसा बदलाव तेजी से लाने के लिए निजी ऑपरेटरों को बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत एक इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के समर्थन से प्रोमोटिंग लो कार्बन इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट इन मॉरिशस परियोजना के अंतर्गत ये वित्तीय सहायता जल्द ही बढ़ाए जाने का भी विचार है। दैविक राजकुमार, करुणा लालू।
1: 116 सार्वजनिक और निजी इलेक्ट्रिक बसें फिलहाल हमारी सड़कों पर चलती हैं। ये संख्या प्रमोटिंग लो कार्बन इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट इन मॉरिशस परियोजना के निर्धारित लक्ष्य से काफी ज्यादा है। निजी बस ऑपरेटरों से इसी दिशा में ज्यादा निवेश करने की मांग की गई है। मंत्री उस्मान महमूद कहते हैं, बजट में सरकार ने बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए वृद्धि दी है। ये सरकारी फंड बस मालिकों को अपनी बसें बदलने के लिए सहायता करता है। यदि इलेक्ट्रिक बस लेंगे तो 30% दिए जाएंगे, यानी कि अधिकाधिक 3.5 मिलियन रुपए, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है। UNDP 3.75 मिलियन डॉलर उपलब्ध करा रहा है, जिससे इस सब्सिडी को बढ़ाया जा सके। यदि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करेंगे अपने फोटोवोल्टाइक पैनल के साथ, तो अतिरिक्त पैसे मिलेंगे। इस पर काम हो रहा है। ये 100% पर्यावरण प्रिय होगा। सार्वजनिक और निजी परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने से मॉरिशस को कई फायदे होंगे।
2: दिस इनिशिएटिव इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू डिलीवर सेवरल।
1: UNDP की आलका भाटिया कहती हैं, इस पहल से मॉरिशस में इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में गति आएगी और स्वच्छ ऊर्जा से चार्जिंग करने के ढांचे को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता की हवा है और बस मालिकों तथा यात्रियों के लिए भी बेहतर अनुभव होगा। इस सेक्टर के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया कानून तैयार किया जा रहा है। भूमि परिवहन मंत्री कहते हैं, बस सर्विसेज बिल एक गेम चेंजर होगा। मॉरिशस जैसा देश जो प्रति साल बस उद्योग के लिए 4 बिलियन रुपए खर्च करता है और जो प्रतिदिन 4,50,000 यात्रा के लिए जिम्मेदार हैं और जिसके 22,000 बसें हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं था, ये स्वाभाविक नहीं। जहां तक सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाने का सवाल है, ये परियोजना 2028 में पूरी होगी। इस वास्ते 5.6 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 262 मिलियन रुपए निवेश किए जा रहे हैं।
0: बंदरगाह में जहाज़ों के लिए सेवाएं बेहतर करने की दिशा में आधुनिकीकरण के

तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन के लिए मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी ने मैरिटाइम सिंगल विंडो नामक एक नया मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बंदरगाह के विभिन्न सेवाएं एक साथ लाएगा। इस प्रणाली से बंदरगाह को समुद्री यातायात में

0: 4,200 जहाज, 7,80,000 कंटेनर और 1.3 लीटर ईंधन। 2025 के जुलाई महीने और 2026 के जून महीने के बीच बंदरगाह में ये गतिविधियां दर्ज।
1: MSC Alina पोर्ट कंट्रोल चैनल 14।
0: 3 वर्षों से मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी इस डिजिटल प्रणाली VCS का सहारा ले रहा है ताकि बंदरगाह प्रक्रियाओं में काफी समय बच जाए। ईमेल्स का इस्तेमाल समाप्त, जहाजों का आना जाना डिजिटल तरीके से संचालित। बहुत जल्द सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा और ये बनेगा मैरिटाइम सिंगल विंडो, एक ऐसा मंच जो MPA की अन्य सेवाओं में एकीकृत हो जाएगा। मॉरिशस पोर्ट अथॉरिटी के असिस्टेंट पोर्ट मास्टर कैप्टन इमरान महमूद दौलत ने कहा, एक मैनेजमेंट पार्किंग स्लॉट होगा हर एक जहाज के लिए। मैरिटाइम सिंगल विंडो में वेसल क्लियरेंस सिस्टम भी शामिल, सामानों को उतारने, मैले तेल निकालने, कचरों को भी हटाने में आसानी होगी। कभी कभी फायर कवरेज की मांग भी की जाती है, ईंधन लेना पड़ता है, रखरखाव के काम भी करने होते
2: हैं।
0: ये डिजिटलाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन की जरूरतों को भी पूरा करता है। 2024 के जनवरी महीने से सदस्य राष्ट्रों को मैरिटाइम सिंगल विंडो का प्रयोग करना चाहिए। इससे जहाजों से जुड़ी जानकारियों का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आदान प्रदान किया जा सकेगा और विकेंद्रित भी किया जा सकेगा। पोर्ट ऑपरेशंस एंड कंसेशन की निदेशिका अनुमिता सिबालक ने कहा, यहाँ पर बहुत चीजें जमा करते हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स और बिलिंग पर भी। इस डिजिटल सिस्टम से एक ही बार एंट्री करते हैं और बाकी अपने कंप्यूटर पर सीधा प्राप्त हो जाता है। इससे समय बच जाता है, संसाधनों की भी बचत होती है, कार्यों में भी तीव्रता आती है, मौजूदा संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, चाहे ह्यूमन हो या कैपिटल संसाधन हो, ग्राहक भी संतुष्ट होंगे। पोर्ट लुइस में ट्रांजिट पर अतिरिक्त जहाजों के आने की उम्मीद है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के चलते। ऐसी स्थिति से बंदरगाह सिस्टम का महत्व बढ़ जाता है। 2027 के अंत तक धीरे धीरे इसे कायम किया जाएगा। इससे पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं है। हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद हैं। इन दवाओं की कमी के क्या कारण हैं और मरीजों के लिए क्या समाधान उपलब्ध हैं, इस पर सहा ओनो की रिपोर्ट पेश है, विवरण याचना मिश्रा।
3: रोज रोज की दवाइयां ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। निजी फार्मेसीज में कई ऐसी दवाइयां हैं जिनकी मांग ज्यादा है, लेकिन जो मिल ही नहीं रही। ऐसी स्थिति जो अब फार्मासिस्ट के लिए आम सी हो गई है। त्वचा, मधुमेह या रक्तचाप की दवाई की कमी है। दवाई जैसे ही मिलती है खत्म हो जाती है, लोगों को जगह जगह जाना पड़ता है। साल की शुरुआत से ये समस्या हो रही है और स्थिति सुधर ही नहीं रही। मंत्रालय के अनुसार निजी क्षेत्र में 90 से 100 दवाइयां उपलब्ध नहीं और कारण है विदेशी सप्लाईज में कठिनाई। सप्लायरों और उत्पादकों के पास दवाई की पैदावार के लिए इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यूक्रेन युद्ध आदि के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हैं और यूक्रेन, चीन जैसे देश ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं। इन्हें बनाने में ही देरी हो रही है।
4: Et peut-être personne n'a pas réalisé qu'Ukraine, la Chine, l'Inde, c'est un gros producteur de matières premières. Nous trouvons-nous dans une période que ce produit-là n'est pas produit à temps.
3: इसका संबंध सार्वजनिक क्षेत्र से भी है, जहां करीब 50 दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक हैं, सप्लाई प्रणाली में बाधाओं के कारण। मंत्रालय आश्वस्त करता है, ब्रांड्स की कमी का ये अर्थ नहीं कि इलाज नहीं हो पाएगा। इनकी जगह पर अन्य दवाइयां भी उपलब्ध हैं।
4: Sa confiance que vous gagnez avec un produit là, vous pensez c'est ça qui peut soigner.
3: जब किसी दवाई से कोई ठीक होता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि यही ब्रांड सही है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि दवाई का मॉलिक्यूल जरूरी है न कि ब्रांड। डॉक्टर

0: को भी मरीजों को आश्वासन देना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट हैं, ब्रांड बदल भी जाए तो भी दवाई में वही मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं।
1: इनन सब्स्टिट्यूट et nous bise capable de donner confiance à sa patient là qui malgré pendant combien de mois te pas peut te prendre ça là là te stabiliser le tlala ce nom différent mais il contenait même produit.
0: अधिकारी मरीजों से मांग कर रहे हैं कि दवाई की कमी के कारण अपना इलाज न रोकें, इसके बदले डॉक्टर की सलाह लेकर सब्स्टिट्यूट यानी अन्य विकल्पों के साथ इलाज जारी रखें।
2: मॉरिशस में हर दिन कुल मिलाकर करीब 5 लाख डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। वित्तीय सेक्टर से जुड़ी ऐसी गतिविधियां आजकल हम बदलाव के दौर से गुजर रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मॉरिशस एक इलाकाई टेक्नोलॉजी हब बनने की राह पर है। पेमेंट सॉल्यूशंस में माहिर हाईटेक पेमेंट सिस्टम्स नामक कंपनी ने 8 सितम्बर को फ्लिकॉफ्लाक में इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। सिल्वाना पारिमामन, याचना मिश्रा।
0: दुकानों में QR कोड स्कैन करना, सुपरमार्केट में कार्ड से पेमेंट करना, अपना वेतन सीधे बैंक अकाउंट में प्राप्त करना, पिछले कुछ सालों से डिजिटल टेक्निक मॉरिशनों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है और आज इसका महत्व और बढ़ रहा है। मॉरिशस में हर दिन 5 लाख डिजिटल पेमेंट्स किए जाते हैं। आज दुनिया में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में औसतन हर साल 140 से 150 मिलियन डॉलर का कारोबार होता है। सभी क्षेत्र इससे जुड़े हैं, जहां नकद को डिजिटल रूप दिया जाता है, जहां वस्तुओं और सेवाओं की खपत होती है, वहां हम समाधान ला सकते हैं। ये कार्यशाला मोरक्को की हाईटेक पेमेंट सिस्टम्स कंपनी द्वारा आयोजित की गई। कंपनी के अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल पेमेंट के बिना डिजिटल अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है।
3: Maurice a prouvé sa capacité à devenir un hub financier dans la région.
0: भुगतान उद्योग वित्तीय उद्योग का हिस्सा है। मेरा मानना है कि अगला कदम एक तकनीकी हब होना चाहिए। दुनिया में डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा 15 से 17% है, अफ्रीका में 5 से 6%। इस क्षेत्र में अभी काफी विकास की गुंजाइश है और ये विकास मॉरिशस से शुरू किया जा सकता है। पेमेंट उद्योग अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक में से गुजर रहा है। दुनिया के साथ साथ मॉरिशस में भी रियल टाइम पेमेंट एक आदत बन गई है। मास्टर कार्ड कंपनी के अनुसार इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल टेक्निक को अपनाने और वित्तीय समावेशन के कारण अफ्रीका में डिजिटल पेमेंट का बाजार 2030 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।
2: गणेश चतुर्थी पर्व से पहले बेलेगवेसेश के पुष्पलोचनाया मंदिर में 150 बच्चों और युवाओं ने भगवान गणेश की प्रतिमाएं अपने हाथों से बनाई। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन और आर्ट्स इंस्पायर के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य युवा पीढ़ी को इस परंपरा से जोड़ना है, साथ ही पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल मिट्टी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना भी है। पूजा अर्चना के लिए इन प्रतिमाओं को घर ले जाया जाएगा, जिसके बाद इनका विसर्जन किया जाएगा। रिपोर्ट आस्था गोविंद चितमन के साथ।
4: मिट्टी का एक गोला, सृजन में तल्लीन नन्हे हाथ और कल्पनाओं की उड़ान धीरे धीरे एक आकृति आकार लेती है और सामने आता है भगवान गणेश का सौम्य स्वरूप। पुष्पलोचन्य मंदिर में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में आयोजित इस कार्यशाला में 150 बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाने की विभिन्न विधियां सीखी। साथ ही प्रत्येक प्रतिभागी ने अपनी कल्पना के अनुसार अपनी मूर्ति को एक विशेष रूप और भाव प्रदान किया।
5: आपने क्या बनाया है?
6: मैंने गणपति जी की मूर्ति बनाया, मैं इसकी पूजा करना चाहती हूँ। गणपति पप्पा मोरिया।
7: हम यहाँ पे माटी से मूर्ति बना रहे हैं गणेश जी के, जो नदियों में पोल्यूशन नहीं करता और मछलियों को नहीं मारता है और अच्छे से नदी में घुल जाता है।
5: तो आपने क्या बनाया, हमें बताइए अपने डिजाइन के बारे में।
7: यहाँ पे हमने बाल गणेश बनाया, इनके हाथ पैर और मोदक हमें बनाना सिखाया गया है। हमारे लिए हमारे गणेश जी एक दोस्त है और वो हमारे सारे

0: दुख खत्म कर देते हैं। चतुर्थी के दिन हम इसको समंदर में या फिर नदियों में इसका विसर्जन करा देंगे।
1: मूर्ति बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। जब मन लगा कर करते हैं तो बहुत अच्छा और आसान दिखता है। मैंने एक गणेश मूर्ति बनाई है और उसके साथ मैंने मोदक और लड्डू उसके बाजू बीच लगाए, क्योंकि गणेश भगवान को माना जाता है कि उसे बहुत मिठाइयाँ बहुत पसंद है।
2: किसी भी शुभ कार्य के आरंभ से पहले भगवान गणेश की वंदना की जाती है। वे बुद्धि, विवेक और जीवन की बाधाओं को दूर करने वाली शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। मूर्ति निर्माण के लिए मिट्टी का चयन करना पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। ये प्राकृतिक सामग्री विसर्जन के समय सरलता से जल में विलीन हो जाती है, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित किया जा सकता है।
3: सब टेक्निक बता रहे हैं कैसे मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं और उसके साथ कैसे काम करते हैं। मुश्किल कुछ नहीं था, बच्चे लोग अब समझ गए कैसे करने के लिए। और हम बदला रहे हैं जो आर्ट्स इंस्पायर का जो टीम है यहाँ पर।
4: हमारा जो लक्ष्य है फेडरेशन का, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, वो हमारे मंदिर की ओर आए, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म है फिर से उन लोगों का रुचि फिर से भरे।
2: कार्यशाला के दौरान माता पिता भी बच्चों का उत्साह बढ़ाते दिखाई दिए। कहीं वे उनके कार्य को निहार रहे थे तो कहीं मूर्ति को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन कर रहे थे।
5: मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक अध्यापिका हूँ और हमारी संस्कृति को और आगे बढ़ाने के लिए, हमारी नई पीढ़ी को जागृत करने के लिए कि हमारी संस्कृति क्या है।
6: आज बच्चों ने सभी बच्चों ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। इससे देख कर लगता है कि बच्चों में एक कल जो उनके अंदर जो एक कला है उनको उभारने का एक अच्छा अवसर दिया गया है बच्चों को। बच्चों का जो ध्यान आजकल जो भटक रहा है आज अच्छे काम में लगाया जा रहा है उनका ध्यान, जिससे उनकी कला और भी निखर कर सामने आएगी। इसके
2: मूर्ति निर्माण से लेकर विसर्जन तक इन बच्चों और युवाओं ने इस परंपरा को केवल जाना ही नहीं बल्कि अपने हाथों से गढ़कर उसे आत्मसात भी किया।
7: गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल के लिए कुछ खास यादें ताजा हुई। उन्होंने अपने बचपन के स्कूलों का दौरा किया जहां कुछ स्थल शशि सागर राम गुलाम की स्मृतियों को समर्पित हैं। इस महीने मनाई जाने वाली राष्ट्रपिता की जयंती के संदर्भ में ये गतिविधि आयोजित की गई। मकसद रहा उनके विचार और मूल्यों को नई पीढ़ियों तक बढ़ाना। शशि सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के संदर्भ में आज रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर जोन 1 के छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रपिता से जुड़े इतिहास और विरासत पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर। 25 साल हो गए हैं 11 सितंबर 2001, न्यूयॉर्क वासियों के लिए दिन की शुरुआत सामान्य रूप से हुई थी। लोग हमेशा की तरह कामकाज में लगे थे जब सुबह 8:46 पर सब कुछ अचानक बदल गया। अदिति अवतार की ये रिपोर्ट पेश है।
8: कुछ ही मिनटों में ये खबर दुनिया भर में फैल गई। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ टावर में जाकर क्रैश कर गई। मात्र 17 मिनट बाद ही एक दूसरा विमान साउथ टावर से जा टकराई। मिनटों में ये बात स्पष्ट हो गई अमेरिका पर आतंकी हमले हुए हैं। आतंकवादी गुट अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 व्यापारी उड़ानें हाईजैक की थी। अमेरिकन एयरलाइंस का एक तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी के पास पेंटागन में गिराया गया, जबकि दूसरे हमलों के बारे में सूचित होने के बाद एक चौथे विमान के क्रू सदस्य और यात्री आतंकवादियों से भिड़े और विमान पेंसिल्वेनिया में एक खाली इलाके में क्रैश कर गया। 9:59 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर ढह गया और उससे 29 मिनट बाद नॉर्थ टावर भी ध्वस्त हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें धूल और मलबों में तब्दील हो गईं। हताहत मची और हजारों लोग फंस गए। मारे गए लोगों में मुख्य रूप से ऑफिस के कर्मचारी, यात्री, दमकल कर्मी, पुलिसकर्मी और अन्य फर्स्ट एडर शामिल रहे। 9/11 के इन हमलों में कुल 2,977 लोग मारे गए। इनमें 90 देशों के नागरिक शामिल रहे, जिससे दुनिया भर में शोक की

0: लहर चली। इस विनाश के बीच कुछ असाधारण साहस के दृश्य सामने आए। बचावकर्मी बिना अपनी जान की परवाह किए घटनास्थल पर लोगों को बचाने में डटे रहे। कई महीनों तक मलबे हटाने और लोगों को निकालने का काम जारी रहा। हालांकि बीतते समय के साथ जीवितों की संख्या घटती गई। सितंबर 11 की तारीख ने दुनिया में वैश्विक राजनीति को एक नया आयाम दिया। सभी देश आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष तेज करते दिखे। अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अलकायदा के खिलाफ अफगानिस्तान में भीषण सैन्य कार्रवाई शुरू की, जब तालिबान ने अलकायदा के अधिकारियों को अमेरिका के हवाले करने से इनकार किया। 25 साल बाद सिर्फ समय बीता है। इस दर्दनाक हादसे की पीड़ा और उसकी यादें आज भी लोगों की जहन में जिंदा हैं। 11 सितंबर को न सिर्फ उस भीषण हमले के लिए याद किया जाता है, बल्कि ये मौका है कई लोगों के साहस को नमन करने का। एक ऐसा दिन जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल डाला।
1: 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन लग रहा है। कई अफ्रीकी राष्ट्र नेता, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी खास बैठकें निर्धारित हैं।

0: मौसम संबंधी जानकारियां याचना मिश्रा के साथ।
1: पूर्व दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा मस्करीन्स के दक्षिण में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह पूर्वी दक्षिणी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद भी ऊंचे इलाकों पर मौसम बरसाती रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी समंदर में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 13 से 16, अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 17 से 20 और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:09 पर, शाम को सूर्यास्त 6:03 पर होगा।
0: मौसम संबंधी नई जानकारियों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगी फैजन को। कुछ ही समय में शोक समाचार। रागुलेन बॉम्बू में 67 साल के 67 के श्रीमती गीता काली पैदाशी नाम गुरुदयाल, जो मंदिरा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर रागुलेन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM, क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। कोमलन रोड नोवेल फ्रांस में 72 साल के 72 की श्रीमती सोसिल जोगी, जो सोबाउद्दीन नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर कोमलन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रामधानी लेन पोंफाले में 43 साल के 43 के श्री जसबीर रामधानी, जो गासों नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे कल दिन के 11 बजे उनके पिता श्री लोल रामधानी के घर रामधानी लेन पोंफाले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। एवेन्यू डेपिने कैटरबोर्ड में 78 साल के 78 की श्रीमती हेमवती खेदन पैदाशीना रामपासाद,

जो सोना नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री राज केदन के घर एवेन्यू देपी ने कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदेगाद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। टैगोर रोड घोंगुब में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भानुमती भगवत पैदाशी नाम खंदर सिंह, जो भानुमती नाम से भी जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के दो बजे उनके घर भगवत टैगोर रोड घोंगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंगुब के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में विनोबा भवन शाखा नंबर 4 रविवार 13 सितंबर को सुबह 8:30 बजे सियाकोंस्टांस सैंपिया के विनोबा भवन में यज्ञ और सत्संग का आयोजन कर रहा है। रविवार 13 सितंबर को सुबह 8:30 बजे हाईलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर नाडेस रोड हाईलैंड्स फिनिक्स द्वारा यज्ञ का आयोजन कर रहा है। सोमवार 14 से 20 सितंबर को गणेश चतुर्थी के संदर्भ में ग्लेनपॉक वाकवा के माराथी कल्चरल सर्कल भवानी मंदिर द्वारा प्रेमोत्सव चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में मेलरोज के श्री गजानन सरस्वती मंदिर मोका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मॉरिशस मराठी मंदाली फेडरेशन के सहयोग से सोमवार 14 सितंबर को 6:00 बजे गणेश मूर्ति स्थापना, रात के 8:30 बजे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 5:00 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में पाल्मा कैथोबोन के देवानंद और अविनाश गनक परिवार द्वारा मंगलवार 15 सितंबर से 20 सितंबर तक गौरी पूजा का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में बोबासा स्वस्तिका कमेटी द्वारा सोमवार 14 सितंबर को शाम 3:30 बजे कलश स्थापना और मंगलवार को 15 सितंबर को 11:30 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में सोमवार 14 सितंबर को रात्रि के 7:30 बजे गणेश पूजा और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 3:00 बजे सैमोत्या सुरफेरिनो में विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में कौगाबो के सनातन और कौगाबो काली माता मंदिर के सहयोग से सोमवार 14 सितंबर को शाम 4:00 बजे मूर्ति स्थापन और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 4:00 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है।

व्रत दीक्ष महोत्सव प्रारंभमवुतुन्नदी अयिते मीरंदरू बागा तयारु चेस्तुन्नारनी अनुकुंटुन्नानु रेपु चाला मंदिराल्लो कलश स्थापन पूजलु जरुगुताई अयिते मीरंदरू वेल्ली ई व्रत दीक्ष कालान्नी एंतो भक्ति भावंतो जरुपुकोंडी।

श्री वेंकटेश्वर स्वामीवारी दिव्य नामस्मरण तो सागिन इरोजु स्वराल वेदिक इकड़ितो मुगिस्तोंदी वाड़ी आशीसुलु मी कुटुंब सभ्युलंदरिकी एल्लप्पुडू उंडालनी मी इंट्लो आरोग्यम आनंदम शांति सौभाग्यम निंदालनी कोरुकुंटुन्नामु। अयिते नेटी कार्यक्रमं पूर्ति अवुतुन्नदी మీ చెల్లమ్మ గిరిశాలినికి సెలవు ఇవ్వండి। ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు।

समस्त सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। तो चलिए आपका अभिवादन करते हैं इस कार्यक्रम में। रात के हम सफ़र हमेशा हमारे साथ निभाने के लिए धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको पता है कि कुछ ही दिनों में हम गणेश चतुर्थी पर्व मनाएंगे। तो चलिए शुरुआत जो है हम करने वाले हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर। जो भी कार्य हम करते हैं ताकि कोई भी बाधा न हो तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लेते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रही है।

श्रोताओं, गणेश चतुर्थी हमें ज्ञान, विनम्रता, धैर्य, एकता और सकारात्मक सोच का संदेश देती है। ये पर्व लोगों को परिवार और समाज के साथ मिलकर आनंद, भक्ति और सद्भाव से रहने की प्रेरणा देता है। तो आइए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

श्रोताओ, भगवान गणेश के स्वरूप का भी विशेष अर्थ है। उनका बड़ा सिर बुद्धि और समझ का प्रतीक है। बड़े कान ध्यान से सुनने की प्रेरणा देते हैं, छोटी आँखें एकाग्रता का संदेश देती है, और उनकी सुर अनुकूलन और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। उनका वाहन मूषक ये संदेश देता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण रखना।

गणेश चतुर्थी का उत्सव सामान्यतः एक दिन से लेकर 10 दिनों तक चलता है। अंतिम दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस अवसर पर लोग गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया जैसे जयकारे लगाते हैं। विसर्जन का अर्थ केवल प्रतिमा का विदा नहीं होता है, बल्कि ये भी माना जाता है कि भगवान गणेश भक्तों के दुख और बाधाएं अपने साथ ले जाते हैं और फिर अगले वर्ष वापस आते हैं। तो आइए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

श्रोताओं, गणेश चतुर्थी जो है हम बहुत ही धूमधाम के साथ मॉरिशस में और दुनिया भर में मनाते हैं। तो चलिए, भगवान गणेश की कृपा हम सब पर बनी रहे और इस पर्व के दौरान हम भगवान

और गणेश से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। तो श्रद्धापूर्वक हम उनकी पूजा अर्चना करने वाले हैं और तैयारियां जो है आपको पता है शुरू हो चुकी है। तो आइए कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये रेडियो मॉरिशस है। परवेज आपसे मुखातिब है। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी रहमत शफाए मशर मालिक दो जहां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्र के आप तमाम सामीन खैर व आफियत से हैं। जहां से भी आप हमारे साथ निभा रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। तो आइए मज़ीद सामीन, उर्दू नशरियात बनाम महफिल शब का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत हमद कलाम के साथ, जो हमारे दिलों को रूहानियत और सुकून से भर दे।

जो न था तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो है तो कुछ वजूद है, वो है तो सब जहां में है। या अल्लाह, तू पाक है अपनी तारीफ के साथ, तेरा नाम बड़ा ही बरकत वाला है, तेरी बुजुर्गी बुलंद बरतर है। मेरे नहायत वाजिब एहतराम सामईन, आप तमाम सुनने वालों को इस बाबरकत और पुरअमन नशरियात में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में सब्र व बर्दाश्त का वो समंदर नज़र आता है जिसने दुश्मनों को भी अपना गर्वीदा बना लिया।

शामिल मोहतरम, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफकत का क्या कहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ अपनों तक महदूद न थी, बल्कि उसका साया यतीमों, मिस्कीनों, खादिमों और यहाँ तक के बेज़बान जानवरों पर भी यकसान था। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सच फरमाया, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिल्म और रहम का कुछ हिस्सा अपनी ज़िंदगियों में ढालने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों को सुकून का गहवारा बनाए और हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए नरम कर दे। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगले मुलाकात तक परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

भोजपुरी तड़का में तुहार स्वागत करत हैं। जहाँ जहाँ हो बजा हमने के कार्यक्रम में जरूर साथ दिया जा, और हमने के कार्यक्रम में जो गाना सुने खोज बजा वो गाना की फरमाइश जरूर करिया जा। कथों तो कथों में सैंक पर सक बजा टेलीफोन करे, या फिर सक बजा हमने के कार्यक्रम में मिसाज भी भेजे सैंक दिस सैंक सैद से हो सैंक पर हमने के कार्यक्रम में भाग ले सक बजा अपन पसंद के गाना के फरमाइश मिसाज से सक बजा करे संदेश सक बजा भेजे। तो चला अभी पहला गाना तो लेके सुनवाई ला जा, और ये गाना हमने सब माता पिता के नाम करी जा और सब लड़का लोग के नाम भी करी जा।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में हमने प्रस्तुत करे थे जा ज्ञानमही पतलाल जी के गावल गाना और ज्ञानमही पतलाल जी के गावल ई गीत। ऐसे तो सब कोई पसंद करेला, बखिर अभी पसंद करे होला हवन संजय जी। संजय जी पीछे आप कैसे गाना मंगले हवन अपन सब दोस्त लोग के नाम।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: तो होशिला देवी रिसोल जी के गावा ले गो गणपति गाना हमने तहलक के खातिर बजावत है जा गणपति जी की वंदना करत हवन होशिला देवी रिसोल जी और ई गणपति वंदना हमने बजावत है जा रवि और कवि जी खातिर। रवि और कवि जी हवन दुगो भाई और उनकर माता जी सुदेवी उनकर खातिर गाना मांगत हवन। उनकर आप बहुत बहुत मंगल कामना देवत हवन और उम्मीद करत हवन कि गणपति बप्पा उनकर बेटा लोग पर बहुत कृपा करियन।

बिस्वानी दीपा जी के गावल गाना चला सुनी जा हमनी गमाठोला गाना और गमाठोला गाना तो बजे भी करब जा हमनी रणधीर जी के जन्मदिन जेबा स्त्रील के रणधीर जी अपन जन्मदिन मनावा था वन उनकर पत्नी नताशा उनकर बेटा शायान सोन श्रेया उनकर बेटी कुशल परिवार सब कोई मिल के और उनकर माता जी ललिता उनकर आशीर्वाद देवत हवन जा उनकर मंगल कामना देवत हवन जा उनकर भाई हवन अजय उनकर बहू जी आशना और बहिन आरती जीजा जी विकास और उनकर सब भतीजा भतीजी भगीना भगिनी लोग सब कोई मिलके उनकर जन्मदिन के मंगल कामना देवत हवन जा तो चला बिस्वानी दीपा जी के गावल ई गाना जो गमठोला बा उनकर जीवन में डाली ला जा उनकर अभी जो न माहौल बनता उकर में डाली ला जा तो गमठ करा जा जन्मदिन अभिनंदन रणधीर जी।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: भोजपुरी तड़का में चला बिल्कुल हमने जुबेदा होला गाना सुनी जा रहा हमारा हम तो हल जी के गावल गाना सुनी जा सुने ना जी गाना मांग ले हवन की ब्याज खोपा से ये गाना सुने ना जी अपन माँ केशी ना खातिर मांग ले हवन अपन नानी माँ खातिर अपन दादी माँ खातिर मांग ले हवन तो चला सुनी जा जुबेदा लुत लेके आए तो चला चढ़ी जा लुतु में

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में अभी चला हमनी सुनी जा बीच सीमा में जब पुलिस रोकेला तो काहे रोकेला, पुलिस तो रोकेला ताकि हमनी के सड़क पर सुरक्षा बनल रही। तो चला हमनी भी अपन अपन जिम्मेदारी निभाई ला जा और इस सड़क पर सुरक्षा बनैले रखे के हर तरह से कोशिश करी ला जा। गणेशन हरी जी के गावली गाना हमने बजाओ थे जा उर्मिला जी खातिर। उर्मिला जी गाना मंगले हो वन पिची वेजे से और ये गाना अपन पति राघव के नाम करत हवन। तो चला सुनी जा हमने सड़क सुरक्षा गाना। याद दिलाए दिला जा तो लोग के अभी थोड़ा घड़ी में एगो हमने क्विज गेम रखब जा, क्विज एगो प्रश्न करब जा तोहर से और तोहर खातिर एगो इंटरेस्टिंग इनाम भी रखल रही।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का में अभी बखत होल बा हमने के क्विज के अभी कब से बोलते हैं जाता होलो के कि ये कार्यक्रम में गो क्विज रखब जा तो चलो क्विज के बखत हो गल बा और ये क्विज प्रायोजित बा आशीषावत सर्कस के बगल से तो चलो अभी इतना तो बता दिला जाता होलो के जीते होला के बागातिल में जिन हुआ था आशीषावत सर्कस के दुगो एंट्री टिकट मिली तो लोग के तो लोग ने मतलब जीते हो ला के हमने के विजेता के जइया हो जा पर अपन पूरा परिवार के संगे गो यादगार एक्सपीरियंस रही तो खातिर जन्म मासिक रही थ्रिल रही ठहाका सब रही एगो शानदार सर्कट परफॉर्मेंस सर्कस के परफॉर्मेंस रही सियगजावाता जिन बगातेल में लगाता वो बिफे के और सुप के सांझ के 6 बजे से रही और सामदी और दिमास के दिन के 2:30 से सांझ के 5:30 लिख रही। अभी जे जस्ती जानकारी खोजब जा या फिर बुकिंग खातिर टेलीफोने करे खोजब जा तो नंबर है 5250941 5250941 5250943 एकरा कब्बो नहीं मिस बिल्कुल नहीं मिस करिया ये है एगो मैजिकल बड़ा सा शो ना चुकिया ये बड़ा मैजिकल शो के चला था हमने के इनाम के बारे में तो सुन लेला अब चला सुनी जा हमने के प्रश्न के उत्तर देवे खातिर चार

8028085 पर यानी कि 8295 पर टेलीफोनी करके हमने के जवाब दे हा जा चला सर्कस में एगो जगल के हा चला ये देखी जा आगे कि एगो जगल के हा जगला एगो सर्कस के ऊ व्यक्ति हा जे बहुत ही कुशलता से अपन दोनों हाथ से एगो चीज से दूसर चीज से तीसर चीज हवा में उछलते जाला और सब कोई के मनोरंजन करेला। तो एगो चीज से दूसर चीज से तीसर चीज उछलते उछलते ई सर्कस के बड़ा मनोरंजक बना देवेला। अब हमने के ई बतावा प्रश्न हमने के ई हा कि एगो जगला कौन चीज के प्रयोग करेला, एगो जगलिंग बॉल के या फिर एगो फुटबॉल बूट के। एगो जगला कौन चीज के जस्ती प्रयोग करेला, कौन चीज के प्रयोग करेला बल्कि एगो जगलिंग बॉल के उबिया फुटबॉल बूट्स के। हमने के जवाब द 402 8085 पर तो तोहर जवाब के इंतजार करत है। ये अच्छा सन प्यारा सन इंटरेस्टिंग सन इनाम पाए खातिर अभी फिलहाल तो चला हमने तोहरा खातिर प्रस्तुत करब जा आज के अगला गाना। हरि परसका नाग जी के गावल गाना है ई, अपन परी जैसन बहू के नाम करत हवन इंदिरा जी। इंदिरा जी रहे लना गुजबेल ई गाना अपन परिनियन बहू स्मिता के नाम करत हवन।

0: हमने के प्रश्न रहल कि एगो जगला कोंची के जस्ती प्रयोग करेला, कोंची के प्रयोग करेला बल्कि जगलिंग बॉल्स के कि फुटबॉल बूट्स के, और ही हमने के सही जवाब देवे खातिर या फिर गलत जवाब देवे खातिर हमने के संगे एगो श्रोता हवन, चले देखी जा कौन जवाब देवत हवन। ये हवन उमा जी क्यूपिप्स से। नमस्ते उमा जी।
1: नमस्ते सुरेखा जी, कैसे हो?
0: हम तो ठीक ठाक, बड़ी मस्त मस्त तोहर संगे हैं, तोहर बीच में हैं। तो उमा जी के पिप से बोला था, और हमने के बोला जन सर्कस बा देखे के खुशी रहेला।
1: हाँ
0: खुशी रहेला सर्कस देखे के।
1: हाँ

0: अच्छा तो बोले तो हमने के सवाल के जवाब कौन सी है एगो जगला कौन सी जस्ती सर्वी करेला जगलिंग बॉल की एगो फुटबॉल
1: एगो जगलिंग बोल ना
0: एगो जगलिंग बॉल ना
1: या वी
0: हाँ ये तो सही बोला था बधाई हो तारा सही जवाब मिलल
1: मेरे बकु धन्यवाद
0: उमा जी उमा जी उमा जी क्यों अभी
1: क्यूपिड से
0: हाँ क्यूपिड से अपन अभी तो हर एड्रेस ले वब जा फुल एड्रेस अभी तो हर नंबर पर ले वब जा अभी
1: हाँ
0: फोन नहीं रखिया दो मिनट
1: नहीं
0: के स्प्रे कर
1: रखा
0: अच्छा
1: ओके
0: उमा जी तो
1: ओके
0: बहुत बहुत बधाई है तोहरा
1: धन्यवाद जी
0: तो उमा जी के मिला था बागा तेल में जो ना और शीजा पाता सर्कस हुआ था और कदू को एंट्री टिकट और ये हो जा पर तो लोग भी सक बजा जाए जाए के तैयार रह जा अपन पूरे फैमिली के संगे संगे एगो यादगार एक्सपीरियंस रही तोहर खातिर जन में मासिक रही थ्रिल रही ठहाका रही शानदार सर्कस परफॉर्मेंस में सब तोहरा मिली सियक जवाता जो बगा तेल में लगाता वो हर बीफे के और सुप के सांझ के 6 बजे से रही और सामदी दिमास के दिन के 2 बजे से सांझ के 5:30 लेक रही और अगर जे और जानकारी खोजब फिर बुकिंग करे खोजब तो सक बच्चा टेलीफोन करे 5 2 5 0 9 4 3 पर सियक जवाता बहुत मस्त रही ना चुकिया जा ये बड़ा ही मैजिकल शो रही लड़का तो आज के हमने के श्रोता हवन उमा जी क्यों पिप से

तो हमने के खेल प्रतियोगिता कर ली जा और ये हमने के विजेता हवन उमा जी क्यू पिप से उमा जी सुने खुजत हवन गीत गवाए होला गाना बिजमावती संपत जी के गावली गाना चल हमने उमा जी के नाम करत है जा।

और चला बढ़ी जा भी 10 बजल बा और 10 बजे से 9 बजे से हमने शुरू कर रहे हैं जो अपन कार्यक्रम 11 बजे लग चली। अभी चलावत है जो हमने प्रकाश दुखी जी के गावली गीत और एक गीत है रवि जी के पसंद पर, रवि जी अपन माँ कविता के नाम करता वाने गाना और दादी माँ के नाम।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का.
3: भोजपुरी तड़का.
4: भोजपुरी तड़का में हमने पूर्णिमा फकीरा जी की गावाली को गाना प्रस्तुत करा था. पूर्णिमा फकीरा जी मंजल गायिका हवन और उनकर आवाज के गाना हमने प्रस्तुत करे थे. जानू अल्फोंस के गायत्री जी के पसीन पर उनकर बेटा अजय खातिर, मायबू के मामी कल्याणी मोहन खातिर, लॉन्ग माउंटेन के भाभी शकुंतला खातिर, नोवेल फ्रांस के सखी गीता बाई जी खातिर.

तो चला अब आगे बढ़ब जा। हमने अनीता जी खातिर बजाओ जाए को गाना, अनीता जी फ्लिकॉन फ्लैग से मंगले हवन गाना, महेन हरपाल जी के गावल गीत मंगले हवन आध्या खातिर और राज खातिर, और अनीता जी फ्लिकॉन फ्लैग से सब के शुभ रात्रि बोले हवन।

जयहर लाल जी के गावल मच्छी मरवा गाना हमने बजाओ थे जब अकवा के अबू जी के पसीन पर। अबू जी ये गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर, उनकर परिवार में हवन जा आफेज, असलम, आया, जायान, जाहिरा, कलाचोटी, रईस और ये अपन दोस्त अपी खातिर भी मंगले हवन गाना, उनकर पत्नी खातिर और ये रखी बाजी खातिर।

और अब चला चमेली होला गाना सुनी जाहनी सुनीता ननकू जी के गावल सुनीता जी गाना सुनंत जी के गावल गाना अमृता जी मंगले हवन पितो से अमृता जी गाना मंगले हवन अपन लैका लो खातिर सोनिया और परी खातिर बेटा विशान और पतो मीनाक्षी खातिर और पूरा गणेश परिवार खातिर।

घूमते घूमते तो चला हमने बकुआ पहुंच जाए राजा। बकुआ से फिसवानी दुमन जी मंगले हवानी गाना, एको गाना सुनीता ननकू जी के गावल तो चला। ई गाना तोहर नाम करे थे जस फिसवानी जी, और ई गाना तोहर बगल से तोहर बहिनी इंदिरा शारदा खातिर, सहेली नीला प्रतिभा खातिर, शोभा जी खातिर, और गीता गजाधर।

विनोद शिवदत्त के गावली गाना हाउ रिपीति पीमा होला गाना सुने खोजा था वन सुदेवी जी। सुदेवी जी गाना बाकुआ से मंगले हवन दीदी ललिता खातिर, कुशल फैमिली खातिर, दीदी सुनीता, दीदी शोभा, देवीना खातिर, मालिका के रामरतन परिवार, हृदय परिवार और कुवारू परिवार खातिर।

गीतमा हामीले बजाएत है जा सूरज शर्मा सजादा जी खातिर और ई गाना सूरज जी मंगले हवन अपन पूरा सजादा परिवार खातिर और विशेषर परिवार खातिर और ई गीत सुनत है जा हमने पूर्णिमा फकीरा जी के आवाज में।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: चलो भोजपुरी तड़का में हमने सब्जी दादी के बारे में सुनी जा। सब्जी दादी आवेला ना अपन पैयाली

आवेलन अपन पैया में कितना तरह के सब्जी लेके आवेलन। चला इस सब सब्जी के नाम भी सुनब जाए, सब्जी के बारे में भी सुनब जाए, जे काल सोचते हुए बा कोची पकाए बताए गाना से सकेला तोहरा एगो विचार त मिल जाए कोची पकाए बा। यह गाना प्रीतम कुमार दुचुआ जी के गावल और गाना मंगलेवन हमने से रतन जी गांव से। रतन जी गाना अपन पत्नी करुणा के नाम करत हवन।

बहल गौरी सुग्रीव गौरी जी के गावाली गाना मामा और पापा और अगवा के लेके महेन जी बंगले वाली गाना पालमा से दीदी मान के भी सुनवाई खोजा था वन चलो सुनी जा

दिलीप जी के पसंद के गाना चला सुनी जा घोड़वा घोड़ दौड़वा। और घोड़वा जब धोगेला सांधे में उसमें तो मनवा कैसे धक धक करेला। ऐ सुनी जा हमने जवाहरलाल चौधरी जी के गावल गाना है और दिलीप जी अपन सब संगति आलू के नाम कर ले हमारी गाना।

0: घोड़वा दौड़ेला सौदे मौस में और फटफटवा सीमा पर दौड़ेला
1: भोजपुरी तड़का।
0: हाँ जी, भोजपुरी तड़का में तो के घोड़वा के बारे में सुनवाई ली जाता, फटफटवा के बारे में भी सुनवाओ। अब जा फटफटवा गाना व्यास परसेनो जी गए होवन, और व्यास परसेनो जी के गावल ये गीत हमने बजावत है जा अवनि खातिर। अंगलेतिया में रहलन अवनि, अपन जन्मदिन मनैलन 9 तारीख के, और ये अभिलेख उनका परिवार जन्मदिन के माहौल बनैले रखले हवन। जा राजन लक्ष्मण जिला फ्लोगा से टेलीफोन करलन और बोलन कि उनका नातिन हवन अवनि, अवनि के जन्मदिन के शुभकामना उनका पूरा परिवार देवत हवन। जा पूरा परिवार के सदस्य लोग देवत हवन। जा उनका पापा अरविंद, उनका मामा निष्मा, बहन अरुषि, मामू मामी, उनकर कजिन लोग हवन। जा नानी प्रेमिला भी हवन, दादी प्रेमिला भी हवन, और संगे हवन मामी दू, चाचा अमर, मामा आश, पापू सूरज, भाई संदीप, भाई सैनिश, और पूरा लक्ष्मण परिवार।

चल अब रिकु तो हमने के एनवायरनमेंट के बारे में सोची जा, हमने के पर्यावरण के बारे में सोची जा, हमने के पर्यावरण उधन है जोन के बचा के रखे के चाहेला हमने के लैका लोग खातिर, हमने के अगली पीढ़ी लोग खातिर, अगला पीढ़ी में जी खोजबा अपन लैका लोग के संग सुरक्षित रखे के, तो अपन एनवायरनमेंट के पर्यावरण के सुरक्षित रखे चाहिए। ये गाना हमने सुना था जा ईश्वर दत्त जीनिया जी के गावल।

गमटवा तो होते बा वकील गमटवा के समय पूरा हुआ था। अभी तो 11 बजे होला बा, 3 मिनट बाकी बा 11 बजे में हो रही हमने के कार्यक्रम में भोजपुरी तड़का के समाप्त तो हुई में किशोर की में आज के गावली गाना सुनते रह जा और गमटवा में अपन दिल लगा ले रह जा। आवत हला फिर मिलब जा आवत हला तक हम तो हर जाग्या चाहते हैं। शुभ रात्रि नमस्कार। अभी थोड़ा घर में सुनहरे पल कार्यक्रम सुनिया जाए गिनीशा से।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनेशा का प्रणाम। हाँ जी दोस्तों, आप सभी लोगों का बड़े प्यार से हम स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। वैसे जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी ना जरूरी होता है कि थोड़ा सा हम रुक जाए और मुड़ कर देखें उन हसीन लम्हों की तरफ जो आज भी दिल के किसी कोने में महफूज हैं। तो आइए उन्हीं यादों को फिर से महसूस करते हैं पुराने बॉलीवुड के अमर गीतों के साथ। मैं हूँ आज गिनीशा और आपका साथ दूंगी सुनहरे पल में, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

हर पुराना गाना सिर्फ एक धुन नहीं होता है, वो होता है एक कहानी, एक एहसास और एक खूबसूरत याद। आज की रात हम सजाएंगे उन्हीं अनमोल नगमों के नाम जो वक्त के साथ साथ और भी हसीन हो गया है। तो दिल खोल कर बैठ जाइए मेरी जान, क्योंकि शुरू हो रहा है, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका सुनहरे पल, आपके और हमारे बीच में ऑन रेडियो मॉरिशस। कभी रेडियो के पास बैठकर पूरा परिवार गाने सुना करता था, तो कभी कैसेट रिवाइंड होती थी सिर्फ एक ही फेवरेट गाने सुनने के लिए। आज उन्हें यादों की खुशबू लेकर हम फिर से लौट आए हैं और गिनिशा बस बड़े प्यार से लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे फॉर यू माय डियर लवली लिसनर्स, जो बड़े प्यार से आप भी हमारा साथ दे रहे हैं सुनहरे पल में। यादों और सुरों का ये खूबसूरत सफर जारी है आपके और हमारे बीच में।

अब वो जमाना याद है आपको जब रेडियो के आसपास पूरा परिवार बैठकर गीत सुना करते थे। बिल्कुल जी, आज हम फिर से वही माहौल लेकर आए हैं। तो अपनी यादों की किताब खोलिए और हमारे साथ इस सफर में जुड़ जाइए। मैं हूँ गिनिशा, जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल। और ऑफ कोर्स इस पल को हम खास बनाएंगे इस गीत के साथ।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: फोटो एल्बम्स, पुरानी डायरीज और वो पहला प्यार। बिल्कुल जी, फोटो एल्बम्स, पुरानी डायरीज और वो पहले प्यार की यादें, सब कुछ याद आ जाता है जब पुराने गीत बजते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस। आज फिर वही सफर हमने शुरू किया है आपके और हमारे बीच में, जो चलेगा रात के 12 बजे तक। मैं हूँ गिनिशा और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल, और हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो की दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास तब होता है दोस्त जब पुराने बॉलीवुड के गीत दिल की दहलीज पर दस्तक देते हैं। हर सुर एक कहानी, हर नगमा एक याद और हर लफ्ज एक मुस्कान लेकर आता है। तो आज के इस यादों भरे सफर में हमारे साथ बनिए रहिए। ये है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस, जहाँ बीते कल की खुशबू आज भी महकती है और हर गीत दिल से जुड़ा होता है।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, फिर से मिलेंगे एक और खूबसूरत सुनहरे पल वाले शो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और प्लीज अपना ख्याल रखना।

0: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन, तो वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम

मेरे साथ वो शॉर्ट डिवीजन करता था। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। लेकिन कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, वो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।